0: on 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
1: Floors clean.
2: Check.
1: Windows clean.
2: Check.
1: Kitchen clean.
2: Check.
1: Air ducts clean.
2: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
3: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
9: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
8: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
10: अजी सुनते हो?
11: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
12: द ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स, सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
13: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you have an experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
14: किसी ने कहा है, किस हक से मांगू अपने हिस्से का वक्त आपसे, किस हक से मांगू अपने हिस्से का वक्त आपसे, क्योंकि ना आप मेरे हो और ना ही वक्त मेरा है। पर फिर भी ये 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, साथ तो चाहिए यार आपका। और ये जो अगला गाना बनने वाला है ना, बजने वाला, सोनाक्षी सिन्हा है उस गाने में, और सोनाक्षी सिन्हा गॉट मैरिड टू जाहिर, और उन दोनों की एक फिल्म रिलीज होने वाली है। और सोनाक्षी सिन्हा, जाहिर इकबाल रिवील किए 9 अक्टूबर को दैट द अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। और ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर का वो नाम सोच रहे थे कि क्या हो, और फिर एक नाम उन्हें मिला ऑन अ डिनर टेबल विद कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड ऑन अ कैजुअल डिनर टेबल। और नाम क्या है बताए? तू है मेरी किरण। यही है फिल्म का नाम, इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तू है मेरी किरण, सोनाक्षी सिन्हा एंड जाहिर।

Actually, they were looking so cute, सलमान खान एंड सोनाक्षी सिन्हा इन दिस सॉन्ग दगाबाज रे. और पता है, आवाज़ तो आपने पहचानी ली होगी इस गाने में, राहत फ़तेह अली खान साहब की. बट ही इज़ कमिंग विथ हिज सन शहजमान अली खान ऑन अ टूअर टू अमेरिका, वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूअर 2026. आप बहुत सारा खूबसूरत शाम इंजॉय कर सकते हैं उनके साथ, कव्वाली, सूफी, बॉलीवुड हिट्स, टाइमलेस मेलोडीज. और ये होने वाला है फ्राइडे अक्टूबर 16 को एट 8:30 PM एट कमर्शा सेंटर इन फ्रिस्को. और अभी अभी जो गाना आपने सुना ना, इसके बारे में अगर आप मुझे बता सकें कि राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ फीमेल वॉइस किन की थी और इस गाने के म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, अभी अभी आपने जो सुना दगाबाज रे, तो मैं आपको दे सकती हूँ एक टिकट फॉर दिस कॉन्सर्ट. हाउ अबाउट दैट? 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए. मैं आपको ये लवली कॉन्सर्ट जो होने वाला है अक्टूबर 16 एट द कमर्शिया सेंटर इन फ्रिस्को, ये जो आप गाना सुन रहे थे, इसके सिंगर है राहत फ़तेह अली खान साहब और उनके ये साथ जो उनका साथ दे रही थी, हु इज शी एंड हु इज द म्यूजिक डायरेक्टर. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. वैसे बताए, लोगों ने कहा है और मैंने भी आपसे ये कहा है कि जब आप हमारे शहर में रहते हैं, कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग बात होती है. अभी फेस्टिवल आ रहा है, देसी आउटफिट्स, मिठाई, नमकीन, कुछ भी आपका फेवरेट गुडीज़ हो, क्या करेंगे, कैसे मंगाएंगे, कैसे भिजाएंगे? आप अपने घर मंगा सकते हैं विद SFL वर्ल्ड वाइड विद डोर स्टेप पिकअप एंड डिलीवरी प्लस ओशन शिपिंग फॉर लार्ज आइटम्स लाइक पूजा मंदिर, झूला, फर्नीचर, जो चाहे. शिपिंग एंड मूविंग विद इन USA है, फ्रॉम इंडिया है या वर्ल्ड वाइड, विजिट SFLWorldwide.com. फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए 800-691-2335. SFL Worldwide, ब्रिंग फेस्टिविटीज क्लोजर टू होम. और इंतज़ार कर रही हूँ मैं आपका 9722355555 स्टूडियो का नंबर पे, जहाँ आपको मुझे बताना है जो दगाबाज रे गाना था, हु हैज़ संग इट विद राहत फ़तेह अली खान साहब, कौन सी फीमेल वॉइस है एंड हु इज़ द म्यूजिक डायरेक्टर, एंड यू कैन विन अ टिकट टू द कॉन्सर्ट.

Awesome, 104.9 FM Furniture Radio. Thank you for the calls, my guys. तो यस, राहत फतेह अली खान का शो आने वाला है उनके साहबजादे, उनके बेटे शहजामन अली खान के साथ, वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर. और हमारे जो विनर हैं आज के इज मिस्टर अमन, कंग्रेचुलेशंस. और जो दगा बाजरे का की जो वॉइस थी, फीमेल वॉइस विद राहत फतेह अली खान इज सोनाक्षी सिन्हा जो मूवी में है, बट सिंगर वॉज श्रेया घोषाल. ऑसम म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद. कंग्रेचुलेशन अमन एंड फॉर दिस टिकट, एंड आई आई एम सो हैप्पी दैट यू आर द विनर. कंग्रेचुलेशन. यहाँ पर गाने तो है आप ही के लिए, ये वाला भी.

0: कोर्स लिया गया ये अमेजिंग सा गाना, और मैं हूँ आपकी होस्ट नबीता। गाने पे गाना आप ही के लिए है, लेकिन अब जो शुरू हो रहा है वो है आपका गेम शो फॉर फ्राइडे।
1: कर हिंदी हिंदी बोल,
0: जमूरे क्या बोलेगा? बोलेगा तो बस हिंदी इज अलाउड, नॉट अलाउड इज अंग्रेजी। उर्दू यस यू कैन यूज इट, पर नॉट अंग्रेजी। यार पता नहीं कहाँ से घुसी चली जा रही है हमारी हिंदी में और बहरूपिया बन के बैठ जा रही है कि मैं तो यही बिलोंग करती हूँ। हम निकालते हैं उन्हें चुन चुन के, चुन चुन के। सो बने रहिए मेरे साथ 104.9 FM फनीशा रेडियो पर, और फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए अगर जुड़ना चाहते हैं आप इस गेम शो पर। लेकिन आपको बता दूं कि अगर ये इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर शेरिल चमाथिल बोर्ड सर्टिफाइड फैमिली मेडिसिन फिजिशियन फ्रॉम पैशन हेल्थ इज़ नाउ अवेलेबल सैटरडेज फ्रॉम 9 AM to 1 PM। जो सैटरडे आप सोचते थे कि डॉक्टर्स को कैसे मिला जाए, यहाँ आप जा सकते हैं। आपको वर्क मिस नहीं करना पड़ेगा डॉक्टर विजिट के लिए, वेदर इट्स अ चेकअप, प्रिवेंटिव केयर, वेट मैनेजमेंट, गेट द केयर यू नीड ऑन योर स्केड्यूल। एंड दे आर एट 230 ओ कॉर्नर्स रिज बुलेवार्ड स्वीट 110 इन अर्विंग। और फ़ोन नंबर है, फ़ोन अगर आपको करना है तो 214-666-259। Also, their Irving and Frisco location is open on Saturdays and Sundays too. So, Passion Health Primary Care is the name, and you can get their services on weekends. Isn't that amazing? Sun rahe hain 104.9 FM, Fun Asia Radio. Aur main yahan aapke saath.

0: some awesome gana Tumhi Ho Bandhu, and this is from the old cocktail, Saif Ali Khan, Deepika Padukone aur Diana Penty. Leti hu main apne first caller ko on Girl Hindi Hindi Bol. Swagat hai aapka Girl Hindi Hindi Bol mein. Hi, how are you, Sejal?
1: मैं ठीक हूँ.
0: वंडरफुल. ऑसम. मैं ऑसम हूँ. तो मैं आपका वक्त शुरू कर दूँ फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल?
1: जी कर दो.
0: ऑसम. वेरी वेरी नाइस. सेजल है हमारे साथ एंड वक्त शुरू होता है सेजल का ऑन गर्ल हिंदी हिंदी बोल. थैंक यू सेजल. सो बताइए क्या चल रहा है, वे आर यू गोइंग?
1: खाना खाने के लिए जा रहे हैं.
0: आप और भी कोई लोग हैं?
1: मैं, मेरी मम्मी और मेरा बेटा.
0: मम्मी तो अंग्रेजी है ना सेजल जी?
1: अरे मम्मी तो अपना वही है ना, माता जी.
0: मम्मी तो अपनी मम्मी है ना, माता जी. आई लव इट.
1: बहुत परेशान करके रख देते हो छोटी छोटी बातों में.
0: मम्मी बना दिया. सो क्यूट. बट एनीवेज, आपको फिर भी मैं बहुत अच्छा सा एक गिव अवे दे रही हूँ. सेलिब्रेट करती हैं आप नवरात्रि?
1: जी हाँ.
0: तो ज्योतिका पटेल हमारी इंडियन एथनिक वेयर है, फॉर टू सेलिब्रेट नवरात्रि आपको वो दे रही है एक पेयर ऑफ इयररिंग्स. हाउ अबाउट दैट? सुपर. आप जाके कलेक्ट कर सकती हैं. हाँ बहुत बढ़िया. मैं आपका इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, बट लोगों को ये बता देती हूँ, सेलिब्रेट कीजिए नवरात्रि विद अ फैबुलस लुक एवरी नाइट. यही तो हम करते हैं ना, चनिया चोली पहनते हर रोज. Explore stunning collection of stylish contemporary chanya cholis along with customizable wedding and bridal wear for men and women at Indian Ethnic Wear by Jyotika Patel in Irving. Our phone uthaiye, number dabaiye 9454442194 ya phir visit kijiye jyotikapateldesigns.com. And Sejal, aap bahut hi consciously drive bhi kar rahi thi, mummy ko le ja rahi hai khana khilane ke liye, but phir bhi dil aa gaya aapke upar. Aapko milta hai a pair of earrings from Jyotika Patel Designs. Alright, so aap kahin mat jaiye, main aapka information leti hu aur Jyotika ko bhijwati hu, so that when you go and get it, you can get the pair of earrings. Super se upar, hai na?

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
2: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
3: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
4: कीमा पराठा।
5: मम्मी ऑमलेट पराठा।
6: बेटी हलवा पूरी और तरकारी।
3: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
2: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलिशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99। अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड। विजिट signaturecuisine.com. Net.
7: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
8: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
9: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
10: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
9: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
2: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids, all at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire Frisco, your divine destination for festive fashion.
11: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
11: ये क्या होता?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
14: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
15: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
14: Miss clicks.
8: 100 लोगों ने click भी किया.
14: Customers कितने आए?
16: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
17: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia Network product.
18: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
19: वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फनेजा रेडियो पर। जिलूराम का कॉल आया, बोले मेरी बीवी नवनीता कैसी कैसी बातें करती है, बहुत सारी बातें करती है। सर व्हाट हैपेंड जिलूराम? कहते कहती है लोगों को लगता है कि मैं उनकी बात इधर उधर कर दूंगी। भाई मुझे तो अपनी ही बात याद नहीं रहती, फ्रिज खोल कर आधा घंटा यही सोचती रहती हूँ कि आई क्यों थी। आपके साथ ऐसा होता है? ओह माय गॉड, यू ओपन योर रेफ्रिजरेटर एंड यू आर लाइक क्या था, क्या लेना था?

104.9 FM Fanija Radio. How have you been? और क्या चल रहा है? वैसे मौसम का जो हाल है ना खास है और मैं तो ये कह रही हूँ वो बदल गया. इतना अच्छा वाला बदला है. लोग बदल जाते तो हम दुखी होते हैं लेकिन ये मौसम बदलने पर मैं बहुत बहुत खुश हूँ. जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. लो इज 66, हाई कभी कभी बहुत गर्मी ही है तो 99 पर चला जाता है. But that's okay. It still is so cool during morning hours, evening hours, and it doesn't feel like oven anymore. So Saturday ko, which is tomorrow, 68 low, 91 high. Sun day, it is 71 low and 91 high. Or शुरुआत ऑफ द वीक मंडे आपको थोड़ा क्लाउडी नजर आएगा लेकिन 77 लो है 91 हाई है. टेरिफिक ट्यूजडे इज 77 लो एंड 94 हाई. बाजार ऑफ द वीक वेडनेसडे 94 हाई. सो वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर. थम्स अप थर्सडे 87 हाई एंड 67 लो. थोड़ी बहुत इधर उधर बारिश भी है. And that is when your temperatures are getting into 80s and fun filmy Friday. जब अगले हफ्ते फिर मैं आ जाऊँगी, अगले हफ्ते फिर राहत फतेह अली खां का एक कॉन्सर्ट होगा हमारे शहर में और फ्राइडे जो गर्ल हिंदी वापस आ जाएगा. ये सब जब होगा अगले हफ्ते भी तब हम 70s में पहुँच जाएंगे. हाई 76 एंड लो इज 54. अब ये जब 54s में चला जाता है तब लगा यार विंटर्स थोड़े दूर ही रहो. आई मीन विंटर्स मत आ जाओ. इट इज़ ओके टू बी इन 60s बट नॉट 50s. यार ये क्या हो जाता है डैलस को, क्या मूडी है यार. कभी अवन तो कभी फ्रीज़र. ये तो किचन में घुसा हुआ है.

जी दसांझ की आवाज 104.9 एफएम फनी जा रेडियो पर. वैसे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ गर्ल हिंदी हिंदी बोल पर 972235555 स्टूडियो का नंबर. ओए ओए ओए ओए जमूरे हिंदी ही बोला और अंग्रेजी बिल्कुल नहीं. ओके सो पता है If you're on an H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa and planning your path to U.S. permanent residency, the Law Office of Seema Mehta can help you. Yes, attorney Seema Mehta and her experienced specialized team exclusively in immigration law matters, including EB-5 investor visas, family and employment visas, perm labor certification and U.S. citizenship. For more information on the EB-5 investor visa program, email info@seemamehtalawfirm.com. Agar aap email karte hain to aapko jaldi hi information wapas se mil jata hai. info@seemamehtalawfirm.com. The law officers of Seema Mehta. Sun rahe 104.9 FM, Funny Jha Radio. Aur yahan par चलता रहेगा ये सिलसिला गानों का और गर्ल हिंदी हिंदी का. फोन उठाइए, नंबर दबाइए 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर.

0: Oh, beautiful. Taking my next listener on air. Good evening. Fine Show Radio पर आपका स्वागत है. गल हिंदी हिंदी बोल पर आपका स्वागत है. Please let my listeners know your name, please.
1: My name is Kanika Singh.
0: Kanika Singh, आपका स्वागत है गल हिंदी हिंदी बोल पर. शुरू किया जाए आपका वक्त.
1: जी बिल्कुल.
0: Awesome, awesome. ठीक है. So your time has started now. आप drive कर रही हैं कि घर में रेडियो सुन रही हैं?
1: जी अभी गाड़ी थोड़ी रोकी है.
0: ओह सो स्वीट. आप गेम खेलने के लिए आपने गाड़ी रोक लिया?
1: जी बिल्कुल गाड़ी रोक ली है.
0: विच इज वेरी नाइस. आई लाइक इट. फिर पूरा ध्यान इधर रहेगा, अदरवाइज इट जस्ट गेट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, है ना?
1: जी बिल्कुल.
0: सो बताइए आप क्या करती हैं कनिका जी? यो कनिका और कनिषा,
1: आपने क्या बोला?
0: आप कनिका हैं कि कनिषा हैं?
1: मेरा नाम कनिका है.
0: कनिका है, अच्छा.
1: तो, लास्ट में.
0: लास्ट में? ये तब से हो ही रहा है, बट इट्स ओके. आज मैं बहुत मूड में हूँ, सिर्फ गिव अवेज दे रही हूँ. और मेरे पास फिर भी आपके लिए एक गिव अवे है. बता दूँ कौन सा?
1: हाँ बिल्कुल बताइए.
0: तो मैं बताती हूँ, बिरिस्ता का गिव अवे है. फ्रिस्को में है और बहुत ही अमेजिंग रॉयल फीस के साथ फ्रिस्को में आ चुके हैं बिरिस्ता एंड द पॉपुलर बिरिस्ता हाउस फ्रॉम जेंटन. आप फ्रिस्को में, आप कहाँ रहती हैं?
1: जी मैं रहती हूँ इधर ही वाइली साइड में.
0: वेरी नाइस. तो ये फ्रिस्को ज़्यादा दूर नहीं हुआ और ये है बाय प्रिज्म बार फ्रिस्को बिरिस्ता. जो बार एंड ग्रिल, जो प्रिज्म बार एंड ग्रिल है, उन्हीं का है ये ब्रांच. ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलिशियस डेजर्ट्स एंड मोर के साथ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंच जाइए 6377 कस्टर रोड फ्रिस्को टेक्सास में एंड मेक इट अ फीस्ट टू रिमेम्बर. और अभी आप जीत चुकी हैं $20 का गिफ्ट कूपन फॉर डाइन इन ओनली. ऑलराइट,
1: क्या बात.
0: ऑसम. तो आप कहीं जाएगा मत, मैं पूरे आपका जो इन्फॉर्मेशन है ऑफ एयर लेती हूँ दुनिया को ना बताते हुए. तो आप बस बने रहिए मेरे साथ. आई विल लीव माई लिसनर्स विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग विच इज़ आई एम थिंकिंग ये

104.9 FM बर्फी सॉन्ग प्रीतम का एंड बहुत ही ब्यूटिफुल फिल्म. आई मीन आई जस्ट लव प्रियंका चोपड़ा इन दिस वन. एंड प्रीतम का म्यूजिक हो तो बस बात ही खूब हो जाए, है ना. सुन रहे हैं 104.9 FM.

ब्यूटीफुल, ये मोमो के धागे हैं जिन्हें भी आपने चुना है पागलपंती से ही चुनना चाहिए, टोटली विद सो मच लव, जैसे कि जब पागलपंतियों के पार तक चाहत हो ना तो लाइफ बिकम्स सो ब्यूटीफुल, है ना? सो देयर यू गो, गुड नाइट, स्लीप टाइट, गेट अप हैप्पी, फ्रेश एंड ब्राइट, विशिंग अ फ्लफी मॉर्निंग, अ कलरफुल नून, अ जॉयफुल इवनिंग एंड अ पीसफुल नाइट. And I know it's going to be a fabulous day for you tomorrow. Started with a cup of positivity, फिर देखे दिन बिल्कुल पॉजिटिव ही रहता है. और जाते जाते ख्याल ये है, यू आर स्ट्रॉन्ग वेन यू नो योर वीकनेस, यू आर ब्यूटिफुल वेन यू अप्रीशिएट योर फ्लॉज, एंड यू आर वाइज वेन यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. हैव अ वंडरफुल वीक, वंडरफुल नाइट एंड अ ग्रेट वीकेंड. मिलूंगे अगले हफ्ते इसी समय यहीं पर ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन फन एशिया रेडियो 5 से, आज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, आपका और मेरा साथ ऑन दिस शो. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे.

0: literally, I want to say thank God it's Friday because abhi stretch weekend hai. Enjoy it. Monday bhi chuttiyan hai bachon ki. So that's a nice thing. It is a long weekend for a lot of people. So have a lot of fun. आ रही हैं स्वाति आपको एंटरटेन करने के लिए 8 से 10 दीजिए उनका साथ 10 तक फोन पर बाय बाय
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम केजीएमपी 104.9 एफएम एचडी1 पायलट पॉइंट टेक्सास साइमलकास्टिंग ऑन केटीसीजी 104.1 एफएम एचडी2 सैंगर टेक्सास पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर एजी फिनटैक्स
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर क्वाजा
2: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: एक और लड्डू ले लो
6: थोड़ी और बिरयानी
5: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा
7: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं वेट कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए
8: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अलोंग विद ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट फाइब्रोस्कैन विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259 पैशन Health Primary Care.
9: Elwing वालो, ध्यान से सुनो. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal. Grand opening on 10th October.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
12: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
14: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय पास या बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग
1: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
15: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
1: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
15: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
16: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
17: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री ब्रिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
18: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं तेलुगु में भी पंजाबी में भी और तमिल में भी तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
1: फन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net फन एशिया नेटवर्क वन नेटवर्क मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच
4: Lights, mic, Bollywood, Fun Asia.

0: Namaskar and welcome back to 104.9 FM Funisher Radio. Hello, hello, hello Dallas. आज हवाओं में कुछ अलग सी ही खुशबू है, चेहरों पे कुछ अलग एक्स्ट्रा वाली स्माइल है और दिल में बहुत ढेर सारा एक्साइटमेंट है. बताइए क्यों? अरे यार, आप तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप इतने नादान हैं कि आपको पता ही नहीं है. आपको पूरी तरीके से पता है कि आज है फ्राइडे एंड फ्राइडे को क्या मिलता है. फ्राइडे को मिलता है फ्राइडे वाइब विद नन अदर देन आरजे स्वाति हस्ती मुस्कुराती. अरे ये तो वही दिन है दोस्तों जिसका इंतजार आपको मंडे की पहली मीटिंग से होता है. लगता है कि बस ये मीटिंग भी कोई मीटिंग है. मीटिंग तो होती है फ्राइडे नाइट को, फ्राइडे ईव को, और वो मीटिंग होती है मेरे साथ. फिर ट्यूसडे को लगता है यार अभी तो पूरा हफ्ता बाकी है. वेडनेसडे को चलो आधी जंग तो जीत ली है. थर्सडे को लगता है बस बस बस बस एक और दिन मेरे भाई, और फिर आ जाता है फ्राइडे और आपको लगता है बस हो गया ना कंप्लीट, हमारा इंतजार हो गया ना खत्म. अब बस कब शाम के 8 बजेंगे और मैं आरजे स्वाति आपके साथ जुड़ जाऊंगी और आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और प्यारी से स्माइल के साथ हम दोनों एंजॉय करेंगे व्हाट Friday vibe. वो भी नो फिल्टर के साथ. यार फोटो में फिल्टर अच्छा लगता है लेकिन बातों में फिल्टर, इमोशंस में फिल्टर, खुशी में फिल्टर और फिर जोश में फिल्टर, मजा नहीं आता यार, है ना. आता है तो क्या, हम जब कहते हैं कि आइए कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अपनी पसंद का सुनाती हूँ, कुछ आपकी पसंद का सुनने का वादा करती हूँ, कुछ अपनी बात कहूंगी, कुछ आपकी भी सुन लूंगी, है ना. यही तो है मेरा आपका दोस्ताना.
1: ओ

पहले के जमाने में ऐसा क्यों होता था कि मतलब यू नो व्हाट, पिक्चराइजेशन जो हुआ है उसमें तो सीधी टोपी लगी है, लड़की की आंख भी ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहे तिरछी टोपी वाले, तिरछी नैनो वाले। हम पापा तिरछी नैनो वाले को तो कान ही कह देते हैं हमारे उधर, और ये तो मतलब कोई चिढ़ जाए मालूम, लेकिन जब कभी भी जिस लहजे से ये कह रहे हैं ऐसा तो लग रहा है बड़ी तारीफें कर रहे हैं। बट कैसे, मतलब कैसे ऐसे सफ़ेद झूठ कैसे कोई बोल सकता है, क्योंकि सामने जो दिख रहा है वो तो उनकी तिरछी टोपी नज़र नहीं आ रही है, उनके तिरछे तिरछे नैन नज़र नहीं आ रहे, लग रहा है सब कुछ बराबर है, बट फिर भी लोग एंजॉय कर रहे हैं यार, है ना। अभी एक कॉल आया हमारे पास और उन्होंने कहा कि स्वाति जी जो आपकी आवाज़ है काफ़ी नशीली सी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आज फ्राइडे को हमको जाकर कहीं कुछ नशा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपकी आवाज़ में ही ऐसी बात आ रही है। एंड यू नो व्हाट, समटाइम्स ना मैं बहुत लो फील करती हूँ, लाइक आई वॉज गोइंग थ्रू सम हेल्थ इशूज़ एंड अभी भी थोड़े थोड़े चीज़ें चल रही है, बट मुझे ना जानने वाले ये कहते हैं कि एक काम कर, थोड़ा ना इतना सा हल्का सा एक थोड़ा सा एफर्ट लेके तू खाली गाड़ी निकाल के तू फन एशिया तक पहुंच जा, क्योंकि जैसे ही मैडम आप माइक देखेंगे ना और माइक आपके सामने आएगा और जब आप शुरू हो जाएंगे उसके बाद आपको कोई भी इश्यूज नहीं लगेंगी, क्योंकि जो आपका प्यार माइक से है और माइक का आपके साथ, जो डायलिस का मेरे से है और मेरा डायलिस के साथ, वो इनकम्पेरेबल है। और उसके बाद जब ये खुशी मेरे चेहरे पर आती है और जब ऐसी कोई बात सुनने को मिल जाती है, फिर लगता है यार पूरे दिन का शो, पूरे हफ्ते का शो मैं ही कर लेती हूँ।

देखिए दादा, जिंदगी में कुछ मस्त हो या ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी में जो आपके गानों की प्लेलिस्ट होती है ना, वो मस्त होनी चाहिए। फिर उसके बाद जिंदगी ऑलमोस्ट मस्त ही रहने वाली है। यू नो व्हाट, फ्राइडे में मेरा और आपका साथ, मेरा और म्यूजिक का साथ, आपका और गाने की प्लेलिस्ट का साथ, कुछ ऐसा होता है जो ना एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। जैसे चाय के साथ पकोड़े वाली चीज़ जो होती है ना, जब बारिश होती है, इनका कॉम्बिनेशन क्या ज़बरदस्त होता है। ऐसा ही कॉम्बिनेशन मेरा म्यूज़िक के साथ है, मेरा आपके साथ है, आपका मेरे साथ है, और आपका मेरी प्लेलिस्ट के साथ है। इसीलिए तो हम शेयर करते हैं ये खूबसूरत वाइब एंड ब्यूटीफुल कनेक्शन टुगेदर, है ना। आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ और फिर चलती हूँ अगले गाने की तरफ। अगर आप भी अपने सपनों का घर ढूंढ रहे हैं, देन यू हैव टू कॉल 9722455626, दैट्स ड्रीम होम मॉर्गेज। जी हाँ, dreamhomemortgage.com है इनका वेबसाइट। ये आपके घर के सपने को पूरा करने में आपकी पूरी पूरी मदद करते हैं। योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक, एंड सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज आपको हेल्प कर रहे हैं और आपको अपने सपनों का घर दिलाने में, और आपको बाइंग और रीफाइनेंसिंग के सॉल्यूशंस के लिए भी हमेशा हमेशा अवेलेबल है। कॉल का जो नंबर है वो एक बार फिर से बता दूँ, 9722455626। ठीक है, ये तो मैंने बोले बोले, लेकिन आप कर लीजिए इस गाने के साथ ओले ओले।

0: are moving to a short commercial break. आप सुनते रहिए फनोशा रेडियो 104.9 FM. मैं हूँ हस्ती मुस्कुराती स्वाति. एंजॉय कर रहे हैं आप फ्राइडे वाइब मेरे साथ.
1: दिल की बात किससे कहें?
2: पंडित गुरुदेव से. 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए. कॉल 4695811777. दैट्स 4695811777. पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए.
3: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया.
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया.
3: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.senadainc.com today.
6: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: No, not another restaurant again.
7: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
8: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
9: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
10: कितनी लंबी लिस्ट है?
9: बस 2 पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी.
10: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो. SFL Worldwide है ना, इंडिया में आपके डोरस्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
11: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
14: क्या मतलब?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
18: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
17: Miss Clicks?
19: 100 लोगों ने click भी किया.
17: Customers कितने आए?
20: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
21: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI, turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia Network product.
22: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
13: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways and save big for your store?
22: When is it?
13: Thursday, October 29th, Friday, October 30th and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
22: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business.
23: Customers must bring their valid tax number and tobacco license.

Welcome back to 104.9 FM Phoenicia Radio. मैं हूँ आरजी स्वाति. You know what, Dallas? Life में दो चीज़ों के साथ ना आप कभी भी compromise मत कीजिएगा. एक तो है अपनी self respect, करना ही नहीं चाहिए, और दूसरा है Phoenicia Radio 104.9 FM का ये जो channel आप लगाते हैं ना, ये जो frequency में आप tune in करते हैं, इनको कभी मत बदलिएगा, क्योंकि आपको मिलते हैं यहाँ अपने पसंद के गाने और अपनी वाली थोड़ी सी वाइब. यू नो व्हाट, पार्टी, अगर आपका पार्टी वाला मूड ऑन है तो भी आपको वैसे गाने सुनने मिलेंगे. अगर आपका नॉस्टैल्जिया वाला मूड है तो आपको उन गलियों से सैर करने का मौका मिलेगा. और अगर आपको अच्छी बातें, अच्छी आवाज़ और अच्छे पॉजिटिविटी का शौक है तो गाने के थ्रू आपको वो भी फील होगा. यू नो व्हाट डैलस, कभी कभी ना अपने आप को ट्रीट देना चाहिए, और अगर वो ट्रीट म्यूजिकल होता है ना तो फिर दिल रोम रोम और अंतरात्मा सब कुछ खिल सी जाती है, और पता नहीं क्यों दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, और आप कहते हैं

Attention, attention, Texas business owners looking for a smarter commercial energy solution. Trust Tara Commercial Energy, proudly serving Texas business since 2002 with competitive rates, reliable service, and customized energy plans. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. Taking you to the other track, which is very beautiful song and a different vibe hai iski. Bahut alag aapko feel hone wala hai kyunki isme आवाज जो आने वाली है वो आशा भोसले जी की है. एंड ये उस दौर का एक काफ़ी डिफरेंट गाना है. जब आप इसे सुनते हैं हो सकता है आपको लगता है कि ये इट्स वेरी इजी गोइंग सॉन्ग, बट व्हेन इफ यू अटेम्प्ट दिस सॉन्ग फॉर अ सिंगिंग देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग द सेम वाइब व्हाट आशा जी हैज़ यू नो पुट इनटू दैट. सो ज़रूरी नहीं लगता कि कभी कभी कोई चीज़ ईजी लगती है लाइफ में, लेकिन जब आप उसे करने जाते हो या निभाने जाते हो फिर आपको पता चलता है कि नहीं यार इतना भी आसान नहीं था. जैसे हम आरजेस को बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि यार जाना है और माइक में बोलना ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है, किस वक्त पर कौन सी चीज़ बोलनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और ये हर बार हर चीज़ स्क्रिप्ट से नहीं चल सकती, दैट शुड बी इम्प्रॉम्प्टू. एंड यू नो व्हाट, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती. सुनने में जो आसान लगे, देखने में जो आसान लगे, ज़रूरी नहीं वो इतना आसान होता है लाइफ में.

ऑलराइटी डेलिस, आपको एक मौका दे रही हूँ. चलिए मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो शहर हैं उसमें राहत फ़तेह अली खान साहब आने वाले हैं. अगर आप भी उनके गाने के फ़ैन हैं, उनके उनके गाने में जो एक अलग सा ऑरा फील होता है उसके फ़ैन हैं, एक अलग सी फीलिंग और इमोशन से आप जब गुजरते हैं उनके गानों के दौरान, तो अगर आपको उनसे प्यार है तो आपको ज़रूर ये इवेंट अटेंड करना चाहिए. तो एक्सपीरियंस कीजिए मैजिक ऑफ राहत फ़तेह अली खान लाइव, जॉइंड बाई हिज सन शाह जमान अली खान ऑन द वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026. जी हाँ, वंस अपॉन अ टाइम टूर लेकर आ रहे हैं और आप इस अनफॉरगेटेबल कव्वाली, सूफी, बॉलीवुड हिट्स और टाइमलेस मेलोडीज को एंजॉय कर सकते हैं फ्राइडे अक्टूबर 16th एट 8:30 PM एट द को अमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. जी हाँ, आपके बिल्कुल क्लोज, आपके फ्रिस्को सिटी में को अमेरिका सेंटर फ्रिस्को में आने वाले हैं फ्राइडे अक्टूबर 16th को फ्रॉम 8:30 PM. एंड हियर इज़ योर चांस टू बी देयर. वी आर गिविंग अवे वन टिकट. और आपको बता देती हूँ कि ये गिव अवे के लिए आपको टिकट पिकअप करना होगा, कहाँ से कैसे. लेकिन पहले तो आप इस गाने को सुनिए और इस गाने को सुनकर आपको बताना है एक बात कि अगर आप इस गाने को सुनते हैं तो आपको कौन सी वो घड़ी है जो याद आती है. मैं आपके कॉल्स लूंगी और मुझे आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं इस गाने को सुनते. वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई वाकया हो सकता है, वो कोई फीलिंग हो सकती है. और मैं जब उसे सुनूंगी, मैं चूज़ करूंगी कि कौन सा वाकया मुझे बहुत पसंद आया है. और आप जीत जाएंगे ये मौका एक टिकट का, जब आप फ्राइडे की अक्टूबर 16th की रात बहुत दिल से कनेक्ट होकर एंजॉय कर सकते हैं कव्वाली, सूफी, बॉलीवुड हिट्स एंड टाइमलेस मेलोडीज़ बाय राहत फ़तेह अली खान साहब.

चंडीगढ़ बाइट्स, जी हाँ चंडीगढ़ बाइट्स लोकेटेड है मैकडरमट ड्राइव इन एलन। आप विजिट कर सकते हैं chandigarhbites.com पर ज़्यादा डिटेल्स के लिए और इनके मेन्यू लिस्टिंग्स के लिए। एंजॉय कीजिए द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली। और आपको जैसे मैंने बताया कि मैकडरमट ड्राइव एलन में लोकेटेड है और आप मेन्यू एंड अदर डिटेल्स के लिए विजिट कर सकते हैं chandigarhbites.com। टेकिंग यू टू द अदर ट्रैक डैलस, एंड मेरा और आपका साथ आज रहेगा ओनली एंड ओनली 9:30 तक ही। तो आपको भी अगर कोई अलग से कोई फरमाइश करनी है तो प्लीज़ बताइएगा, नंबर है स्टूडियो का 9722355555।

अगर आपका मन है कोई भी स्पेशल सेलिब्रेशन प्लान करने का, क्योंकि ये जो फेस्टिव टाइम है इसमें कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस होते रहते हैं, और अगर आपने कोई वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या कोई भी मेमोरेबल सेलिब्रेशन आपको प्लान करना है, देन वेनेसा इवेंट्स ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर. वेन्यूज, डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय बसेरा ग्रैंड. कॉल हरी बसेरा एट 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर. तो अगर कुछ भी सेलिब्रेशंस आप प्लान कर रहे हैं, ज़रूर हरी बसेरा जी को कॉन्टैक्ट कीजिए 4694428770. एंड आप अपने खूबसूरत पल को और भी खूबसूरत ज़रूर बना सकते हैं इनके साथ, और रंग में रंग जाइए.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
2: Turn it up.
1: Brought

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया। Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
3: Turn it up.
2: Brought to you by Club Fanasia.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
3: Turn it up.
2: Brought to you by Club Fun Asia.

0: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
2: Order. Mr. Impressions, campaign का result.
3: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
2: Miss Clicks?
4: 100 लोगों ने click भी किया.
2: Customers कितने आए?
5: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
4: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI. Turn attention.

0: शाम भी होगी बिंदास. ज्वाइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशा रेडियो पर.
1: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Funnacious Radio.

0: Asia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।

0: कभी सोचा है हमेशा जैक के साथ जिल ही क्यों जाती है हिल पे? जैक के साथ जॉनी भी तो जा सकता है।
1: इट्स अ यूनिसेक्स सॉन्ग।

0: शांति होगी बिंदास. ज्वाइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर.
1: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: Check it out.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: भी। कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगू में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
1: वन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर। आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net। फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच।
2: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया।
1: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
3: रेडी फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड अ फ्रेश स्टार्ट in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you have an experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

Bringing South Asia closer, more closer. Phonesia 104.9 FM.

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
4: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं तेलुगु में भी पंजाबी में भी और तमिल में भी तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों
5: फनेशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@phanasia.net फनेशिया नेटवर्क वन नेटवर्क मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: ला दे हर घूट में स्वैग है हर घूट में स्वैग है हर घूट में स्वैग है हर घूट में स्वैग है
1: अभी भी एक घूट बाकी है।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
4: फन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net. फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.
5: हाय, दिस इज सैफ अली खान. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.

0: पीटेगा और एक ही दिन में हम सबको खत्म कर देगा।
1: बात रहा हूँ, वाट लग ले रे पोरची।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Ek aur laddu le lo.
9: Thodi aur biryani.
8: Are America jaake thodi milega.
10: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
11: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स। दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन Health Primary Care.
12: Floors clean.
13: Check.
12: Windows clean.
13: Check.
12: Kitchen clean.
13: Check.
12: Air ducts clean.
13: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
14: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
15: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
16: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
15: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
16: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
15: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी। फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
17: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
18: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
17: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
18: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
19: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशंस का कलर,
20: नेक्स्ट क्वेश्चन।
19: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
20: याद नहीं।
19: बफे में क्या था?
20: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
17: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 972-905-5449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेम्बर।
21: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
17: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways, and save big for your store?
21: When is it?
17: Thursday, October 29th, Friday, October 30th, and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
21: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business.
22: Customers must bring their valid tax number and tobacco license.

0: पंजाब बाय पेज थ्री नाउ इन अर्विंग. स्वाद पंजाब का अंदाज पेज थ्री का.
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
3: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपर हिट.
5: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम एक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाय, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
6: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gro Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gro Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
8: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

सुप्रभात दोस्तों, सुस्वागतम मापी के कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूँ आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। उम्मीद कर रही हूँ कि आपका ये वीकेंड सुखद जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। और अब आप जुड़े हैं मेरे साथ ऑन दिस म्यूजिकल जर्नी, जहाँ मैं ले चलूंगी आपको बेहतरीन गीतों की ओर। और शुरुआत करने के पहले कहूंगी, आई एम सो ग्लैड आई एम हियर, आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस लॉन्ग ड्राइव दैट आई हैव टू गेट हियर, बिकॉज आई गॉट टू सी अ ब्यूटिफुल सनराइज दिस मॉर्निंग। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। और साथ में याद दिलाया उस सनराइज ने मुझे इस गाने की। तो शेयर करती हूँ आप सभी के साथ, फिल्म का नाम दिल चाहता है। कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बन के दिल खिले। एनी रोमांटिक सॉन्ग्स यू वांट टू लिसन टू, फील फ्री टू कॉल इन द स्टूडियो।

इतने प्यारे गीत के बाद एक और प्यारे गीत की आई है बारी। आपसे पूछती हूँ इन दोनों गानों में कौन है कॉमन, बताएंगे मुझे 9722355555 पे।

0: फिल्म हम दिल दे चुके सनम का बहुत ही प्यारा सा गीत था, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी ऐश्वर्या राय इस फिल्म में और खास तौर पर इस गाने में। बट ऐश्वर्या राय अब भी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, एंड इन फैक्ट शी वॉज सीन वेरी रिसेंटली ऑन द पेरिस रनवे इन अ कॉर्सेटेड ब्लैक वेलवेट फिशटेल गाउन कंप्लीट विद क्रिस्टल एम्बेलिश्ड केप एंड अ जूल्ड टियारा। Deep burgundy waves at sath, bold red lipstick, and that makes it for a very regal runway look by Aishwarya Rai Bachchan, always, who will always be the beauty queen.
1: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Funisia Radio.

दीपिका पादुकोण दिखाई दी थी इस गाने में। दीपिका पादुकोण जिनके लिए ऐसे कुछ खबरें थी दैट कालकी 2898 AD पार्ट टू, जो कि है तेलुगु लैंग्वेज की एपिक साइंस फिक्शन सीक्वल, उसमें दिखाई देंगी। बट द ट्रूथ इज दैट द लेटेस्ट अपडेट इज दैट रियली स्पीकिंग दीपिका पादुकोण विल नॉट रिटर्न एज सुमति इन पार्ट टू एंड शी इज इंस्टेड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विथ अ बेबी।

0: आप भी जोर से खुशी से नाच और कूद पड़ेंगे जब आपके सपनों का घर साकार हो. और वैसे बताना चाहूंगी दैट योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक. सो व्हाट डज दैट टेक टू मेक इट अ रियलिटी? Well, a phone call to Dream Home Mortgage would be in order. 972-245-5626 hai inka number. Inka website hai dreamhomemortgage.com. And want to tell you that since 1998, yani ki itne saalon se, Dream Home Mortgage ne bahut saari parivaron ki sahayata ki hai nationwide to help them with their personalized mortgage solutions to purchase a house or to refinance. फिर एक बार फोन नंबर इनका 972-245-5626 एंड द वेबसाइट इज dreamhomemortgage.com. ड्रीम होम मॉर्गेज मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन.
1: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio non-stop entertainment.
0: दोस्तों सुन रहे हैं आप म्यूजिक मंत्र जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता. आपको मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक. और आज के लिए एक मैं टॉपिक लाई हूं, बहुत इंटरेस्टिंग फन वाला टॉपिक है. एंड यू नो द टॉपिक कुड बी आई गेस पुट टुगेदर इन वन क्वेश्चन. कैन समवन बी योर फ्रेंड फॉर जस्ट 10 मिनट्स? थिंक अबाउट इट. वैसे तो हम फ्रेंडशिप को एसोसिएट करते हैं बड़े सालों से, किसी को जानते हैं, उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनका ट्रस्ट होता है हमारे साथ, बहुत सारी मेमोरीज बिल्ड करते हैं. बट व्हाट अबाउट अ स्ट्रेंजर यू माइट हैव चैटेड विथ ऑन अ लॉन्ग फ्लाइट, और द वुमन यू मेट इन ए बफे लाइन एंड इंस्टेंटली क्लिक्ड विथ, और मे बी समवन हू मेड यू लाफ व्हाइल यू वेटेड फॉर योर कॉफी. एनी सच सिचुएशंस? Any thoughts? Share with me.
2: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
3: I'm James Tallarico, and I approve this message.
2: Paid for by Tallarico for Texas.
4: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में. अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM. मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका. चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट्स. Free entry and free parking. An event by My Square Feet.
5: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
2: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
5: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
2: Visit tassels.byrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
7: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
6: सच में? सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
14: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
13: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
14: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
15: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
16: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
15: Barista House, richness of biryani bliss.
17: Har mohabbat ki awaaz. The one and only living legend, Rahat Fateh Ali Khan.
18: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Ali Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan ek hi stage par.
17: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmeen Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
18: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
17: Tickets on Ticketmaster and Sulekha.com.

सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक, और हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। इस गाने को एंजॉय करते हैं। वेलकम बैक एंड स्टार्ट ऑफ ए टॉपिक फॉर द मॉर्निंग।

0: That was a requested song. Shalini, I hope you enjoyed it. Dosto, jaise ye karyakram badhta jayega, aapke zehen mein koi aise khaas taur pe gaane aaye agar jo ki 2005 ke baad ke hon aur happy ho, upbeat ho, yani ki non dukhi ho, to batayenge mujhe 972-235-5555 pe aur main puri koshish karungi aapke liye le aane ke liye.
1: The Dil of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
0: तो आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही क्यूट है, इंटरेस्टिंग है, प्यारा है. आई होप यू फील द सेम वे लाइक आई एम फीलिंग अबाउट दिस टॉपिक. तो टॉपिक कुछ इस तरह है, आज मैं आपसे ये इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहती हूँ. क्या दोस्ती होने के लिए सालों का साथ जरूरी है, या कभी कभी बस वही कुछ मिनट, कुछ 10 मिनट तक वार्तालाप करना काफी होते हैं. तो यानी कि सो थिंक ऑफ दिस सिनेरियो, यू आर एट एन एयरपोर्ट, आप अपनी फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं और आपके पास कोई खड़े हैं एंड यू स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्जेशन विथ दैट पर्सन. दैट पर्सन इज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर और आप बातें कर रहे हैं, वार्तालाप हो रही है, गपशप हो रही है और 10 मिनट बाद आप नोटिस करते हैं यू हैव लाफ्ड, यू हैव एक्सचेंज्ड सम स्टोरीज एंड समटाइम्स मे बी इवन शेयर्ड समथिंग पर्सनल. उसके बाद फ्लाइट इज कॉल्ड, यू से बाय, कोई फोन नंबर नहीं एक्सचेंज हुए, कोई सोशल मीडिया एक्सचेंजेस, यू नो, सोशल मीडिया हैंडल्स या पेज नहीं बताया गया एक दूसरे को, बस एक छोटी सी मुलाकात एंड समहाउ यू वॉक अवे स्माइलिंग. तो मेरा आपके लिए सवाल है, व्हाट डू यू थिंक, वाज दैट अ 10 मिनट फ्रेंडशिप? एंड इवन यू नो कन्वर्सली, क्या हर अच्छी मुलाकात को लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप में बदलना जरूरी होता है? बताएं मुझे आप 972-235-5555 पे. और मुझे पता है कि आपके साथ भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे, स्पेशली इफ यू आर नॉट यू नो, इफ यू आर नॉट शाई टू स्पीक टू पीपल अराउंड, लाइक शाई टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, पॉसिबली यू हैड एन इंसिडेंट और टू एंड यू वांट टू शेयर. स्टूडियो नंबर है 972-235-5555.

To continue with our topic, फिर एक बार आपसे पूछती हूँ सवाल. आपने कभी किसी से ऐसे मुलाकात की है कि बहुत थोड़ी देर बात हुई, बहुत ही you know, like a 5 to 10 minute interaction, but you remember them for years. Any such interactions come to your mind? It could be one at the airport, it could be one on the airplane, it could be one at a store that you went repeatedly to and saw the same person. Maybe it was synchronicity, but maybe it was meant to be a little bit more than just bumping into that person. So, mere saath aisa ek waqia hua hai. Main jab mere bacche chote the, तो यू नो स्कूल के बाद आकर की उनको शावर दिया, होमवर्क किया, व्हाट नॉट, बच्चे सो गए. दैट्स द टाइम आई वुड गेट आउट ऑफ माय हाउस एंड गो टू ए लोकल स्टोर. और मैं ये हफ्ते में एक बार तो करती ही थी. और यू नो आई वुड गो कैन प्रीटी मच पीरियड लाइक रेगुलरली, बट एवरी सो ऑफ्टन आई वुड सी अनदर लेडी डू द सेम थिंग. आई वुड सी हर यू नो तीन चार बार मैंने उन्हें देखा, बट just a smile, hello, hello. And then it went to, looks like we end up doing the same things this day of the week. Yeah, it's the same thing. My kids are asleep. I'm out. You know, this is my me time. Aur bas itni hi baatein ho rahi thi. And then slowly we realized that we were doing the same things and got to talk to each other over after having met each other, I would say, a handful of times. And And then हमने अपने नाम एक्सचेंज किए, फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया. एंड देन इट टर्न आउट टू बी अ यू नो अ फ्लीटिंग फ्रेंडशिप. नाउ दैट नेक्स्ट टाइम वी मेट वी वुड हैव अ प्रॉपर चिट चैट फॉर अ फ्यू मिनट्स. एंड यू नो इट्स नाइस टू हैव फ्रेंड्स हु यू मीट जस्ट आउट ऑफ द ब्लू. यू हैव सम थिंग्स लाइक दैट टू शेयर. कॉल मी एंड टेल मी एट 972-235-5555. While I take you to this beautiful beach at Cape Town, South Africa.

0: केप टाउन पहुंच गए इस गीत के जरिए विद अक्षय कुमार एंड करीना कपूर. और केप टाउन, यू नो, इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट, राइट? इट्स अ लॉन्ग वेज अवे. यानी कि एयरपोर्ट अभी आए, दो एयरपोर्ट्स आते हैं, इज इट नॉन स्टॉप, वेल नॉट फ्रॉम डैलस. सो दो एयरपोर्ट्स आए, यानी कि बहुत सारे मौके मिले कुछ लोगों से बातें करने की. तो ऐसा ही एक मौका मिला हमारी लिसनर सभा को. सभा कहती हैं कि एयरपोर्ट पे थी, इन शी स्टार्टेड हर जर्नी इन पाकिस्तान कमिंग बैक हियर टू यूएस, और दुबई में 7 आवर का उनका ट्रांजिट था. वहीं पे मिली वो अपने भैया को, जिनको अभी वो भैया मानती है, एंड ही वॉज ट्रैवलिंग टू ह्यूस्टन एंड सभा वॉज ट्रैवलिंग बैक टू डैलस. तो कहा कि हमने बहुत सारी बातें की, खूब सारी बातें की, एंड सिंस शी वॉज अलोन, भाई साहब ने इनकी बहुत मदद भी की ड्यूरिंग द ट्रांजिट, एंड दैट वॉज वेरी कूल टू हियर फ्रॉम हर. एंड बोली कि 7 साल हो गए तब से हमारी दोस्ती रही है, एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड वी होप टू मीट वन डे सून. आई रियली अप्रिशिएट दैट कॉल सभा.
1: And the Dill of Dallas, heart to heart, Fun Asia.
0: And I would appreciate more calls coming in on 972-235-5555. Call and share with me ki jab hum kabhi, you know, kisi stranger ko milte hain, to hum kaisi baatein karte hain, unke saath kaisa interaction hota hai, and how does that work? Let me know at 972-235-5555. For example, you know, when you're talking to some stranger and you kind of open up, you know that conversation won't go anywhere outside of those years, because, and they're going to be judgment-free, right? That adds a lot of value to talking to strangers. Any such stories you have on mind, give me a call, share with me. I would just absolutely love to hear from you. And I know you will love to hear this next announcement that's coming from Tandoori Flame Restaurant. So, दोस्तों, अगर जो बटर चिकन बिरयानी या पनीर टिक्का या दाल मखनी sounds like your kind of dinner, you want to head out to Tandoori Flame in Garland. Iske alawa, another exciting reason to get yourself to Tandoori Flame Restaurant, and that reason is called Flame Hour. Flame Hour is Monday through Thursday, 5 se lekar sham ke 8 baje tak, where you order 2 entrees and you receive 1 complimentary appetizer. Well, sham ke waqt pe complimentary appetizer mil jaye to kya baat bhai. So remember to visit Tandoori Flame Restaurant in Garland and online tandooriflametx.com and get all the details right there. Okay, so now next song.

0: तो हमारा सवाल था कि कभी कभी हम ऐसे लोगों को मिलते हैं, उनसे वार्तालाप होती है, जस्ट यू नो स्ट्रेंजर्स इन वेरियस प्लेसेस, बट वी लीव विद ए स्माइल. तो उसी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ एक कॉलर, कहते हैं कुछ. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर फनीशियर रेडियो, गुड मॉर्निंग.
1: हाय संगीता, संजीव हियर, यू डूइंग एन ऑसम जॉब, अप्रिशिएट यू एवरी सैटरडे मॉर्निंग.
0: ओह, आई अप्रिशिएट दोस वर्ड्स.
1: इट्स अ वेरी नो ग्रेट जॉब. एंड या द रीजन इज यू नो इट्स बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी और द वाइब्रेंट एटीट्यूड ऑफ पीपल, एंड यू नो इट कुड लिफ्ट यू अप. एंड इट डज हैपन इन एवरीडे लाइफ. यू जस्ट यू नो यू माइट मीट समवन एट अ सुपरमार्केट, एट अ you know, at a club somewhere, and then you just talk to them for 10-15 minutes, and then you know, you just feel good about it, not knowing whether you're going to talk to them or meet them again. But you know, that moment is that moment, and it happens a lot in life. And you know,
0: you're right, because because sometimes you know, we are caught in a situation and in a nice way, like, you know, there's no stress, especially, you know, there are no strings attached when you're talking to a stranger for the first time, because aapko nahi pata ki koi emotional baggage hai ki nahi hai ya hogi ki nahi. It's just a fleeting moment that you capture all the way when you're talking to a stranger. Well, I appreciate this call, Mr. Sanjeev. Have a great day and a fantastic weekend ahead. Absolutely right, guys. People are calling in. Not everybody wants to go on air, but we appreciate Sanjeev coming on air and sharing his thoughts with us that, you know, it's just a fleeting conversation that sometimes even makes you think a little bit after that moment is gone and puts a smile on your face. Feels like chhaiya chhaiya.

0: the Dill of Dallas. Heart to Heart, Funasia.
1: आप भी चलते चलते कभी अगर स्लिप हो गए या गिर गए या गाड़ी चलाते समय शायद कोई एक्सीडेंट में आ गए, ट्रक चलाते समय एक्सीडेंट में आ गए, तो आपको नाम एक याद रखना है जो आकर आपकी मदद करेंगे. दैट नेम इज अटर्नी उमर ख्वाजा. अटर्नी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड गेट यू द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. दोस्तों, इन मसलों में ना इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी डील करनी पड़ती है और ये वाली जो डीलिंग है बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकती है. तो आपको चाहिए एक अटर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पेंसेटेड. सो फॉर दैट एज वेल रिमेंबर द नेम उमर ख्वाजा. उमर ख्वाजा की जो सर्विसेज हैं उन उसके लिए एक और बात है दैट यू डोंट पे देम अंटिल यू विन. नाउ फॉर ऑल दिस एंड मच मोर मेक अ फोन कॉल एंड गेट दैट फ्री कंसल्टेशन. The number is 469-300-5046. Website, attorneyomar.com. One more time, attorneyomar.com.
2: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop infotainment.
1: So, we're talking about, you know, those incidents, those times, those opportunities for some where, you know, you meet a stranger at different places. Jaise ki hamare caller ne kaha ki you meet people sometimes at the supermarket. Everybody's doing similar things, or you might, you know, which is, of course, grocery shopping and whatnot. Or you might meet somebody at the airport or maybe on an airplane or maybe when you are taking a vacation. Now, when that happens, you end up chit-chatting, you end up talking, you know, you're exploring each other's company a little bit. Or kabhi-kabhi, you know, you get maybe a few minutes, but sometimes it could be a few hours of conversations, especially if you're on an airplane and you're in a mood to chit-chat, and so is that other friend or that other new friend-to-be. Now you have these nice, long, lengthy, fun, deep conversations, but aap unke naam poochna bhool jate hain. Can you have a friendship then without knowing someone's name? What do you think? Tell me. Or share with me any incident where you have met a stranger and have been able to strike up a conversation, one that leaves you at least with a smile or some food for thought. 972-235-5555 is the number here.

0: We'll be back with some more.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: Ekta Mandir, DFW Hindu Temple Society presents Navaratri Mahotsavam, October 11th to 20th.
4: Daily Pujas, Aartis, Lalita Sahasranamam, Maha Mangal Aarti, Mataji Puja, aur har sham 8:30 baje Ras Garba.
3: October 16th, 17th, Saraswati Puja aur Akshara Abhyasam.
4: October 17th, Mata Ki Chauki.
3: October 18th, Durgashtami Havan. Aur 20th, Ram Leela aur Ravan Dahan.
4: Visit hindutemple.org or call 972-445-3111.
5: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jaye aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB. Here, everything is better.
6: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज, होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज, लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
7: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
8: Floors clean.
9: Check.
8: Windows clean.
9: Check.
8: Kitchen clean.
9: Check.
8: Air ducts clean.
9: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
10: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट, वी हैड सो मच फन।
14: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग, बट इट्स सो लेट। Where can we eat now?
13: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
15: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
16: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
17: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान।
18: राहत फतेह अली खान
19: एक्सपीरियंस वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर।
17: ब्रॉट टू यू बाय रेहान सिद्दीकी, डॉक्टर यास्मीन कुरैशी एंड ट्रू पेमेंट सॉल्यूशंस। फ्राइडे अक्टूबर 16, 8:30 PM, कमेरिका सेंटर, फ्रिस्को।
19: ग्रैंड स्पॉन्सर कराही पॉइंट प्लेनो के एक्सक्लूसिव कंसेशंस के साथ।
17: टिकट्स ऑन टिकटमास्टर एंड सुलेखा.com।

0: And welcome back to this, the final segment of this morning's Music Mantra, जिसमें रही हूँ मैं आपके संग संगीता. आपका मेरा साथ रहता है हर सैटरडे सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक. ले आती हूँ हर बार एक अनोखी प्रस्तुति. और आज की प्रस्तुति में हमने बातें की हैं अबाउट 10 मिनट्स वाली फ्रेंडशिप, द 10 मिनट फ्रेंडशिप, यानी कि दोज फ्रेंडशिप्स वेयर यू सी और मीट पीपल एज स्ट्रेंजर्स एट डिफरेंट प्लेसेस एंड यू स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्जेशन एंड एज पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन यू समटाइम्स चिट चैट अबाउट अ टॉपिक इन कॉमन, यू टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट योर लाइफ एंड समटाइम्स यू इवन कन्फाइड इन देम नोइंग दैट दैट पर्टिकुलर थिंग आपके दिल की बात कहीं और नहीं जाएगी, या जाएगी भी तो किसी स्ट्रेंजर के पास रहेगी. एंड देर आर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नो जजमेंट्स मेड, नो ओपिनियंस फॉर्म्ड, जस्ट प्लेन ओल्ड टॉकिंग योर हार्ट आउट. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अस लव दैट वी कैन डू दैट.
1: ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों

तो मैं आपको एक किस्सा बताने लगी थी, एंड दैट इज कि हम ट्रैवल कर रहे थे एंड वी वर आउट ऑन अ क्रूज. इट वाज अ शॉर्ट क्रूज, वेल शॉर्ट 3-day क्रूज. एंड एक्सकर्शंस के लिए हमें पार्टनर किया एक और एक यंग कपल के साथ, और उनके साथ खूब सारी बातें हुई, ढेर सारी बातें हुई. गॉट टू नो ईच अदर वेल, गॉट टू नो लिल बिट अबाउट द कल्चर. दे केम फ्रॉम टोटली डिफरेंट कंट्री एंड गॉट टू नो थिंग्स अबाउट ईच अदर, द फैमिली एंड थिंग्स ऑफ दैट नेचर. सेम थिंग, आई मीन ये वार्तालाप दोनों तरफ से थी. उनको हमारी जिंदगी की काफ़ी चीज़ें पता पड़ी, हमको उनकी जिंदगी की चीज़ें पता पड़ी. इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑनेस्टली इट वॉज वेरी एक्साइटिंग टू शेयर द वंडरफुल लाइव दैट पीपल हैव एंड शेयर इट विद स्ट्रेंजर्स हु आर नाउ ऑन डे 2, नो लॉन्गर स्ट्रेंजर्स. वी नो अ बिट अबाउट ईच अदर एंड बाय डे 3 हमें इनके बारे में और उन्हें हमारे बारे में काफ़ी पता लग गया. उन्हें पता था हम डैलस में रहते थे, हमें पता लगा कि वो बैंकॉक में रहते थे. और उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, माय वाइफ रन्स अ रेस्टोरेंट एंड आई हेल्प हर विद दैट रेस्टोरेंट एंड गेस व्हाट, हमारी फ्रेंडशिप रही, काफ़ी देर तक रही. एंड देन वी विजिटेड देम इन बैंकॉक एंड गॉट द प्लेजर ऑफ एंजॉइंग अ ग्रेट मील टुगेदर विद देम. एंड आई एम श्योर व्हेन दे कम टू डैलस वी विल हैव द सेम Texas hospitality that now they get to expect.

राइट, कॉल किया हमारे लिसनर ने और कहा कि शो बढ़िया जा रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बट पता है क्या आजकल लोग बातें कहाँ करते हैं, फोन जो आ गया। आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे जब एयरप्लेन के लिए इंतजार कर रहे हैं तो बात कर लें किसी से, आप कह रहे हैं कि एयरप्लेन में बैठकर किसी से बात कीजिए, वेकेशन पर जाकर, वेल अब वो जमाना नहीं है भाई, अब एयरप्लेन के लिए इंतजार करते हुए वो 2, 4, 6, 10 मिनट जितने भी हैं वो पूरे समय हम फोन पे बिताते हैं। एयरप्लेन में तो वाईफाई जो हो तो फिर तो हम यू नो वी कैन वर्क फ्रॉम द एयरप्लेन, राइट? और नहीं तो भी कुछ फिल्में हम डाउनलोड करके जाते हैं, और एक्सकर्जन्स हो या कोई वेकेशंस, तो वेकेशन में अगर पूरा वेकेशन का मज़ा लेना हो तो उसमें भी फोन उपलब्ध करते हैं। आई कैन फील लिटिल बिट सैड, आई स्टिल लाइक टू टॉक टू पीपल। इफ यू थिंक यू आर लाइक मी, गिव मी अ कॉल, शेयर विथ मी 972-235-5555 पे।

Wow, wow, wow. So many people are calling in. Well, I got equal number of people saying technology hai. So seriously, you know what? Aankhein upar karke bhi hum baat nahi karte. Hum eye contact bhi nahi karte. Aap to baat karne ki baat kar rahi hain. Hum to eye contact bhi nahi karte. Eye contact is only with the phone in our hand, the phone in our minds. Well, the other group of people said ki ये बात तो सही है कि कभी कभी मैं कुछ लोगों से बात कर लेती हूँ, वो हमसे अनजान है, कुछ भी कह लेती हूँ, दिल बहल जाता है, मन खुश होता है एंड एक्साइटमेंट होती है कभी कभी बिकॉज दैट पर्सन वी नो इज नॉट जजिंग अस. सो यू नो नाउ देन आई कुड से दैट इफ यू वुड लाइक टू टॉक एंड यू नो यू एंजॉय दैट काइंड ऑफ स्टफ देन यू आर थिंकिंग ऑफ मैं इनको तो बहुत थोड़ी देर से जानती हूँ पर ये खुशी मेरे लिए बहुत लाए हैं. इट्स यू नो समथिंग टू थिंक अबाउट, समथिंग टू गो बैक विद दैट. ऑफ कोर्स यू नॉट गोइंग टू से द डीपेस्ट थिंग, यू नॉट गोइंग टू गिव योर बैंक अकाउंट नंबर टू द स्ट्रेंजर, बट यू कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, थिंग्स इन जनरल, शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड लिसन टू अदर पीपल्स पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड मे बी देयर सम लर्निंग इन इट एज वेल. वेल वॉट एवर इट इज, I would say the best part of it all is you go back with a smile on your face and a thought in your mind and a little bit excitement to make the day a little bit better. Talking about the day and today's day and the date, well, we are wishing a very, very, very, very happy birthday to Rekha. Rekha, the actress. मैं मुझे पता है मैं उनका नाम लिया तो आपके जहन में बहुत सारी उनकी बातें याद आ रही हैं, उनकी डायलॉग्स याद आ रहे हैं, उनका चेहरा आ रहा है, द वर्सिटिलिटी आ रही है, द ब्यूटी ऑफ रेखा आ रही है एंड एंड अ लॉट एंड एंड अ लॉट ऑफ लवली सॉन्ग्स एज वेल. एंडिंग द शो विद अ सॉन्ग फीचरिंग रेखा. आई होप दैट यू एंजॉयड दिस शो टुडे. मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप तक ले आने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करने. ऑन दैट नोट ले आऊंगी फिर एक बार एक अनोखी प्रस्तुति अगले सैटरडे ठीक 8 बजे. तब तक के लिए मुझे यानी कि संगीता बच्चानी को दीजिए इजाजत. साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ अनेशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
3: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
2: सच में सब संभाल लेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
2: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है। हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
5: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
2: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
5: Of course, festive collection par up to 25% off. Tathastu.
4: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids. All at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire, Frisco. Your divine destination for festive fashion.
6: 5 se 8, straight from the heart. Kal Hindi Hindi Bol.
7: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
4: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
6: Phone uthaye, number dabaye.
7: 347-449-4242.
8: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
9: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
4: That magic removal हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड solutions विद 100% privacy।
10: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न। समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
11: एलविंग वालो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
12: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
13: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद, फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलेखा आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। अ बिग शाउट आउट टू संगीता फॉर अ वंडरफुल वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM। मैं मधुलेखा दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। सैटरडे होता है जस्ट चिल में हमारा ट्रैवल सेगमेंट, जिसमें ले चलती हूँ आपको दुनिया की एक ऐसी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जहाँ या तो आप जा चुके हैं या जाने का मन रखते हैं, या मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो डेस्टिनेशन आपके बकेट लिस्ट में आ जाए। सो वेल, आज हम बात करेंगे, अब कल से जो है नवरात्रि शुरू हो रही है, राइट? सो आज हम बात करेंगे गुजरात की। यू नो, गुजरात बेसिकली कई लोग इसको द लैंड ऑफ गरबा भी बोलते हैं, एंड इट इज़ लोकली ऑल्सो नोन एज ज्वेल ऑफ द वेस्ट। सो अगर आप गुजरात से हैं, जा चुके हैं, कुछ सुनहरी प्यारी सी यादें हैं, कुछ मेमोरीज हैं जो करना चाहें शेयर, देन द स्टूडियो नंबर इज 9722355555। एंड वंस अगेन, दिस इज मधुलेखा लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करेंगे हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल।

Well, that was taken from the movie Kai Poche, and जिसमें राजकुमार राव भी दिखे थे. एंड यस, आज हम गुजरात की बात कर रहे हैं, राइट? तो गुजरात की अगर बात करें तो सबसे पहले मुझे एटलीस्ट गरबा, डांडिया, यू नो, यही सब याद आता है. बेसिकली 9 नाइट्स ऑफ नॉन स्टॉप डांसिंग याद आता है. जी हाँ, नवरात्रि के दौरान लोग बाग जो है गुजरात में, दे गैदर फॉर गरबा एंड डांडिया रास एंड डांसिंग इन कलरफुल आउटफिट्स टू एनर्जेटिक म्यूजिक. बहुत मज़े का ये धूमधाम रहती है. एंड गुजरात इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन प्लेसेस इन द वर्ल्ड फॉर दीज सेलिब्रेशन. सो इफ़ यू हैपन टू बी इन इंडिया ड्यूरिंग नवरात्रि, आई हाईली रिकमेंड दैट आपको नवरात्रि जो है गुजरात की विटनेस करनी चाहिए. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज़ अ सॉन्ग रिक्वेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन.

Well, that was Kammariya, right? And before I play the next song, I do want to tell you all about something. जी हाँ, हम हैं यहाँ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए. भाई होता है ना कि नवरात्रि आ रहे हैं, आप कोई अपना नया घर खरीदना चाहें ना, आप सोच रहे हैं कि यार कैसे होगा, कैसे करेंगे, कहाँ से मोर्गेज मिलेगी. सो आपको बताऊं दैट योर ड्रीम होम कुड बी क्लोजर देन यू रियली थिंक. जी हाँ, 1998 से ड्रीम होम मोर्गेज ने बहुत सी फैमिलीज को हेल्प किया है नेशन वाइड विद पर्सनलाइज्ड मोर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग और फॉर रीफाइनेंसिंग. तो आप ड्रीम होम मोर्गेज को कॉल करें, द नंबर इज 9722455626, और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com. दैट्स ड्रीम होम मोर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. And the next one, that's Khalasi.

वेल दैट वॉज खलासी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत. और आपको बताऊं कि ये जो खलासी का मीनिंग क्या है. खलासी मीन्स सेलर और शिप डेक वर्कर इन गुजराती. और ये जो गोटिलो है ना, गोटिलो तमे गोटिलो गोटिलो, वो जो है द सिंगर्स आर बेसिकली कॉलिंग आउट टू सर्च फॉर और फाइंड द ट्रू फ्री स्पिरिटेड सेलर हु एम्ब्रेसेस द ओपन सी एडवेंचर एंड लाइफ चैलेंजेस विदाउट फेयर. वेल दैट्स वॉट खलासी वॉज ऑल अबाउट. और अब जब ये शिप्स और डेक की बात हो ही रही है और गुजरात का हमारा आज का ये शो है, तो आपको बताऊं कि भावनगर में, गुजरात में, अलंग इज द बिगेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड. जी हाँ, इट्स द बिगेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड टाउन इन द वर्ल्ड. कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी शिप्स भी जो हैं, दे आर ब्रॉट हेयर टू बी ब्रोकन डाउन. And that is Alang for you all.

0: Well, that was taken from Thugs of Hindustan. And yes, वीकेंड आ गया है तो फर्ज बनता है मेरा आपको बताने के लिए कि आप कहाँ कहाँ जाकर कुछ मज़ेदार खाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ. तो Page 3 Eatery जाइए, वहाँ आपको सिजलिंग कबाब से लेकर फ्लेवरफुल चाट टू फ्यूजन बाइट्स, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, ये सब मिलेगा. वेल, अगर आप अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किए हैं Page 3 Eatery जो कि हब 121 पर है, देन यू आर सीरियसली मिसिंग आउट गाइज. सो यू नो दिस इज़ वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर. तो चाहे आपको यू नो टिपिकल कुछ एक इंडियन खाना खाना है, या चटपटा चाट खाने हैं, या कुछ फ्यूजन बाइट्स खाने हैं, यू नो चाहे फिर वो ब्रंच हो, लंच हो, डिनर हो, या कोई डेट नाइट, या जस्ट अ फूडी मीटअप, Page 3 brings द परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी, वाइब्रेंट वाइब्स, यू नो. सो डेफिनेटली विजिट Page 3 Eatery विच इज लोकेटेड एट Hub 121 एंड एक्सप्लोर मोर एट Page 3 Eatery.com. और खाने पीने की जब बात निकल ही आई है तो आपको बताऊं कि गुजरात में इतने अच्छे अच्छे यमी यमी स्नैक्स मिलते हैं ना. मेरा पर्सनल फेवरेट तो ढोकला है. ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, यू नो इट्स रियली रियली सो मच डिलिशियस एंड इट्स अ वेरी इजी स्नैक टू हैव. एंड यू डोंट फील कि अरे मतलब क्या खा लिया, अब 4 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स रियली नाइस. एंड इफ़ यू रिमेंबर, यू नो 3 इडियट्स में करीना कपूर इस बात को बोलती भी हैं. चलें सुनते हैं.
1: तुम गुजराती लोग इतने क्यूट होते हो, पर तुम लोग का खाना इतना खतरनाक क्यों होता है? ढोकला, फाफड़ा, हंडवा, थेपला, ऐसे लगता है जैसे कोई मिसाइल है.
2: चल कम.
1: आज बुश ने इराक पे 2 ठोकले गिरा दिए, 400 लोग मारे गए, 200 लोग घायल.
3: The Dill of Dallas, Heart to Heart, Funny.

0: Well, that was taken from the movie Hum Dil De Chuke Sanam. And yes, Gujarat ki agar baat karein, to main na aapko batana chahungi Dwarka ke bare mein. Dwarka, a coastal city which existed around 12,000 years ago in western Gujarat. But it is said to be the place jahan par Bhagwan Shri Krishna spent most of his life. Wahan ka culture, traditions and ambience of Gujarat jo hai, it echoes the footprints of Lord Krishna. Aksar aap sunenge ki jab wo ek dusre ko greet bhi karte hain, so they say Jai Shri Krishna. Well, the jo Dwarkadish ka jo temple hai, is also known as a Jagat Mandir. It's a Hindu temple dedicated to Lord Krishna. Yahan par, you know, who is worshipped here is by the name Dwarkadish. Krishna Bhagwan ko Dwarkadish ke naam se worship kiya jata hai yahan, which actually means the king of Dwarka. And ye jo Dwarka ka jo ye mandir hai, it is very much located in Gujarat. Aur agar meri baat na mane, to chaliye Amitabh Bachchan ji ki baat to manenge na. Chalein sunte hain wo kya bolte hain Dwarka ke bare mein.
1: Moksh ka dwar hai Dwarka. Charon dhamon mein se ek dham, jahan baste hain Murli Manohar Shah. Yahan ki hawa mein Murli ki mithas hai aur suryast mein mor pankh ke rang. यूं लगता है कि कृष्ण की रासलीला अब भी चल रही है, वैसी ही जीवंत, वैसी ही रसीली। और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है, समृद्धि और अतीत का एक अद्भुत प्रतीक। कृष्ण की ये नगरी द्वारका, यहाँ खुशबू है भक्ति की, झांकियों की, रासलीला की, यहाँ खुशबू है गुजरात की। कृष्ण जी मथुरा छोड़कर द्वारका आए थे, और आप भी आइए सबके साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में।
2: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
5: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: That garba was totally worth it. We had so much fun.
8: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
7: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
9: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
10: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
11: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
12: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
11: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
12: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile zindagi के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
13: बेटा, 95% आए?
14: हाँ मम्मी।
13: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
15: मेरा?
13: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
15: वो
16: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
17: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
18: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
17: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में?
18: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
19: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
10: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
19: Barista House, richness of biryani bliss.
20: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Groh Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Groh Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
21: Tracks that put you on the right track.

0: you so much for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ करते हैं हम, as the name suggests, Just Chill. The Saturday होता है हमारा travel segment और आज मैं ले चली हूँ आपको गुजरात की सैर पर. तो yes, आपको मैं रन ऑफ कच्छ के बारे में बताना चाहूंगी. ये जो द ग्रेट रन ऑफ कच्छ है ना, इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड. कच्छ इज ऑल्सो द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. और अब मैं क्या ही बताऊं, आप खुद अमिताभ बच्चन की आवाज में, रादर अमिताभ बच्चन से खुद सुन लें अबाउट दिस रन ऑफ कच्छ.
1: कच्छ का ये रण हिंदुस्तान का तोरण है. चांदनी रात की ये सफेद धरती, यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है. प्रकृति की कठिनाइयों को दिल पे नहीं लेते कच्छ के लोग, जीवन को सजाते हैं रंगों से, कला से, संगीत के सुरों से. मांडवी का नीला समंदर भी यही है पास में. यहां खुशबू है उत्साह की, उत्सव की, रंगों की, कलाकारी की. खुशबू है गुजरात की. आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में.

All right, that was Anaida singing ऊंची नीची है डगरिया. वेल, आपकी डगरिया एकदम सीधी सच्ची सी है, क्योंकि एक गिव अवे आ गया है आपके लिए फ्रॉम फन पिज्जा किचन. जी हाँ, फन पिज्जा किचन के बहुत से नए पिज्जा के फ्लेवर्स आ गए हैं, और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी. जैसे कि एक न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जाज हैं, विच आर लाइक यू नो फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा. फिर आप चाहें ट्राई करें फिएस्टा वेजी या फ्यूरी पोलो लोको, सी फूड पैक्ड सेनोर कैमरॉन, एंड देर आर सो मेनी मोर. आपको आंसर करना है कि सिंपल सा क्वेश्चन फॉर अ चांस टू विन अ $10 गिफ्ट कार्ड. सो वॉट यू नीड टू डू इज यू हैव टू टेल मी एनी थ्री बॉलीवुड सॉन्ग्स विच हैव अ फ्लेवर ऑफ गुजराती इन इट. सो एनी थ्री बॉलीवुड सॉन्ग्स जिनमें कि गुजराती टच हो. सो स्टूडियो का नंबर 972-235-5555.

0: was taken from the movie Kai Po Che. What a beautiful song, right? Ki suljha lenge uljhe rishton ka manjha. Beautiful, beautiful lyrics. Well, मैंने पूछा था आपसे एक सवाल. सवाल ये था कि आपको मुझे कॉल करके बताने हैं कोई भी तीन बॉलीवुड ऐसे गाने जिनमें कि गुज्जू कुछ गुजराती फ्लेवर हो. एंड अगर आपने ये सही जवाब दिया तो आप जीत जाएंगे फन पिज्जा किचन की तरफ से एक $10 गिफ्ट कार्ड. सो वी डू हैव अ लिस्नर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर. Can you hear me?
1: Hello.
0: Yes, hi.
1: Hi. So answer for the questions is, one song is Chogada Tara.
0: Okay.
1: Second one is Shubharam from movie Kai Po Che.
0: Okay.
1: And then one will be Dhol Baje from Ramlila.
0: Kya baat hai, wow, wow. And aapka naam kya hai?
1: Garima.
0: Awesome. Very well played. Congratulations. Jeet liya aapne ye $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. I'm going to play the song Chugada for our listeners while I'll take you off air and take some details from you. Thank you so much for participating.
1: Thank you.

That was taken from the movie खुद्दार. अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू. वेल, अगला गाना प्ले करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी दैट दिस पार्ट ऑफ आर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, ऑफरिंग ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग पेरोल बुक कीपिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, फिर चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो या आपके बिजनेस के लिए हो. सो आप एजी फिनटेक्स को कॉल करें, द नंबर इज 4699429888 और यू कैन विजिट agfintechs.com. राइट. अच्छा, अब गुजरात की अगर बात करें तो बहुत से फेमस सेलिब्रिटीज़ जो हैं गुजरात के, उनके नाम बताती हूँ. ऑफ कोर्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज़ फ्रॉम गुजरात, एंड देन लॉट्स ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आर फ्रॉम गुजरात, जैसे मनोज जोशी, सुप्रिया पाठक, शर्मन जोशी, अलका याग्निक, अमित त्रिवेदी, सचिन जिगर, बोमन ईरानी, परेश रावल, प्राची देसाई, आशा पारेख जी, अरुणा ईरानी जी, डिम्पल कपाड़िया, अमीशा पटेल, आलिया भट्ट, संजीव कुमार, परवीन बाबी, जी हाँ, जिनका हम गाना अभी सुन रहे थे, टीना मुनीम, एंड ऑफ कोर्स संजय लीला भंसाली, दे आर ऑल फ्रॉम गुजरात.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
2: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
3: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
4: That garba was totally worth it. We had so much fun.
5: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
4: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
6: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
7: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
8: बेटा 95% आए?
5: हाँ मम्मी.
8: गुड. अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
9: मेरा?
8: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
9: वो
10: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
13: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
12: Miss Clicks?
14: 100 logon ne click bhi kiya.
12: Customers kitne aaye?
15: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
16: Marketing make clicks nahi. Customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI. Turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
17: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
18: फनेशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 469-424-3188 और ईमेल sales@phanasia.net. फनेशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.
19: डालस की धड़कन 104.9 FM, Phanasia Radio.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show, and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
6: That garba was totally worth it. We had so much fun.
7: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
6: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
8: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
11: एक और लड्डू ले लो.
12: थोड़ी और बिरयानी.
11: अरे अमरीका जाके थोड़ी मिलेगा.
13: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए.
8: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए. स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स. कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

दिस इज केजीएमपी 104.9 एफएम फनी शरीर पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ और एक बार फिर से आप सब की खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी दोस्तों, आपका और हमारा साथ होता है, ये म्यूजिकल साथ होता है हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM एंड ऑल्सो ऑन संडे आफ्टरनून टिल 2 PM। 2 से 3 के बीच में कम्युनिटी की बातें करूंगी मैं नीलम आपके साथ कम्युनिटी राउंड अप में, एंड देन 2 बजे तक जो बातें होने वाली है वो अक्सर आप जानते हैं बॉलीवुड का सेगमेंट होता है, किसी कलाकार की बातें, किसी कलाकार को सेलिब्रेट करते हैं, किसी कभी कभार हम किसी कलाकार को श्रद्धांजलि भी देते हैं, एक ही शब्द पर आधारित गाने, एक ही विषय की फिल्मों की बातें, कुछ आपकी राय की भी बातें होती है और कुछ फिल्मी कहानी का भी सेगमेंट एवरी सैटरडे विथ मी योर होस्ट नीलम। आज भाई हमें एक बर्थडे मनाना है। जी बिल्कुल, आपकी और हमारी मुलाकात होती है सिर्फ सैटरडे संडेज, और सैटरडे चूंकि बॉलीवुड का सेगमेंट होता है बर्थडेज हम मनाते हैं बहुत सारे। सो आप जानते हो कि कल है 11 तारीख, बिल्कुल 11 तारीख है कल, 11th of October, और आप जानते भी होंगे कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री में, बॉलीवुड के इस इतिहास में सदी के महानायक हम जिसे कहते हैं एंग्री यंग मैन भी कहते हैं, बिग बी भी कहते हैं, जी हाँ, उनका है जन्मदिन कल। आज रेखा जी का भी जन्मदिन है तो उनकी भी कुछ बातें करेंगे, उनके साथ जो फिल्में हुई उसकी भी करेंगे बातें, लेकिन जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है उस अमिताभ बच्चन जी को याद करेंगे। उनके अर्ली कुछ गाने होंगे, वेरी फ्यू ऑफ देम, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया है, जो जो फिल्मों में, वो बहुत सारी ऐसी बातें होगी आपके साथ टिल 2 PM।

बहुत ही खूबसूरत कुछ गाने होंगे। और जी हाँ, 2 बजे तक होगा ये सेगमेंट आप सभी के साथ। सदी के महानायक का जन्मदिन हम आज मना रहे हैं यहाँ पर, उनके कुछ गानों के साथ और उनकी कुछ बातों के साथ। ऐसी कोई बात होगी जो आप नहीं जानते होगे? कुछ भी ऐसी नहीं बात है कि जो आप नहीं जानते, क्योंकि उनके इतने सारे आज भी फैंस हैं। और सदी के जब महानायक का उन्हें ये एक टाइटल मिला है उनकी मेहनत की वजह से। देखिए, मेहनत बहुत ऐसे हमारे स्टार्स हैं जिन्होंने की है, लेकिन मेहनत के साथ जहाँ जहाँ फेलियर्स आए, बहुत ऐसे स्टार्स रहे जो गुमनामी में कहीं ना कहीं चले गए, लेकिन ज़िंदगी में फेलियर्स आने के बावजूद अपने आप जी हाँ, विदाउट एनी सपोर्ट, एक बार फिर से वापस आना एंड टू वर्क अंटिल यू आर 80, 84, आई थिंक इज़ वॉट 82, 83, और अब भी वो उनका काम जारी है। तो ये है सदी के महानायक, जिनकी कुछ संघर्ष की बातें करेंगे, कुछ सफलता की बातें करेंगे, कुछ उनके किस्से कहानियाँ और कुछ उनके गाने होंगे। कुछ आपसे सवाल भी पूछना चाहूँगी, लेकिन कुछ गाने सुनने के बाद ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो।

such. बहुत ही अजीबोगरीब होता है ये सच अक्सर. असामान्य अद्भुत कल्पना से भी ज्यादा विचित्र होता है ये सच अक्सर. वो सच जो हमें नया लगता है अनजाना सा, एक झलक दिखाकर चौंका देता है जो हमें, उसे अजूबा मानने लगते हैं हम अक्सर. सच वो भी है जो अलौकिक है, हमारी समझ के बाहर, और उसी का डर लगता है हमें अक्सर. और सच का नकाब पहने हुए कुछ नामुमकिन के.

आहिस्ता आहिस्ता वाकई सच बन जाते हैं अक्सर। ऐसा ही एक नामुमकिन किस्सा, असामान्य, अद्भुत, अकल्प, अनदेखा, अनजाना, अपरिचित किस्सा सच होने जा रहा है। एक खतरनाक सच। A dangerous game is about to begin.

0: जी बिल्कुल, आज हम सदी के महानायक के जन्मदिन को मना रहे हैं यहाँ पर, 11th of October 1942 इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। अमिताभ बच्चन जी ने अपनी जिंदगी में जो मुकाम हासिल किया है, मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में किसी भी कलाकार ने, किसी भी एक्टर ने, किसी भी एक्ट्रेस ने अब तक वो मुकाम हासिल किया हो। जिस आवाज़ को हम आज बहुत ही मानते हैं, जिस आवाज़ को पूरी दुनिया पहचानती है, उसी आवाज़ को कभी किसी रेडियो स्टेशन ने मना कर दिया था कि नहीं भाई, आपकी आवाज़ इज़ नॉट सुटेबल फॉर द रेडियो शोज। जिस लंबे कद को उनकी जो एक पर्सनालिटी है उनकी आज पहचान मानते हैं, वही पर्सनालिटी, वही लंबा कद भी कभी उनके लिए मुश्किल बन गया था। ऐसे बहुत सारी बातें उनकी ज़िंदगी की, उनकी फिल्मों की, जो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ करेंगे उनके गानों के साथ। 104.9 FM फनीशा रेडियो टिल 2 PM एंड देन 2 से 3 के बीच में कम्युनिटी राउंडअप की होगी बातें। PM जी ज्वेल्स, जी हाँ, त्योहारों का मौसम है, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, दिवाली भी है पीछे, और बहुत सारे और भी त्यौहार हैं आपकी ज़िंदगी में, छोटे छोटे पल भी त्यौहार बन सकते हैं ना, तो उसके लिए बिल्कुल आप जा सकते हैं PM जी ज्वेल्स, 60 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जी हाँ, ज्वेलरी एक्सेलेंस। तो यहाँ पर आपको इंडियन क्राफ्टमैनशिप मिलेगी, डायमंड में, ब्राइडल कलेक्शन में, गोल्ड में भी अच्छी ज्वेलरी मिल जाएंगी, एंड दैट इज़ PMG ज्वेल्स, लोकेटेड इन फ्रिस्को, दैट इज़ ऑन मेन स्ट्रीट, वंस अगेन इट इज़ PMG ज्वेल्स। बातें होगी, गाने होंगे, कुछ आपसे सवाल भी होंगे, और जैसे कि मैंने कहा था कि देखिए, अमिताभ बच्चन जी एक ऐसा नाम है कि चाहे आप 40s में आपका जन्म हुआ था, 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, आप जेन एक्स है, वाई है, जी है, डजंट मैटर, अगर आपने अमिताभ जी की फिल्में देखी है तो आप बिल्कुल उनके, अगर फैन नहीं है, चलो लेट्स से यू आर नॉट अ फैन, लेकिन बिल्कुल आप उनको मानते होंगे एज अ ग्रेट एक्टर, एज अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन इन बॉलीवुड एंड बियॉन्ड दैट। तो बस उनके ये रिस्पेक्ट जो है, वो एज आई सेड ओवरनाइट नहीं आता, जो जो भी उनको मिलते हैं, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द फिल्म्स, इट इज़ अबाउट हिज होल लाइफ, हिज होल करियर। तो ये सारी बातें होगी आप सभी के साथ टिल 2 PM, और 2 से 3 के बीच में हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं कम्युनिटी आउटरीच की प्रस्तुति, दैट इज़ कम्युनिटी राउंड अप। एवरी सैटरडे होती है ये बातें आपकी और हमारी, जहाँ पर कम्युनिटी में बहुत सारे हमारे जो नॉन प्रॉफिट इवेंट्स, एक्टिविटीज़, उसकी जानकारी लाती हूँ, उसके साथ साथ हमारे साथ किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि भी जुड़ते हैं। तो ये सारी बातें, ये गाने आपके साथ रहेंगे टिल 2 PM एंड 2 to 3।
1: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
2: I'm James Tallarico and I approve this message.
3: Paid for by Tallarico for Texas.
4: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian, ab jaye to jaye kahan?
5: Simple, Basera Grand. One destination, double the flavor.
6: Matlab crispy golden dosa?
5: Yes, rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
6: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
4: Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal Grand at Basera Grand. Basera Grand. Come hungry, leave happy. Together.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: It's the time to crack out. It's the time to catch up.
12: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी 2 entrees एंड गेट 1 appetizer एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
13: 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कल हिंदी हिंदी बोल
14: यू नो माय वॉइस ऑन द रेडियो नाउ लेट मी बी अ वॉइस यू कैन ट्रस्ट इन रियल एस्टेट मैं हूँ नवनीता खेमका रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी बाइंग मूविंग और सेलिंग अ होम आई ब्रिंग मार्केट नॉलेज क्रिएटिव मार्केटिंग एंड पर्सनल कमिटमेंट टू योर जर्नी बिकॉज टू मी रियल एस्टेट इजंट जस्ट अबाउट प्रॉपर्टीज इट्स अबाउट यू मेरे दोस्तों योर पॉसिबिलिटीज एंड योर न्यू बिगिनिंग्स Every home has a story. Let's create yours together.
15: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
13: Phone uthaiye, number dabaiye.
14: 347-449-4242.
16: That garba was totally worth it. We had so much fun.
17: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
16: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
18: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
19: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
20: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
19: Miss Clicks?
21: 100 लोगों ने click भी किया.
19: Customers कितने आए?
22: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
23: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a PanAsia Network product.
24: Ekta Mandir, DFW Hindu Temple Society presents Navaratri Mahotsavam, October 11th to 20th.
25: Daily Pujas, Aartis, Lalita Sahasranamam, Mahamangal Aarti, Mataji Puja, aur har sham 8:30 baje Ras Garba.
24: October 16th, 17th, Saraswati Puja aur Akshara Abhyasam.
25: October 17th, Mata Ki Chauki.
24: October 18th, Durgashtami Havan. Aur 20th, Ram Leela aur Ravan Dahan.
25: Visit hindutemple.org or call 972-445-3111.
0: वेलकम बैक दिस इज केजीएमपी 104.9 एफएम वनेशा रेडियो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप सभी का जी बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल्सो दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स फोन 6994298888 और यू कैन विजिट AGFintechs.com जी हाँ आपने अगर अभी अभी रेडियो ट्यून इन किया है वेल कोई बात नहीं आपको हमारा साथ होगा 2 बजे तक और आज जो बातें कर रही हूँ मैं जो गाने सुनवा रही हूँ वो बात है सदी के महानायक की जी हाँ 11 अक्टूबर है कल और इसीलिए आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं उनकी कुछ बातें उनके संघर्ष की उनकी सफलता की एंड एज आई वाज सेइंग बिफोर वी वेंट ऑन अ कमर्शियल ब्रेक कि देखिए ओवरनाइट किसी को भी सदी का महानायक का टाइटल नहीं मिल जाता राइट उसके लिए उनके डेकेड्स की है तपस्या उनकी मेहनत है उनका कड़ा संघर्ष एंड इट इज़ बियॉन्ड बॉलीवुड इट इज़ जस्ट नॉट दैट वॉट ही हैज़ डन इन फिल्म इट इज़ वॉट ही हैज़ डन इन हिज पर्सनल लाइफ एज वेल उनकी जो डिग्निटी है उसकी भी कुछ बातें करेंगे और किसी भी कहानी की जब शुरुआत होती है तालियों से नहीं होती कोई भी कलाकार सेलिब्रिटी नहीं बन जाता राइट ओवरनाइट तो उनके भी कुछ संघर्ष की कहानियां हैं जो आप जानती हैं लेकिन ऐसी कुछ बहुत सारी बातें किससे कहानियां आप ही के साथ रहेंगे टिल 2 PM

0: मैं तेरा नाम लूंगा जी, बिल्कुल। और बॉलीवुड में जब भी कोई नया कलाकार आता है, 60s, 70s, 80s, 90s या इवन बियॉन्ड दैट, एक ख्वाब होता है कि भाई हमें बॉलीवुड में सफलता चाहिए, राइट? एंड जब भी एक मिसाल होती है कि अमिताभ बच्चन की तरह सफलता चाहिए, लेकिन अमिताभ बच्चन थी, अमिताभ बच्चन रातों रात नहीं बने थे। तालियों से हमेशा किसी का स्वागत नहीं होता, कोई भी कलाकार सेलिब्रिटी ओवरनाइट नहीं बन जाता। बहुत सारे उन्हें रिजेक्शंस मिलते हैं, बहुत सारे इंतज़ार होते हैं, बहुत सारे ऑडिशन होते हैं, वगैरह वगैरह, एंड बहुत सारी फ्लॉप फिल्म भी होती है। तो वही बात अमिताभ बच्चन जी के साथ भी हुई थी ना। उनके जो पिताजी आप जानते हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, हिंदी साहित्य के, लिटरेचर के एक महान नाम, महान कवि। घर में इतना अच्छा माहौल था, उनकी अच्छी पहचान थी, वेरी वेल कनेक्टेड कवि पोएट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अमिताभ जी के लिए बहुत ही आसान रास्ता था, कि एवरीथिंग वाज रेड कारपेट। आप बॉलीवुड में आइए, बस आपका इंतजार है। आप आइए, हम रेड कारपेट बिछा देंगे एंड टुमारो यू विल बी अ सुपरस्टार। ऐसा नहीं था। पढ़ाई के बाद नौकरी भी की कोलकाता में, एज यू ऑल नो। लेकिन दिल में ख्वाब था कहीं ना कहीं कि बॉलीवुड में काम करना है। और एक दिन बस यहीं पिताजी से कहा कि भाई नौकरी वोकरी छोड़ देता हूँ, उससे कुछ होगा नहीं मेरा, मुझे तो ऑडिशन देने हैं, बहुत कुछ अच्छा काम करना है फिल्मों में। सोचिए ज़रा वो माहौल जहाँ पे कवि पिता है एंड माता जी भी एक पत्रिका पत्रकार है, उनको ये कहना कि मैं नौकरी छोड़कर मुंबई में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बॉलीवुड में काम करना है, उनका क्या रिएक्शन होगा। वेल, रिएक्शन जो भी हो, लेकिन उन्होंने काम किया। बहुत बड़ा रिस्क था उनके साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ। एंड एज वी ऑल नो, कितनी सारी रिजेक्शन उन्हें मिली, कितने सारे उन्हें, वेदर इट इज़ रेडियो, रेडियो में भी उन्हें काम नहीं मिल रहा था। एंड एज आई सेड, यू नो, जिस हाइट के लिए, जिस पर्सनैलिटी की वजह से अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन बने, वही हाइट जब 70s में वो कोशिश कर रहे थे, लोगों को लग रहा था कि अरे यार इतना लंबू इतना लंबा कोई कलाकार होता है क्या? नहीं भाई, हम हीरो नहीं बना सकते आपको। लेकिन फिर भी वो हीरो बन गए, है ना?
1: उम्र की रफ्तार, वक्त की मार सहेंगे चेहरे, जिसमें चले जाएंगे पर जिंदा रहेंगे चेहरे। खोए हुए सपनों में, बंधे हुए अपनों में, जाने पहचाने से कुछ, अनजाने से प्यार में अपनाते हुए, गुनाह को छुपाते हुए, सफर करते सदियों का, बहाव जैसे नदियों का, दौलत की आग में चले चले से, गरीबी की राख में बुझे बुझे से, चेहरे चेहरे जिसमें चले जाएंगे पर जिंदा रहेंगे चेहरे। मासूम भी यही है, मक्कार भी यही है, बिकते भी यही है, खरीदार भी यही है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, खुद को देख खुद ही से कांपा, आईने में खुद को निहारते, गुजरी सूरत को पुकारते। वैसे तो दुनिया में सभी इंसान हैं, वैसे तो दुनिया में सभी इंसान हैं, फिर भी सबकी अलग पहचान है। अलग अलग पहचान से शर्मिंदा रहेंगे चेहरे, अलग अलग पहचान से शर्मिंदा रहेंगे चेहरे, जिस्म चले जाएंगे पर जिंदा रहेंगे चेहरे, जिस्म चले जाएंगे पर जिंदा रहेंगे चेहरे।
0: जी बिल्कुल, जिसमें चले जाएंगे लेकिन जिंदा रहेंगे चेहरे। और ये आवाज़ एक ऐसी है जो हमेशा हमारे साथ गूंजती ही है, वेदर ही हैज़ डन 100 films, 200 films, 300 films, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी उनकी आवाज़ सुनते हैं, इट इज़ अमिताभ बच्चन। 9722355555 बहुत सारे आपके कॉल्स, अभी तो मैंने कोई सवाल पूछा भी नहीं है, लेकिन बस बातें करने के लिए, अमिताभ जी की बातें करने के लिए, आपके बहुत बहुत पार्टिसिपेशन के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, ओवरनाइट उन्हें ये सफलता नहीं मिली थी, काम मिल रहा था। 70s में भी उन्होंने कुछ काम किए, साथ हिंदुस्तानी से जब उनकी शुरुआत हुई थी, जहाँ पर उनकी आवाज़ इस्तेमाल नहीं करनी थी, माइंड इट, उनका जब पहला रोल था उसमें उनका जो रोल था इट वॉज अ म्यूट रोल, ही हैड नो डायलॉग्स एट ऑल, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये पता नहीं डायलॉग बोलेगा भी या नहीं, या उनकी आवाज़ सूट होगी या नहीं। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी फ्लॉप फिल्मों के बाद कुछ काम मिलने लगे थे, कुछ सुपरस्टार्स जो थे 70s के उनके साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर भी की। एंड यू नो आई रिमेंबर वन ऑफ द इंसिडेंट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली किस इंटरव्यू में, आई डोंट थिंक अमिताभ बच्चन जी एवर सेड हिमसेल्फ दिस इंसिडेंट, क्योंकि वो उनकी गरिमा रही कि कभी भी उन्होंने पब्लिक में किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस के लिए, चाहे वो उनके स्ट्रगल के दौरान जितने भी एक्ट्रेस ने उनके साथ जो भी व्यवहार किया था, कभी आई डोंट थिंक ही हैज़ एवर मेंशन दैट। लेकिन कहीं पर मैंने ये बात सुनी थी कि अमिताभ जी जब 70s में नए नए थे, एंड ही यूज़ टू डेट जया जी राइट बिफोर मैरिज, तब एक धैन सुपरस्टार, उस ज़माने के जो सुपरस्टार थे, उन्होंने जया जी को वॉर्न किया था। उन्होंने कहा था कि इस लम्बों में क्या देख रही हो तुम, ही सच अ लूज़र, इतना फ्लॉप है उनकी, इतनी सारी फ्लॉप फिल्म्स आ रही है, और आप पता नहीं व्हाई आर यू सो सीरियस अबाउट हिम। सो दैट वाज द कमेंट, दैट वाज द कमेंट फॉर अमिताभ बच्चन जब जया जी उन्हें डेट कर रही थी, एंड शी वाज रियली सीरियस अबाउट हिम। सो वेल, उन्होंने सारे जितने भी ह्यूमिलिएशन हो गए, जितने भी रिजेक्शन हो गए 70s में देन सुपरस्टार, यानी कि उस ज़माने के जो भी सुपरस्टार्स के साथ काम करना, स्क्रीन शेयर करना, उनके एडिटिंग करके उनके रोल कट कर देना, ये सारी बातें उन्होंने झेली होगी। लेकिन शायद कहीं ना कहीं उन्हें पक्का यकीन होगा खुद पे, लोगों ने उनकी आवाज़ नकार दी, लोगों ने उनकी हाइट नकार दी कि यार इतना दुबला लड़का, इतना लंबा लड़का क्या करेगा। मे बी समवेयर सम हाउ ही नेवर लॉस्ट हिज ओन फेथ कि मैं कुछ करूँगा, ये लोग कुछ भी बोल ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो वही बनूंगा सदी का महानायक।

0: चीनी कम है जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी की बातें हो रही है आज. एंड आई वुड लाइक टू आस्क, देखिए उनके बहुत सारी उनकी बातें हैं ट्रिविया जो आप जानते ही है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका जन्मदिन पूछूंगी उनके, लेकिन आपकी राय पूछूंगी. चलिए, हमारे जैसे ऐसे बहुत है जिन्होंने, वो अमिताभ बच्चन बन गए तब उसके बाद उनकी फिल्म देखी, लाइक 80s की मैं बात कर रही हूँ, कि वी स्टार्टेड वॉचिंग हिम आफ्टर 80s, लेट 80s की जब छोटे थे, एंड लेट 80s अर्ली 90s में, कि अमिताभ बच्चन ऑलरेडी हो चुके थे. सो फॉर अस देर वॉज नॉट अ जर्नी कि हमने उनकी फ्लॉप फिल्म देखी एंड पता चले कि अरे कोई पहली बार देखा लग रहा था कि प्रॉमिसिंग, वेरी प्रॉमिसिंग एक्टर. बट इफ़ यू हैव सीन हिज स्ट्रगल फिल्म पहले 70s की बात कर रही हूँ, अर्ली बिफोर ही बिकेम इन सुपर स्टार्स, एंड यू हैड नो व्हाट्सएवर एनी काइंड ऑफ नोशन, एनी काइंड ऑफ इम्प्रेशन, कौन सी ऐसी फिल्म थी जब आपको लगा था कि ही मे बी अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर डाउन द लाइन? एंड अगेन एज आई सेड, यू नो, जिन्होंने उनकी फिल्म 80s के बाद 90s के बाद जिनका जन्म हुआ होगा, एंड हुएवर हैड सीन दैट फिल्म, ही वॉज ऑलरेडी अ सुपर स्टार. सो इवन दो वी वॉच सात हिंदुस्तानी या उनकी पहली फ्लॉप फिल्म देखी होगी, फिर भी जहन में यही था कि भाई ये तो अमिताभ बच्चन की फिल्म है, तो होता है, फ्लॉप भी करते हैं, राइट? लेकिन वैन ही वॉज अ वेरी प्रिटी न्यू इन द इंडस्ट्री, और अगर आपने पहली या दूसरी बार उनको देखा होगा कोई बड़ी फिल्मों में, वॉट वॉज योर इम्प्रेशन? लग रहा था कि कौन सी ऐसी फिल्म थी कि आपको लग रहा था कि बस यही लड़का राज करेगा सदी पे? तो मैं बिल्कुल आपकी राय लेना चाहूंगी फनीश, या योर लाइव ऑन एयर.
1: हेलो नीलम जी, उनका मूवी नमक हराम था जिससे मैं इंप्रेस हुआ था.
0: आप इंप्रेस हुए थे नमक हराम से? ओके, एंड दैट वाज राजेश खन्ना, राइट? नॉट नमक हलाल, नमक हराम.
1: राजेश खन्ना,
0: यस,
1: नमक हराम जी.
0: या नमक हराम में आई थिंक इट वाज राजेश खन्ना, नमक हलाल में शशि कपूर थे
1: जी.
0: यस, नमक हराम वाज राजेश खन्ना. वो है ना शायर की कुछ बात है, मैं शायर बदनाम, यस दैट वाज द सॉन्ग, यस मैं शायर बदनाम. तो कौन सी उनकी बात थी कि आपको स्पार्क लगा था?
1: मूवीज देखा मैं, उनके फ्लॉप मूवीज भी देखा मैं.
0: अच्छा,
1: जैसा बंदे हाथ, आदमी सड़क का कुछ नाम था उसका,
0: जी जी जी,
1: वो जो है फ्लॉप थे उनके. और एक मूवी में तो वो विलन भी बनकर आए थे,
0: आई थिंक परवरिश में ही वाज अ नेगेटिव,
1: नहीं बल्कि परवाना.
0: परवाना, यस, नॉट परवरिश में तो विनोद खन्ना थे. यस सी, यस, गुड गुड. परवाना उनकी कुछ योगिता वाली, राइट? दैट वाज अ हीरोइन.
1: जी,
0: यस, परवाना में.
1: तो इतने फ्लॉप हो गए थे कि उन्हें विलन दे दिया.
0: लेकिन आपको स्पार्क नमक हराम से लगा था कि ओके, दिस इज द मैन हु वुड रियली डू समथिंग वेल. ऑलराइट, थैंक यू सर. एंड आपका नाम क्या है?
1: परवाना में भी अच्छा था उनका रोल.
0: अच्छा अच्छा,
1: एक्टिंग भी अच्छी थी.
0: जी जी जी, वंडरफुल वंडरफुल, ग्लैड टू नो. व्हाट्स योर नेम सर?
1: सैयद.
0: सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत. तो बिल, आपकी भी राय लेना चाहूंगी फनीश, यू आर लाइव ऑन एयर.
2: हेलो.
0: हेलो, यस मैम, आप ऑन एयर है, बताइए.
2: मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैंने इंडियन फिल्म सबसे पहले अमिताभ बच्चन की देखी.
0: हाय, क्या बात है, अमिताभ जी खुश हो गए ये सुनकर.
2: तो उसकी फिल्म थी, मेरे ख्याल से 1978 में देखी थी, डॉन
0: देखी थी 78 में.
2: पुरानी
0: डॉन, यस, जीनत अमान के साथ. यस यस,
2: मैंने सबसे पहली मूवी मैंने अमिताभ बच्चन की देखी.
0: ओके, तो अब डॉन से आप उनकी फैन बन गई हो.
2: Yeah.
0: अब बिल्कुल, अब आपके दिल के डॉन बन गए वो. ऑलराइट मैम, फनीश, यू आर लाइव ऑन एयर. हेलो, यस सर, यू आर ऑन एयर.
3: गुड मॉर्निंग.
0: यस यस यस, यू आर ऑन एयर सर, बताइए.
3: मेरा नाम फिरोज अली, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ.
0: जी फिरोज साहब, बताइए, आप पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, आप इंडिया में, यहाँ डालस में है और पाकिस्तान से आए हैं?
3: नहीं, मैं पाकिस्तान डालस में रहता हूँ, पाकिस्तान में. बस
0: अब, ओ वाओ, अब फिलहाल पाकिस्तान से हमें सुन रहे हैं, वंडरफुल, थैंक यू.
3: अच्छा, इनकी मेरी फिल्म देखी आनंद.
0: जी जी, डॉक्टर भास्कर,
3: जिसके राजेश खन्ना हीरो होते हैं.
0: जी जी,
3: और ये साइड हीरो होते हैं.
0: जी जी,
3: दुबले पतले से होते हैं, लंबे से.
0: जी जी,
3: उन लोगों से एक दिन ये भी बड़ा इंसान बनेगा फिल्म इंडस्ट्री का.
0: वाह वाह, देखिए आपने बिल्कुल सोचा था सच कि एक दिन लड़का कुछ करेगा आगे जाके. डॉक्टर भास्कर को देखकर बहुत बहुत शुक्रिया. जी जी यस सर. बट फिरोज साहब, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आई मस्ट से, कि यू आर कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान. यू आर लिसनिंग. आई होप माय बॉसेस आर लिसनिंग राइट नाउ टू मी एंड दे आर रियलाइजिंग दैट वी हैव अ फनीशा लिसनरशिप ऑल द वे इवन इन पाकिस्तान. थैंक यू सर. थैंक यू जी. फनीशिया लाइव ऑन एयर. रेडियो की आवाज प्लीज कम कर दीजिए. रेडियो, अगर आपकी रेडियो की आवाज कम नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली मुझे वो फोन काटना पड़ता है. आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे मेरी आवाज सुनाई देती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती.

0: सो अभी भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. एंड सारे जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, वेदर दे आर बॉर्न इन 70s, 60s, 80s, 90s एंड बियॉन्ड, अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि कौन सी पहली फिल्म देखी थी. एंड ऑफ कोर्स आई सेड कि आई वॉज ट्राइंग टू लुक फॉर दोज लिसनर्स कि जिनके दिमाग में, जहन में कोई नोशन नहीं था कि इज अ सुपर स्टार वैन ही वॉज अ प्रिटी न्यू एंड पहली बार उनको देखा था. खैर, मैं आपको बताऊंगी कुछ देर के बाद कि वॉट इज दैट एलिमेंट दैट आई एम रियली बिग फैन ऑफ हिम. इट इज़ नॉट द फिल्म्स, इट इज़ नॉट अबाउट द फिल्म्स, इट इज़ नॉट अबाउट हिज सॉन्ग्स, के डांसिंग, एक्टिंग, नथिंग नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. कौन सी ऐसी बात है जो मैं उनको वाकई में बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, आई हैव अ ह्यूज फैन ऑफ हिम फॉर दैट मैटर, वो बिल्कुल आपको बताऊंगी. लेकिन कमर्शियल ब्रेक के बाद रिलेटिव मीडिया, जी हाँ, आजकल जब सोशल मीडिया का ज़माना है, आप हमें ऐप पे पाकिस्तान में भी सुनते हैं. आई एम रियली हम्बल्ड हियरिंग दैट. सो देखिए, ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर फनीशा नेटवर्क आपकी मदद कर सकता है. बिल्कुल, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कैप्शन से लेके ग्राफिक्स से लेके मीडिया से लेके एंगेजिंग कंटेंट के लिए. तो वंस अगेन, ये है हमारी फनीशा नेटवर्क की एक नई प्रस्तुति आपके लिए. 4694243188 इज़ द नंबर. And once again, you can call for more information 4694249318. बातें करती रहूंगी मैं 2 बजे तक अमिताभ बच्चन जी पे, और सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, आई वुड से. एंड कुछ उनके गाने, कुछ बातें, कुछ कहानियां, टिल 2 PM ऑन 104.9.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
10: Call 857-891-8942 today.
11: That garba was totally worth it. We had so much fun.
12: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
11: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
13: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
14: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
15: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
14: नहीं.
15: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
14: नहीं.
15: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
14: वो भी नहीं.
15: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
16: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. For your tax planning, bookkeeping and CFO services, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
17: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
18: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
19: Ye last Diwali pehna tha. Ye Neha ki shaadi mein. Is pe to already Instagram par DP hai.
20: Hey Bhagwan, mere paas pehenne ke liye kuch bhi nahi hai.
21: Jab
10: वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
19: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
10: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
16: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर, फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
20: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
16: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
21: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you have an experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
22: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
0: And welcome back. This is KZMP 104.9 FM, Fanisha Radio pe. Main hoon Neelam aapke saath. A very, very good afternoon to all of you and a very warm welcome. प्यार प्यार भरा स्वागत. जी हाँ, इस बहुत ही खूबसूरत मौसम में और कुछ दिनों पहले ही मैं बता रही थी कि दिस आर द मंथ्स आई रियली एंजॉय मोस्ट. अक्टूबर मंथ, नवंबर, नवंबर एंड से जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तब लगता है कि बस इतनी ठंड ना हो, क्योंकि सबकी थ्रेशोल्ड अलग अलग होती है, राइट? सो अक्टूबर नवंबर आर फाइन. आई थिंक दोज आर लाइक इन अर्ली मॉर्निंग्स 50s, 60s एंड देन यू गो 70s, 80s में. नवंबर दिसंबर के बाद लगता है कि भाई डालस में है तो क्या हुआ, ठंड हमारे यहाँ भी होती है. वेल, ठंड हो या मौसम कोई भी हो, हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गाने लाने की कोशिश करते हैं फनीशा रेडियो पे. सातों दिन 2400 घंटे कुछ बातें होती है और मेरा और आपका जो साथ होता है, म्यूजिकल साथ होता है, दैट इज ओनली ऑन द वीकेंड्स. जी हाँ, सैटरडे आफ्टरनून एंड संडे आफ्टरनून. सैटरडेज 3 बजे तक साथ होता है एंड संडेज 2 बजे तक. ओमर ख्वाजा जी को बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फॉर दिस सेगमेंट. 4693504646, यू कैन कॉल देम फॉर अ फ्री कंसल्टेशन. जी हाँ, आपने सही सुना, यू डोंट पे अंटिल यू विन. कभी कभार हमारी कोई मिस्टेक ना हो फिर भी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कार या ट्रक एक्सीडेंट या कोई भी स्लीप एंड फॉल एक्सीडेंट में, तो वेल यू कैन ऑफकोर्स कॉल हिम फॉर अ विन एंड दैट इज वंस अगेन 4693504646. और यू कैन विजिट attorneyomar.com, दैट इज attorneyomar.com. अमिताभ बच्चन जी की बात कर रही है. जी बिल्कुल, हम उनको याद कर रहे हैं और यहाँ पर भी हो गए, उनको लग रहा होगा कि कोई बहुत याद कर रहा है. फनीशा रेडियो याद कर रहा है हमारे डालस वासी, हमारे फोर्ट वर्थ वासी, DFW एंड बियॉन्ड. हमारे पाकिस्तान में लिसनर्स बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं एंड ऑल ओवर द स्टेट जो हमें ऐप पे अभी सुन रहे हैं उनको भी बिल्कुल, उनके बहुत सारी याद अमिताभ जी को पहुंच रही होगी आज. तो उनकी सफलता से पहले उनके संघर्ष की बातें हम कर रहे थे कि जैसे कि मैंने कहा कि रातों रात सुपरस्टार नहीं बनते, रातों रात किसी को बहुत सारी तालियां नहीं मिलती, रातों रात किसी को महानायक का तो डेफिनेटली नहीं मिलता टाइटल, डेफिनेटली नहीं मिलता. हाँ, यू कैन बिकम बादशाह, यू कैन बिकम शहंशाह, लेकिन महानायक बनने के लिए तो सदियों के नहीं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल दशकों तक बहुत कड़ी मेहनत की है. एंड एज आई सेड, इट इज़ जस्ट नॉट द बॉलीवुड, इट इज़ जस्ट नॉट हिज फिल्म्स कि सिर्फ बॉलीवुड में उन्होंने अच्छा काम किया इसीलिए वो महानायक बन गए. महानायक बनने के लिए उनकी पूरी जिंदगी के संघर्ष की बात है जो हम करते रहेंगे. और चलिए, 10th of October इज रेखा जी जन्मदिन टू, तो रेखा जी और अमिताभ जी के दोनों के फैंस के लिए ये गाना.

वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: सिलसिला फिल्म से सुना आपने गीत 80s में, आई थिंक आफ्टर 70s के उनके संघर्ष के बाद 80s का दौर उनके लिए बहुत अच्छा रहा। शोले के बाद, जंजीर के बाद उन्हें जितनी भी फिल्म्स मिली, चाहे मनमोहन देसाई की हो, प्रकाश मेहरा की हो, लोग सिर्फ उनको देखने के लिए फीचर थिएटर्स में जाते थे, चाहे जो भी उनके साथ को स्टार हो, जो भी हीरोइन हो, लेकिन अमिताभ बच्चन है, बस वही है। सो आई थिंक 80s वॉज बेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उनकी करियर के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए भी। ये अलग बात है कि जया भादुरी ने आपको अपनी करियर छोड़ दी थी। जया भादुरी व्हेन दे वर डेटिंग, जब वो उनके शादी की बातें चल रही थी, तब जया भादुरी वॉज द बिगेस्ट स्टार देन अमिताभ बच्चन। उनका एक अलग रुतबा था, एक अलग मकाम था इन बॉलीवुड। एंड यू नो, एज आई वॉज सेइंग दिस आई थिंक इन फर्स्ट ऑफ द सेगमेंट, कि किसी ने, उस जमाने की सुपरस्टार ने जया भादुरी को ये भी कहा था कि तुम इतनी बड़ी स्टार हो, तुम सुपरस्टार हो ऑलमोस्ट, और ये जो एक लूजर लड़का है, फ्लॉप फिल्म्स देने वाला लड़का, दुबला पतला लंबू सा, उसमें क्या देखा है तुमने। एंड वे भी जया भादुरी ने वो देखा जो हमने किसी ने नहीं देखा, किसी भी स्टार्स को नहीं लगा था कि ये दुबला पतला लड़का जिंदगी में क्या करेगा। वेल, दोनों की शादी हो चुकी थी, एंड शादी के बाद शी डिड डिसाइड ऑन हर ओन कि भाई मुझे शादी करने के बाद बच्चों को, घर को, गृहस्थी को संभालना है। एंड आई थिंक यू नो, फॉर जया जी, मुझे जया जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी, चाहे वो गुड्डी की बात हो, अभिमान में भी, इफ यू रिमेंबर हर राइट, अभिमान में दोनों कितने प्यारे लग रहे थे। सो जया जी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया था, जो आई डाउट कि आजकल की कोई भी हीरोइन लेगी। आजकल की हीरोइन जो खुद एक अपने पति से एक बड़ी स्टार थी, शादी होने के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला किया, ये कोई नहीं कर सकता, पर जया जी डिड। खैर, तो जया जी ने भी फिल्म छोड़ दी थी, लेकिन अमिताभ जी के जो थे 80s का जो दशक रहा, वो 10 साल उनकी जिंदगी के बहुत बहुत अहम। कुछ और भी बातें होगी कुछ गानों के साथ।
1: तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू, तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी, कि लें परीक्षा तेरी, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।

तेरी वजूद की समय को भी तलाश है. एंड यू नो एज एवरी ह्यूमन बींग डज राइट, हम भी करते हैं, हम भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, लेकिन हम अमिताभ बच्चन नहीं है. हम अमिताभ बच्चन नहीं है, सदी के महानायक नहीं है. तो हमारी गलतियाँ जो है वो इतनी बड़े न्यूज़पेपर्स में और पब्लिशिंग जितने भी डिजिटल मीडिया या कहीं पे भी नहीं आ जाती. लेकिन अमिताभ बच्चन जी अगर गलतियाँ करेंगे तो उनकी जो न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, सारी जगह पर वो बातें आ जाती हैं. हर एक इंसान जब सफल होता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, तब उन्हें लगता है कि कुछ और सफलता मिल जाए. राइट, सफलता इज सच अ थिंग, सक्सेस इज सच अ थिंग कि आप कभी भी उससे संतुष्ट नहीं होते. यू नेवर गेट कंटेंट कि चलिए भाई मैं सुपरस्टार बन गया. एक ज़माना था 13 फिल्म मेरी फ्लॉप हो रही थी, फिल्मों में आ गया, वो भी एक नामुमकिन चीज़ थी. मम्मी पापा ने ना कहा था, फिर भी आ गया कलकत्ता की नौकरी छोड़ के. अब फिल्म्स कर रहा हूँ तो फिल्मों में सुपरस्टार बन गया, सो दिस इज़ इट, राइट, आई एम हैप्पी वेर आई एम. लेकिन ऐसा नहीं होता, वो हमारी फितरत नहीं होती, इंसान की फितरत नहीं होती. हमें ज़िंदगी में हमेशा कुछ करना होता है और करना होता है, राइट, नॉट दैट व्हाट वी हैव बीन डूइंग, लेकिन कुछ और ज़्यादा करना होता है. एंड दैट्स व्हाट ही डिड. ही वांटेड टू बी इन पॉलिटिक्स, तो जो भी रीज़न रही, जो भी वजह रही, वो पॉलिटिक्स में चले गए विथ हिज पॉपुलरिटी. एंड आई थिंक उन्होंने ये बात कभी भी ट्रांसपेरेंसी में नहीं छुपाई थी. उन्होंने, ही हैज़ बीन वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट दैट, कि दैट वॉज बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ एवर, कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा था. थिंकिंग जो भी वजह रही, अगेन यू नो ऑफ कोर्स दिस इज नेवर अ पॉलिटिकल डिस्कशन ऑन दिस शो, जो भी उनकी वजह रहेगी, जो भी इन्फ्लुएंस होगी, जो भी उनके दोस्तों की वजह से वगैरह वगैरह, लेकिन हमेशा उन्होंने ये बात बहुत ही खुले दिल से कही थी कि सबसे अगर मेरी ज़िंदगी की बड़ी गलती रही तो वो थी पॉलिटिक्स में जाना, और सबसे एक अच्छा फैसला रहा तो वो था जया जी से शादी करना.

ये फिल्म्स अमर अकबर एंथनी में आई एम श्योर कि अगर आपने थिएटर में देखी होगी उस ज़माने में, तो अगर आप क्लासेस में से जो वो यू नो दे थ्रो दिस कॉइन्स एट द स्क्रीन, वैसे भी रही होगी, लेकिन अमिताभ बच्चन जी के अभिमान हो या मिली हो, तो मासेस को भी जैसे पसंद आती, वो क्लासेस को भी पसंद आई थी. तो ही वॉज नॉट एन एक्टर की जो एक ही क्लास एक ही कैटेगरी को पसंद करते थे, राइट? एवरीबडी, इट्स लाइक यू नो कॉमन फैक्टर इन बॉलीवुड के भी अमिताभ जी के हम बड़े फैन हैं. लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इंसान की फितरत होती है हमेशा कुछ अलग करना होता है, आगे करना होता है, और आगे करने में उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रख दिया, जो उनको लग रहा था, सबको लगा कि मे बी दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ. इतना कम था कि उन्होंने अपनी एक कंपनी की, जी हाँ, 90s में ही स्टार्टेड हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी, जिसका नाम रखा ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड. नाउ बींग अ सुपर स्टार इज अ डिफरेंट, बींग अ स्टार इज अ डिफरेंट, एंड बींग अ बिजनेस मैन इज अ वेरी डिफरेंट टास्क ऑल टुगेदर. हर स्टार, हर सेलिब्रिटी बिजनेस मैन नहीं बन सकता. आजकल के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, दे डू यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड ऑफ बियॉन्ड बॉलीवुड. उनके बहुत सारे बिजनेसिस होते हैं एंड दे डू गेट सक्सेस. अमिताभ जी के नसीब में इन्हें नहीं था. सो ABCL वॉज अ बिग फ्लॉप. अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड एक ऐसी कंपनी रही जिसने बहुत ही घाटा किया था, एंड दैट वॉज द टाइम जब उनको बॉलीवुड में भी काम नहीं मिल रहा था. ही हैड लॉस्ट दैट टच सम हाउ सम वेर, जो कहते हैं ना कि तकदीर का कुछ होगा, डेस्टिनी यू कॉल इट, या उनके ग्रह की कुछ भी बात कर लीजिए, जो भी प्लेनेटरी सिचुएशन, वॉट एवर यू कॉल इट, बट दैट वॉज द फेज कि ना तो उनको बॉलीवुड में कुछ काम मिल रहा था, ना तो फाइनेंशियली ही वॉज डूइंग वेल बिकॉज ऑफ ABCL. तो वही है बात कि उन्हें महानायक फिर कैसे बना दिया, यू नो 90s में जब वो इट वॉज ऑलमोस्ट ही वॉज ऑलमोस्ट गॉन, ही वॉज नॉट देयर इन बॉलीवुड, एंड ABCL वॉज फ्लॉप, फिर भी वो बन गए. जी बिल्कुल, वो बन गए. क्यों? ऐसी बहुत सारी बातें इन गानों के साथ.

तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना, बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म। अभिमान से सुना आपने ये गीत। और अमिताभ बच्चन एक ऐसे कलाकार रहे थे 70s और 80s के दौर की, जब भी बात निकलती है कमर्शियल फिल्म्स, बिल्कुल उन्होंने कमर्शियल फिल्म्स ही ज़्यादा की थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ओनली मासेस को वो पसंद थे, क्लासेस को भी वो पसंद थे। देखिए, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो क्लासेस को नहीं पसंद आते, लगता है कि यार ये क्या, कुछ भी राइट तो मासेस को पसंद होते, क्लासेस उसे पसंद नहीं करती। लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए ऐसा नहीं कहा जाता।

0: इत्तेफाक से कभी कभी बातें नहीं होती, सफलता भी चाहिए, सफलता के लिए कड़ी मेहनत भी चाहिए, राइट? एवरीथिंग कैन नॉट बी कोइंसिडेंट इन योर लाइफ. तो ऐसी बहुत सारी हम अमिताभ जी की बातें कर रहे हैं 104.9 FM फनेशिया रेडियो. आसमान से जमी तक पहुंच गए थे, लेकिन वहीं आसमान ने उन्हें जमी तक भी पटक दिया था इन 90s में, लेकिन फिर भी वो सदी के महानायक बन गए. क्यों बने? ऐसी बहुत सारी बातें करती रहूंगी आपके साथ. एंड यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड रेजिलियंस. कुछ भी हो जाए अपनी ज़िंदगी में, वो जो जज्बा होता है लड़ने का कि कुछ भी हो जाए मैं हारूंगा तो नहीं भाई, वो जज्बा बिल्कुल अमिताभ जी में है. एंड एज आई वॉज सेइंग कि यू नो आई एम नॉट हिज ह्यूज फैन फॉर हिज फिल्म्स, कि उनकी एक्टिंग की या उनकी दमदार, ऑफकोर्स वो तो है ही, दैट इज़ अ गिवन फैक्ट. उनकी एक्टिंग, उनकी दमदार आवाज़, उनकी पर्सनैलिटी, ऑल ऑफ दोज आर देयर. लेकिन मैं उनकी किस बड़ी बात की फ़ैन हूँ वो बिल्कुल उसकी बातें करूँगी. बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जाते जाते टेक्सास प्राइमरी केयर को याद कर लो. जी हाँ, इंट्रोड्यूसिंग लिनोक्स मेडिकल फंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है 7 days अ वीक. जी हाँ, 8 बजे से रात के 8 बजे तक आप जा सकते हैं, सुबह के 8 से रात के 8 बजे तक, वॉक इन एनी टाइम्स, एंड एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ. अर्जेंट केयर की बात हो, प्राइमरी केयर, सारी बातें याद हियर.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
5: एलविंग वालो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं हिंट है. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
6: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में. अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM. मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका. चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माय स्क्वायर फीट.
7: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
8: कीमा पराठा.
7: मम्मी, ऑमलेट पराठा.
8: बेटी, हलवा पूरी और तरकारी.
7: अब संडे को 3 अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
5: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा. चूज एनी डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99. अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो. वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड. विजिट signaturecuisine.net. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
9: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
10: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
5: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
11: मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान.
12: राहत फतेह अली खान.
11: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fatehi Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan ek hi stage par.
12: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmeen Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
11: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
12: Tickets on Ticketmaster and Suleha.com.
13: Jag ghume thare jaisa na koi.
0: एंड वेलकम बैक, दिस इज केजीएमबी 104.9 FM फनीशा रेडियो. जी हाँ, मैं हूँ नीलम आपके साथ. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम. प्यार भरा स्वागत आप सभी का. 12 बजे से होती है ये प्रस्तुति आपके लिए, तो आप बहुत ही लेट है. डेढ़ घंटे लेट है भाई आप. जी हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो बिल्कुल टाइम पे 12 बजे से हमें सुनते हैं, चाहे वो घर पे हो या गाड़ी पे या बाहर या ग्रोसरीज के साथ वगैरह वगैरह. आज जो बातें चल रही है वो हो रही है सदी के महानायक को हम कर रहे हैं सेलिब्रेट, उनके जन्मदिन को मना रहे हो, उनकी संघर्ष की बातें, उनकी सफलता की बातें. और महानायक कोई भी नायक बन सकता है, लेकिन महानायक बनना, वो भी सदी के महानायक बनना, उसके पीछे बहुत सारी अंधेरी रातें होती है, बहुत सारी कड़ी मेहनत होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसिप्लिन. तो ये बहुत सारी बातें होती रहेंगी आपके साथ टिल 2 PM. शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस सेगमेंट के हमारे प्रायोजक पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का. जी हाँ, कभी कभार हो जाती है बातें कि अगर आपके जो डॉक्टर है, आप जिनके पास जाना चाहे, वो आउट ऑफ नेटवर्क होते हैं. एंड इफ यू वॉन्ट अफोर्डेबल प्राइमरी केयर जहाँ पर आपके पास इंश्योरेंस भी ना हो, सो वेल दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लान जहाँ पर आप बिल्कुल उन्हें ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, क्या ताकि आपके लिए भी हेल्थ केयर बिल्कुल हो जाए अफोर्डेबल. 214-666-6259 और यू कैन विजिट passionhealthphysicians.com. वंस अगेन, दैट इज passionhealthphysicians.com. और ये सारी जानकारी के लिए दैट इज 214-666-6259. तो कुछ बातें, कुछ कहानियां, और जो 2000 तक हमने बातें की, 90s तक, एक्चुअली 90s, लेट 90s में बॉलीवुड से लेके पॉलिटिक्स की उनकी कहानी, उनकी जर्नी एंड ABCL. यू नो, बिजनेस करना हर किसी के दम की बात नहीं होती, अमिताभ जी के लिए बिल्कुल बात नहीं थी ये. एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट फैक्टर कि जहाँ पर उन्हें लग रहा था कि बहुत कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ था, रेपुटेशन भी उन्हें लग रही थी कि पॉलिटिक्स की वजह से बहुत, जो एक अच्छी सी बॉलीवुड में उनकी एक सुपरस्टार की इमेज थी, कहीं ना कहीं वो भी धुल रही थी. लेकिन फिर से वो वापस आ गए कैसे, ऐसी बहुत सारी बातें कहानी आपके साथ रहेगी टिल 2 PM.

मंजिल फिल्म से सुना आपने ये गीत अमिताभ जी पे फिल्माया था. जी हाँ, मौसमी चटर्जी एंड अमिताभ बच्चन, उन्होंने 4.9 एफएम फनीशिया रेडियो. जैसे कि मैंने कहा कि सदी के महानायक बियॉन्ड बॉलीवुड है, इसलिए वो महानायक बने हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आई डोंट वांट टू, ऑफकोर्स आप उनकी फिल्मों की हमने बातचीत की, हमने कुछ उनकी आपकी राय ली कि विच वॉज दैट फिल्म दैट आपको एक स्पार्क लगा था कि ये बच्चा, ये नौजवान आगे कुछ करेगा. लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी ये पूछना चाहूँगी कि बियॉन्ड सिनेमा अगर आप उनकी कुछ क्वालिटी की बात करें, तो विच इज़ दैट क्वालिटी दैट यू थिंक दैट यू आर फैन ऑफ हिज, कैरेक्टर की बात हो, डिसिप्लिन की बात हो, या किसी और भी चीज़ की बात हो. 9722355555 आपकी पहले मैं राय लेना चाहूँगी कि कौन सी वो बात है जिससे आप उनके बड़े फ़ैन हैं. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कि डॉन की क्या बात है, सिलसिला की बात, या पिकू की बात वगैरह वगैरह. आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट समथिंग बियॉन्ड बॉलीवुड. कौन सी ऐसी बात है जो आपको लग रहा है कि इट इज़ एन इंस्पिरेशनल थिंग. 9722355555 लूंगी मैं आपकी राय, उसके बाद मैं मेरी राय दूंगी कि व्हाट इज़ दैट एलिमेंट विच आई थिंक इट्स वेरी वेरी रेयर

0: सवाल मैं पूछ रही हूँ कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है विच इज बियॉन्ड बॉलीवुड, जो आपको लग रहा है कि आप उसके इस क्वालिटी के बड़े फैन हैं? फर्नीश, यू लाइव ऑन एयर। हेलो।
1: हाय नीलम जी, संजीव, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। बताइए क्या है आपकी राय?
1: द मेन थिंग इज यू नो जस्ट द वे ही हैज कंडक्टेड हिमसेल्फ, द वे ही हैज बीन रेजिलिएंट,
0: यस,
1: एंड वर्क्ड हार्ड, बिकॉज़ इफ यू सी ABCL जब डूब गया था,
0: जी जी जी जी जी,
1: तो ही वाज ऑफर्ड अ लॉट ऑफ मनी बाय द अंबानी,
0: यस आई रिमेम्बर दैट,
1: बट ही रिफ्यूज्ड दैट, ही सेड नो आई विल वर्क माय वे, आई विल पे एवरी पेनी ऑफ,
0: या
1: दैट्स व्हेन ही स्टार्ट इन मोहब्बतें, ही वेंट टू यश चोपड़ा,
0: यस,
1: got the role and then rest is history.
0: Yes, absolutely sir. And it is very inspirational, right? कितने ऐसे लोग होंगे, स्पेशली द स्टार्स, जहां पर उन्हें कोई बड़ी मदद मिल रही है, इवन एज अ लोन ही रिफ्यूज टू टेक दैट, एंड आई डोंट थिंक इट वी हैव मेनी पीपल, एंड एज यू सेड कि यू नो खुद काम करना एट दैट एज, आई थिंक ही वाज ऑलरेडी इन हिज 50s एट दैट टाइम जब ABCL डूब गई थी तब, सो इन एट दैट एज यू नो ये एक हौसला रखना कि भाई मैं मेरी लोन्स है, एंड इट वाज नॉट लाइक सम 100,000, इट वाज इन मिलियंस उनकी लोन्स थी, तो मैं ही खुद कर दूंगा, सो दैट वाज अ ग्रेट क्वालिटी,
1: क्रोर्स एंड क्रोर्स,
0: यस यस,
1: 210 क्रोर्स और समथिंग लाइक, एंड ही पेड बैक
0: एवरी पेनी टू ऑल हिज लेंडर्स, यस एब्सोल्युटली, थैंक यू संजीव जी, थैंक यू सर, कीप लिसनिंग, थैंक यू जी,
1: टेक केयर, बाय,
0: थैंक यू। फनीश, आर यू अलाइव ऑन एयर? हेलो,
2: हेलो, यस So, there are three things that I would like to say about him outside of acting. Of course, he is a great actor. But he never gossips. Okay?
0: Yes.
2: That is one thing. He gives all the credit to his fans, that whatever he is today is because of his fans. Just say, wo KBC ke show mein, if you can see, you know, how he really, you know, gives them the credit and respects them. And third thing, he has a childlike curiosity.
0: Yes.
2: You know, he wants to learn and he's so interested into like each and every participant, what they are doing, and if there is anything new. You know, that kind of curiosity at this age, 86 or 84, whatever he is, to have is very rare.
0: Very rare.
2: I mean, he's a great human being.
0: Yes,
2: but,
0: he is.
2: So that's all I wanted to say.
0: Absolutely. Thank you, ma'am. Thank you so much.

सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आता है कि जब हमें लगता है कि नाउ व्हाट व्हाट वी विल डू, एंड यू नो सबकी अलग अलग अपनी रिएक्शन होती है, अपनी तरीके से किसी भी मुश्किलात जो होती है उसका सामना करने की सबकी अपनी अपनी अलग स्टाइल होती है, बट वी ऑल गो थ्रू दैट फेज कि हमें लगता है कि अब क्या होगा, व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो वो अमिताभ जी के साथ भी हुआ, लेकिन एज आई सेड कि जब अमिताभ जी के साथ होता है तो इट बिकम्स अ नेशन वाइड न्यूज़। ABCL के साथ कुछ होता है, इट बिकम्स अ नेशन वाइड न्यूज़। पॉलिटिकली कुछ स्कैंडल होता है, इट बिकम्स अ नेशन वाइड न्यूज़ जो उनके साथ हुआ। फाइनेंशियली एट द सेम टाइम नो मूवीज़, नो रेपुटेशन, नो गुडविल फॉर वॉट एवर रीज़न, पोलिटिकल स्कैंडल्स में नाम आना वगैरह वगैरह। नाउ इस सारी चीज़ों के बावजूद वॉट ही कुड हैव डन कि वो कुछ भी कर सकते थे, राइट? अपने मूवीज़ को कुछ भी साइन कर सकते थे, एट द सेम टाइम वो किसी के पास से लोन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। गिरने के बाद फिर उठे एक नई पहचान के साथ, इवन दो ही वॉज इन लेट 50s, ये सारी बातें जब उनके साथ हुई, ही डिड गो टू यश चोपड़ा ऑन हिज ओन। सोचिए कि एक तरफ उन्हें कोई लोन दे रहा है, इंडिया का सबसे अमीर बंदा ये कह रहा है कि आप मुझसे लोन ले लीजिए, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट पेइंग इट बैक एनी टाइम सून, बट ही सेज नो आई एम फाइन। एट दैट सेम टाइम वो अपनी जो डिग्निटी है उसे साइड पे रख के ही गोज़ टू आस्क फॉर अ वर्क। यही यश चोपड़ा साहब, जिनके लिए उन्होंने बेहद बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबसूरत फिल्म्स दी है, बट यश चोपड़ा नेवर आस्क्ड हिम आफ्टर 80s, लेट 80s के 90s में कि भाई फिल्म्स करोगे, एंड ही गोज़ टू हिम कि भाई मुझे फिल्म आपके साथ करनी है बिकॉज मुझे पैसे की ज़रूरत है, एंड ही स्टार्टेड हिज करियर अगेन। एट द सेम टाइम जब TV का दौर नहीं था, आज OTT प्लेटफॉर्म का टाइम है, आज लोग बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी आ रहे हैं, सो आफ्टर यू नो इफ यू आस्क एनी स्टार दे विल बी ओके, लेकिन इन 2001 जब TV का दौर नहीं था, स्टार्स के लिए TV पे जाना, ओ माई गॉड, आपके पास फिल्म नहीं है इसीलिए आप गए, ये एक नोशन था कि TV पे कौन जाता है, TV पे वही जाते हैं जो फ्लॉप एक्टर्स होते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन बीइंग अ सुपरस्टार, जब उन्हें ऑफर मिली थी कौन बनेगा करोड़पति की, ही एक्सेप्टेड दैट, ही डिड नॉट थिंक कि मैं भाई TV पे काम करूँगा फॉर मनी। जी हाँ, वो जो पैसे जिनको उन्हें लौटाने थे, नॉट बाय लोन्स, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत से, सो इवन दो ही वॉज इन इज लेट 50s, ही एक्सेप्टेड दैट ऑफर। तो गिरने के बाद फिर से खड़े होना, फिर से फिल्मों में वापस आना, TV के जरिए भी लोगों के घर घर पहुंचना, दैट इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट क्वालिटी। एक और क्वालिटी है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, लेकिन इस गाने के बाद।

सो अनदर क्वालिटी दैट आई एम बिग फैन ऑफ इज ऑफकोर्स मैंने जैसे कि कहा कि खड़े होना, फिनिक्स, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट बर्ड फिनिक्स राइट, कि कैसे वो आग में चला जाता है लेकिन फिर से ही कम्स बैक, एंड दैट इज आई थिंक अमिताभ बच्चन जी है एक मिसाल है हमारे लिए. यू नो मीडिया जो होती है, मीडिया लाइक आप गॉसिप मैगजीन्स की बात कर लीजिए, अमिताभ बच्चन जी को भी नहीं छोड़ता राइट, एनीबडी दे वुड लव टू गॉसिप. तो अमिताभ जी के लिए उन्होंने मीडिया में बहुत कुछ हमेशा 70s से लेकर आज तक बहुत कुछ छपा है. एंड यूजुअली आई डोंट टेक एनी हीरोइन और हीरोज नेम ऑन दिस शो पर्टिकुलरली. सो बहुत सारे उनके हीरोइन, उनके अगेंस्ट हीरोइन जो एक है, उनके लिए उनके लव अफेयर दिस दैट, एंड इनफैक्ट वो हीरोइन, वो एक्ट्रेस ने भी बहुत दफ़ा डायरेक्टली इनडायरेक्टली शी हैज़ मैंशनड अबाउट हर लव एंड एवरीथिंग अबाउट अमिताभ बच्चन जी. लेकिन आप कभी भी अमिताभ बच्चन जी के मुंह से आपने कभी भी इन एनी ऑफ हिज इंटरव्यूज, वेदर इट इज़ अ प्रिंट इंटरव्यू, a video interview, any other interviews, you would have never heard him saying anything about any of his co-stars. Kuch bhi nahi, never. Pyar tha, nahi tha, nafrat thi, nahi thi, achhi lagti thi, nahi lagti thi, never. And not only about the co-stars, not only about the actresses, never about any director, producer, co-stars, male singers, female singers, kisi ke liye bhi, unki inhone kabhi bhi digitally ya interviews, video interviews mein कोई ऐसी बात नहीं की. उनकी डिग्निटी हमेशा रखी, उनके लिए बहुत कुछ कहा गया, उनके लिए उनकी को स्टार्स ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा. एंड यू नो वन ऑफ द बेस्ट, ऑफकोर्स वो तो है ही, लेकिन लास्टली ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप KBC देखते होगे एट दिस एज, उनकी जो डिसिप्लिन होती है, ही इज़ इन हिज 80s, एक जो डिसिप्लिन में वो रहते हैं और वो दैट शो, यू नो कि उनको शो के लिए इट्स नॉट ओनली 2 hours और 3 hours ऑफ शूटिंग, इट इज़ होल डे, एंटायर डे उनकी शूटिंग में लग जाते हैं. और उसके बावजूद वेन एवर ही टॉक्स टू हिज, यू नो जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे बात करते हैं, ही इज़ नेवर दी ग्रेट अमिताभ बच्चन कि मैं सुपरस्टार हूँ भाई, आप मेरे सामने बैठे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, आपके नसीब बन गए कि मेरे सामने बैठकर आप ये गेम खेल रहे हो. ही इज़ नेवर इन दैट मोड, ही इज़ सच ए हम्बल, इतनी ह्यूमिलिटी रहती है. कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदी हो, कितनी भी हम्बल बैकग्राउंड हो, देर आर मे बी फार्मर्स समटाइम्स, सम अनएजुकेटेड पीपल, कोई भी उनके सामने बैठा हो, बट ही स्टिल द सेम. इतनी ह्यूमिलिटी से उनसे बातें करना, उतनी उनकी जो एक मोड होता है उनका एज एन एंकर, ही इज़ नॉट एन एंकर एट दैट टाइम, ही इज़ अ ह्यूमन बींग हु वॉन्ट्स टू लिसन टू दैम, हु आर सो विज सो केयरिंग एंड ही सो एम्पथेटिक फॉर दैम, एंड दैट इज़ अमिताभ बच्चन, एंड दैट इज़ सो इंस्पायरिंग राइट. कि 80s में है, ही नोज दैट कि उन्होंने सब कुछ अचीव कर दिया लाइफ में, पैसे भी बहुत है, गुडविल भी है, रेपुटेशन भी है. सो क्या हुआ अगर मैं किसी फार्मर से या किसी भी पार्टिसिपेंट से, कंटेस्टेंट से अच्छी तरह से बात नहीं करूँगा, वॉट विल गो रॉन्ग. ही स्टिल डज दैट एवरी डे, एवरी टाइम, इन ईच ऑफ हिज शो, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ हिज, एंड दैट इज अमिताभ बच्चन.

0: میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی, مگر یہ ہو نہ سکا. مگر یہ ہو نہ سکا, اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں, تیرا غم, تیری جستجو بھی نہیں. گزر رہی ہے زندگی کچھ اس طرح جیسے اسے کسی کی سہارے کی آرزو بھی نہیں. نہ کوئی راہ, نہ منزل, نہ روشنی کا سراغ. بھٹک رہی ہے اندھیروں میں زندگی میری. انہی اندھیروں میں رہ جاؤں گا میں کبھی کھو کر. میں جانتا ہوں میری ہم نفس, مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے.
1: अमिताभ जी की आवाज सुनना भी एक प्रिविलेज है, उनको देखना बड़े पर्दे पर एक प्रिविलेज है, उनको छोटे पर्दे पर देखना एक प्रिविलेज है, उनकी टाइम मैनेजमेंट से सीखना एक प्रिविलेज है, उनकी डिसिप्लिन से सीखना. और जिंदगी में कितनी भी मुश्किलात आ जाए, कभी कभार लोग आपसे भरोसा आपका उठ जाएगा, कभी लोगों को लगेगा कि कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी 70s में 13 फिल्मों के फ्लॉप होने के बावजूद भी कुछ करना ये अलग बात है. 90s में फ्लॉप होने के बाद फिर से वापस आना ये अलग बात है. ये सारी इंस्पिरेशनल बातें हम शायद बॉलीवुड से सीखे ना सीखे, लेकिन बिल्कुल हम अमिताभ बच्चन जी से सीख सकते हैं. दैट इज दी लेजेंडरी अमिताभ बच्चन, जिनका जन्मदिन है कल. और एक बार फिर से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो.
2: की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी. ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका. मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं. गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं. न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग. भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी. इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर. मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरी जिंदगी मेरी. इन्हीं अंधेरों में दिल, न रोशनी का सुराग. भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी. इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर. मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है.
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो. 2 बजे तक ये साथ, ये सेगमेंट. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपके ढेर सारे कॉल्स के लिए. 2 से 3 के बीच में मैं नीलम प्रस्तुति करूंगी आपके लिए. फन एशिया रेडियो की होती है ये प्रस्तुति, कम्युनिटी आउटरीच की होती है ये प्रस्तुति. एंड दैट इज कम्युनिटी राउंड अप, कुछ इंस्पिरेशनल पेट्रोटिक एंड मोटिवेशनल गानों के साथ कम्युनिटी में होने वाले बहुत सारे अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, एक्टिविटीज़ की जानकारी. और हमारे साथ जुड़ते हैं किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि. ये सारी बातें, ये सारे गाने, सारी जानकारी आपके साथ एवरी सैटरडे ऑन 104.9.
3: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
4: Official tax and finance partner, AG FinTax.
3: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: In association with Passion Health Primary Care.
5: अजी सुनते हो?
6: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
7: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
8: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी.
9: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
8: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में?
9: दम में नरमी, मसालों में जादू, और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
10: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts, and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
11: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
10: Barista House, richness of biryani bliss.
11: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
12: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
11: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
12: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
13: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
14: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
15: ऑर्डर ऑर्डर रिसीविंग इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
16: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
15: मिस क्लिक्स
17: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
15: कस्टमर्स कितने आए
18: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
19: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a FunAsia Network product.
20: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on FunAsia Radio.

KZM पे 104.9 FM वनी शरीरों पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ और ये कार्यक्रम आपकी सेवा में हम प्रस्तुत करते हैं हर शनिवार की दोपहर 2 से 3 के बीच में एंड इट इज द कम्युनिटी आउटरीच की प्रस्तुति कम्युनिटी राउंड अप। कुछ गाने आप ही के पसंद के पेट्रोटिक मोटिवेशनल इंस्पिरेशन एंड स्पिरिचुअल, उसके साथ बहुत सारी जानकारी आपके ही शहर में होने वाले इवेंट्स की और उसके साथ हमारे साथ जुड़ते हैं धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि हर शनिवार की दोपहर। दिस शो इज ब्रॉट टू बाय अवर सीईओ वेशारी ठक्कर जी, हाँ, अ फ्री प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग दिस आवर एंड फॉर एंटायर कम्युनिटी। एक छोटा सा प्रयास आप सभी की मदद करने के लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, फॉर एंटायर कम्युनिटी, फॉर ऑल द नॉन प्रॉफिट एंड सोशल एक्टिविटीज।

दिशा से बह के सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे

आओ मेरी राम रामायण। जी हाँ, नई मूवी रामायण पार्ट वन से लिया गया था गीत ऑन 104.9 FM वनेशा रेडियो। आप ही की पसंद के कुछ स्पिरिचुअल इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल एंड पेट्रियोटिक गाने मैं नीलम लाती हूँ हर शनिवार की दोपहर ड्यूरिंग दिस आवर दैट इज 2 to 3 PM 104.9 FM वनेशा रेडियो। श्री राम मंदिर इन प्लेनो इज हैविंग नवरात्रि सेलिब्रेशन एट श्री राम मंदिर वंस अगेन अक्टूबर 11th दैट इज टुमारो टिल अक्टूबर 19th रास गरबा एवरी नाइट 8:15 PM till 10:30 PM They have Grand Mata Ki Chowki on October 19th and Dashera is on October 20th. That is happening at Shri Ram Mandir in Plano. And they have live Garba Ji haan, with live music on October 15th. Aise bahut sare aur bhi karyakram ki jankari aapko deni hai. To bane rahiye hamare saath till 3 PM.

कुछ और कम्युनिटी इवेंट्स की जानकारी आपको देती चलूं। एंड वंस अगेन, अगर आप भी हमें सुन रहे हैं और आपने कभी भी हम तक कोई कम्युनिटी इवेंट्स नहीं पहुंचा एंड यू आर थिंकिंग भाई हमारे कम्युनिटी में भी इवेंट्स होते हैं, वी आर ऑल्सो नॉन प्रॉफिट, हमारी भी कोई धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है, तो वेल दिस इज योर प्लेटफॉर्म, बिल्कुल हम तक पहुंचेगा। एंड दैट इज neelam@phanesia.net, वंस अगेन इट इज neelam@phanesia.net। आपके इवेंट्स बिल्कुल हम प्रमोट करेंगे ड्यूरिंग दिस आवर ओनली, एंड दैट इज अ कम्युनिटी आउटरीच की प्रस्तुति कम्युनिटी राउंड अप। रासोत्सव, वैष्णव संघ ऑफ डायलस प्रेजेंट्स रासोत्सव, दैट इज हैपनिंग टुमारो बिटवीन 4 and 6 PM October 11th, एंड दैट इज बाय वैष्णव संघ ऑफ डायलस। पोलियो वॉक, एंड दैट इज वर्ल्ड पोलियो कॉप, एंड दिस इज बाय रोटरी क्लब, एंड हैपनिंग ऑन October 24th 11 AM इन द मॉर्निंग। लोकेशन इज ब्रूक हेवन मेन कैंपस, दैट इज अ पोलियो वॉक बाय रोटरी क्लब। आज है आखिरी दिन जी हाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का, और आप जा सकते हैं श्री राधा कृष्ण टेम्पल में। अगर आपने अभी तक इस डे को अटेंड नहीं किया, भागवत महापुराण नहीं सुनी, एंड इट इज फॉर द पितृपक्ष, तो जरूर जाएगा, दिस इज द लास्ट डे। और आप जानते होंगे कि पितृपक्ष अमावस्या आज है। रघुनाथ टेम्पल इज सेलिब्रेटिंग श्री शारदीय नवरात्रि स्टार्टिंग टुमारो October 11th, October 12th ऑल्सो एंड October 19th, एंड दे डू हैव गरबा दांडिया 11th to 19th, एंड October 17th इज चंडी यज्ञ, दैट इज हैपनिंग एट श्री रघुनाथ टेम्पल। स्वामीनारायण गुरुकुल संस्था ऑल्सो सेलिब्रेटिंग नवरात्रि, एंड दैट इज स्टार्टिंग टुमारो October 11th टिल October 19th मंडे, दैट इज एवरी नाइट, एंड दैट इज अ स्वामीनारायण गुरुकुल संस्था। राधा कृष्ण टेम्पल में आज है पूजा, बिल्कुल आप जा सकते हैं, एंड दैट इज फॉर सर्व पितृ अमावस्या पूजा। हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर फोर्ट वर्थ, जहां पर शारदीय नवरात्रि महोत्सव स्टार्टिंग टुमारो 11th टिल October 19th, एंड दे ऑल्सो हैव चंडी महायज्ञ हैपनिंग ऑन October 18th। वंस अगेन, इट इज बाय हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर फोर्ट वर्थ स्टार्टिंग नवरात्रि महोत्सव टुमारो October 11th। राधा कृष्ण टेम्पल स्टार्टिंग October 10th टिल October 20th, एंड दैट इज नवरात्रि, एंड दे हैव अ लाइव ग्रुप ऑल द डेज, एंड दैट इज राधा कृष्ण टेम्पल। हिंदू टेम्पल ऑफ अरविंद, दे एफ डब्ल्यू हिंदू टेम्पल इन एकता मंदिर स्टार्टिंग नवरात्रि टुमारो, एंड दैट इज दे हैव लाइव गरबा, दैट इज 11th, 16th and 17th वीकेंड्स में, बिल्कुल आप जा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट चंडी महायज्ञ हैपनिंग ऑन 18th of October, एंड ऑल्सो माता का जागरण, जी हाँ, एंड दैट इज माता की चौकी ऑन October 15th। फ्लावर माउंट हिंदू टेम्पल ऑल्सो स्टार्टिंग शारदीय नवरात्र सेलिब्रेशन स्टार्टिंग टुमारो। श्री राम मंदिर इन प्लेनो, एज आई सेड, स्टार्टिंग टुमारो। So all the temples across DFW starting Shardiya Navratra celebration tomorrow. So bilkul aap ja sakte hai 11 tarikh Sunday, and the last day Dashera is on 20th, jahan par aap Dashera ke Ravan Dahan se leke aur bhi bahut sare celebration hoge, and this time 18th, that is October 18th is Chandi Mahayagna, which is a weekend. So bilkul aap Mahayagna ke bhi jahan jahan bhi aap hai, jahan jahan se aapki nazdeeki koi bhi mandir hai, and as I said, you know, this is the show, I get all the announcements from all the temples, and even though if you think ki hamare temples ki bhi announcements nahi aayi, well, why not, this is your platform, and not only temples, gurudwara, masjid, church, jo bhi aapki dharmik sanstha hai, jis bhi aap, jo bhi aapka religion hai, and you do want to promote those events, you do want to talk about those events, hamari community tak pahunchana chahe, then well, this is your platform, every Saturday, brought to you by our CEO Vaishali Thakkar, to zarur mujhe email kijiyega, that is neelam@phanesia.net. नेपाली मंदिर इन यूलिस इज ऑल्सो हैविंग अ दशहरा सेलिब्रेशन, जिसकी बातचीत करेंगे हम उनके प्रतिनिधि से लाइव ऑन एयर आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक, एंड हम इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेगी DFW हिंदू टेम्पल के भी प्रतिनिधि। अलॉन्ग विद दैट विवायो श्रीनादम हवेली इज ऑल्सो हैविंग लाइव गरबा, दे हैड यस्टरडे वंडरफुल ऑडियंस, वंडरफुल ग्रेट पार्टिसिपेशन, यस्टरडे दे हैड लाइव गरबा, दे आर ऑल्सो गोइंग टू हैव लाइव गरबा ऑन 16th and 23rd।

0: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Tanu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show, and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
1: That garba was totally worth it. We had so much fun.
2: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
1: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
3: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
4: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you have an experience in media, sales, or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual, and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
6: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 Or visit astrologerishwar.com.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
11: वेलकम बैक दिस इज केसीएमबी 104.9 FM फनेश रेडियो पे मैं हूं नीलम आपके साथ अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम कम्युनिटी राउंडअप में स्वागत है आप सभी का जी हां एज द नेम सजेस्ट दिस इज फॉर यू फॉर एंटायर कम्युनिटी आपसे बनता है ये कार्यक्रम आप ही के लिए होता है ये कार्यक्रम तारा कमर्शियल एनर्जी का शुक्रिया अदा करती चलो जी हां सिंस 2002 विद कॉम्पिटिटिव रेट्स रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज्ड प्लान्स आज ही उनको कॉल कीजिएगा 8444282808 और taraenergy.com दैट इज 8444282808 और taraenergy.com इज द वेबसाइट कम्युनिटी आउटरीच की ये प्रस्तुति अगर आपने कभी नहीं सुनी फर्स्ट टाइम यू आर इन द कार यू ट्यून इन टू द रेडियो यू आर लिसनिंग सम पैट्रियोटिक सॉन्ग मोटिवेशनल सॉन्ग इंस्पिरेशनल सॉन्ग एंड सारी बातें चल रही है कौन सी जगह पे क्या इवेंट हो रहे हैं एंड यू आर वंडरिंग व्हाट इज दिस शो ऑल अबाउट वेल दिस शो इज ऑल अबाउट यू हमारे कम्युनिटी में जो भी इवेंट्स होते हैं, कम्युनिटी आउटरीच की जो प्रस्तुति होती है, वी ट्राई टू हेल्प ऑल ऑफ दोज इवेंट्स, प्रमोशन ऑफ दोज इवेंट्स बाय फनेशा रेडियोज, एंड इट इज़ अवर सीईओज प्रेजेंटेशन एक्चुअली, एंड आई एम जस्ट द होस्ट हियर. यहाँ मेरा नाम है नीलम दवे, एंड आई होस्ट दिस शो एवरी सैटरडे बिटवीन 2 and 3 PM, जहाँ पर हमारी बातचीत होती है हमारे शहर में होने वाले बहुत सारे नॉन प्रॉफिट इवेंट्स की. एंड यू नो इट्स नॉट ओनली अबाउट द नॉन प्रॉफिट इवेंट, वी ऑल्सो डू प्रमोट सम ऑफ द कैंपेन. समटाइम्स इट इज सम फैमिली इन सम मेडिकल इमरजेंसी, सम स्टूडेंट इन सम नीड, समथिंग दैट वी कैन हेल्प टू द कम्युनिटी. इट इज जस्ट डजेंट हैव टू बी सम इवेंट्स, इट डजेंट हैव टू बी जस्ट अबाउट समथिंग दैट यू एन्जॉय. समटाइम देर आर सम नीड्स दैट वी डू ट्राई टू प्रमोट, एंड वी डू ट्राई टू रेज अवेयरनेस इन दैट एज वेल. तो ये सारी बातें आपके साथ हम करते रहेंगे यहाँ पे ऑन फनेशिया रेडियो.

0: ओके साथ में गाना पड़ेगा वन दो बारी गाना है रिपीट करना क्या लेके आया को दो बारी वन टू थ्री गो क्या लेके
1: दो दिन की जिंदगी दो दिन का मेला एंड दिस शो इज दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय सीपीएस टुडे बाय माय टाइम इक्विटी डॉट कॉम 4697021272 सुन रहे हैं आप मुझे यानी कि नीलम को ऑन दिस फाइनेंशियल रेडियो कम्युनिटी आउटरीच की प्रस्तुति कम्युनिटी राउंड अप आपके लिए आप ही से बनता है ये कार्यक्रम एक और कार्यक्रम की आपको जानकारी दे दूं पंडित श्री गुरु शरण महाराज जी इज कमिंग टू डालस जी हाँ त्रिकाल दर्शन उनकी आप कर सकते हैं एंड दिस इज हैपनिंग वंस अगेन हियर इन डालस तो उसके लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए उसका भी नंबर दूंगी बट इट इज़ हैपनिंग ऑन फ्राइडे अक्टूबर 30th एट श्री रघुनाथ टेम्पल एंड द टाइमिंग 6 PM टिल 9 PM फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 314-570-6525 दैट इज 314-570-6525 और मकीमी मिडिल स्कूल में आप जा सकते हैं आज शाम जी हाँ मिडिल स्कूल में जहाँ पे DCICA डांडिया प्रेजेंट करते हैं डांडिया दैट इज इन मकीमी मिडिल स्कूल इन फ्लावर माउंट ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम की जानकारी हम आपको देते रहेंगे और देते रहते हैं अगर आप भी किसी संस्था से जुड़े हुए देन प्लीज डू रीच आउट टू मी नीलम @funasia.net वंस अगेन दैट इज नीलम @funasia.net

0: वी आर इंडिया 104.9 FM फनेशा रेडियो साउथ एशियन पूरी कम्युनिटी के लिए है ये कार्यक्रम एंड ऑल्सो फॉर द मेन स्ट्रीम. जी हाँ, अगर आपके कोई भी कार्यक्रम ऐसे है जो साउथ एशियन कम्युनिटी के नहीं भी है बट इट इज़ नॉन प्रॉफिट, तो वेल दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म. और इसी बात पर हम करेंगे वंदना जी से बात एंड वंदना जी हमें कुछ जानकारी देंगी फॉर DFW हिंदू टेम्पल. वंदना जी, टेल मी व्हाट इज हैपनिंग एट हिंदू टेम्पल.
1: नमस्ते नीलम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन एयर.
0: श्योर श्योर, बताइए.
1: सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ माता रानी आ रही हैं, DFW हिंदू टेम्पल में माता रानी आ रही है और नवरात्रि का महोत्सव हो रहा है. भक्ति का रंग, शक्ति का संग और माँ दुर्गा का आशीर्वाद. तो DFW डिवोटीज को यही कहना चाहूंगी कि माता रानी आ रही हैं, गेट रेडी फॉर 9 अनफॉरगेटेबल नाइट्स ऑफ डिवोशन, डिवाइन ब्लेसिंग्स, रास गरबा एंड ग्रैंड सेलिब्रेशन. और आप आए, अपने परिवार के साथ आए, अपने दोस्तों के साथ आए और माता रानी का आशीर्वाद लें. द डेट इज फ्रॉम October 11th टू October 20th. So immerse yourself in the divine atmosphere of Navratri. Daily pujas hongi, aartis hongi, Lalita Sahasranam hoga, Mahamangal aarti hogi, Mata ji ki puja hogi, and as usual, always 8:30 PM is like get ready for the wonderful Ras Garba every evening at 8:30 PM. और उसके साथ हमारी कुछ और भी पूजास हैं, जैसे कि October 16th-17th को सरस्वती पूजा है, अक्षर अभ्यासम है. October 17th को माता की चौकी है. October 18th दुर्गा अष्टमी हवन है. एंड देन October 20th रामलीला एंड रावण दहन है. सो मेनी इवेंट्स ऑल 9 days. एंड ऑल्सो मार्क योर कैलेंडर एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड कम्प्लीट इवेंट स्केड्यूल प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.hindutemple.org. I repeat, it's www.hindutemple.org.
0: वंडरफुल वंडरफुल. सो वंस अगेन 11th अक्टूबर से शुरुआत होगी, 20th इज रावण दहन दशहरा की सेलिब्रेशन. DFW हिंदू टेम्पल.org, दैट इज DFW हिंदू टेम्पल.org इज द वेबसाइट टू गो अहेड एंड चेक आउट ऑल द अपकमिंग इवेंट्स. थैंक यू सो मच वन्ना जी, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. एंड आई एम श्योर आप और आपकी पूरी कमेटी, आपकी टीम बहुत कड़ी मेहनत कर रही है इन सारे उत्सव और इवेंट्स के लिए.
1: जी जी, थैंक यू सो मच. आपको भी नीलम जी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आपके और आपके परिवार को, फन एशिया के परिवार पे बहुत सारा आशीर्वाद दें आप सभी को. और आप सभी को मिलना चाहूंगी, हमारे यहाँ जितने कार्यक्रम हैं अगर आप किसी भी दिन आए तो बहुत अच्छा लगेगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, धन्यवाद. थैंक यू मैम.

और इसी बात के साथ मैं नीलम लेती हूँ आप सभी से आज्ञा अनुमति। अब मुलाकात होगी इस सेगमेंट में आपके साथ शनिवार के दोपहर, जी हाँ, 2 से 3 के बीच में। एंड अदर शोज यू कैन लिसन, दैट इज ऑन संडेज मेरी और आपकी बातें होती है 12 से 2 के बीच में, 12 से 1 के बीच में रीजनल कार्यक्रम, गुजराती कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ, 1 से 2 के बीच में गैर फिल्मी गाने, दैट इज ऑन संडेज एंड सैटरडेज 12 से 3 के बीच में होती है ये बातें ये गाने हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। 104.9 FM फनी रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर, सपोर्टेड बाय वैशाली ठक्कर।

सुन रहे थे आप ये बहुत ही क्यूट सा गाना. होप यू गाइस एंजॉयड इट. स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आई बी एंटरटेनिंग यू टिल 6 PM. इट इज 36 मिनट्स पास 3 ऑन दिस 10th of October 2026. Hope your Saturday is going well so far. Before I get started with Boli Pyar Ki segment, want to tell you about Relative Media. Now, Fanisha Network brings its media expertise to your social media with Relative Media, from engaging reels and graphics to captions, content distribution and amplifications through Funasia's radio, digital and community platforms. Relative Media gives you or brand a complete content solution. So call them 469-424-3188 to book your content audit today. That's Relative Media, powered by Funasia Network. और अब चलते हैं बोली प्यार की सेगमेंट की तरफ. दैट्स आवर वीकली सेगमेंट विथ द रीजनल लैंग्वेज सॉन्ग्स प्लेड ऑल बाय रिक्वेस्ट. जी हाँ, इस सेगमेंट में उर्दू, इंग्लिश या हिंदी के गाने नहीं प्ले किए जाते, बल्कि प्ले करते हैं हम तमाम सब कॉन्टिनेंट के रीजनल लैंग्वेजेस के गाने. All you have to do is call us at 972-235-5555. बस एक ही रूल है, हर लैंग्वेज के हम सिर्फ दो ही गाने प्ले कर पाते हैं. Let's enjoy this popular hit, Tamil version of कहना है क्या, कन्नानुले.

0: कन्ना लाने सुन रहे थे आप तमिल वर्जन ऑफ कहना है क्या, जो कि मनीषा कुराला और अरविंद स्वामी पर पिक्चराइज किया गया था। आप सुन रहे हैं सेगमेंट बोली प्यार की, जिसमें हमारा करंट होल्ड टाइम है 5 to 10 minutes। ख्याल रखें, इफ यू आर एबल टू हियर माय वॉइस और यू आर एबल टू हियर ऑन होल्ड म्यूजिक, दैट मींस आप कतार में हैं, यू आर इन क्यू, योर कॉल इज कनेक्टेड टू द स्टूडियो एंड your call will be answered in the order it was received, so please be patient. Like I said, it could be anywhere from 5 to 10 minutes of hold time, lekin ye mera vaada hai ki agar aap patiently hold karte rahe to aapka gana zarur play kiya jayega. Aaiye ab chalte hain hamare next caller ki taraf. Phanisha Radio, aap on air hain, aapka naam?
1: Hi, this is Balaji.
0: Ji Balaji, boliye kaun si language ka gana request karenge?
1: मराठी जय राजा शिवाजी का टाइटल सॉन्ग, टाइटल ट्रैक।
0: राजा शिवाजी, ये उसका नाम है, फिल्म का नाम है?
1: हाँ, राजा शिवाजी,
0: छत्रपति
1: शिवाजी, राजा शिवाजी,
0: शिवाजी का टाइटल सॉन्ग, ठीक है, मैं ढूंढती हूँ आपके लिए।
1: का रिसेंटली मूवी आया था वो।
0: गॉट इट। और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें?
1: इरविंग।
0: अरविंद से, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड छत्रपति, इज दैट द नेम? ओके, ठीक है, गॉट इट। हम प्ले करते हैं आपके लिए, थैंक यू सो मच। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, चलते हैं इस मराठी सॉन्ग की तरफ।

0: छत्रपति सुन रहे थे आप ये मराठी गाना फ्रॉम द फिल्म राजा शिवाजी. आवाजें अजय अतुल की थी. 45 मिनट्स पास्ट 3 यू आर लिसनिंग टू बोली प्यार की वेयर इट्स ऑल अबाउट योर रिक्वेस्ट फॉर रीजनल सॉन्ग्स. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात एंड आई वांट टू रिमाइंड यू अगेन देयर इज अ 5 to 10 मिनट होल टाइम. इफ यू आर एबल टू हियर दिस ब्रॉडकास्ट प्लीज बी पेशेंट, डू नॉट हैंग अप, अदरवाइज इट टेक्स यू फर्दर बैक इन क्यू. इफ यू कैन आइदर hear the music on hold or you can hear my voice, that you know your call is connected. So that means your song will be played. All right, chalte hain next caller ki taraf. Fanisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
1: Hello.
0: Hello, ji, aap on air hai, aapka naam?
1: So my name is Neera.
0: Ji, boliye, Neera, boliye, kaun si language ka gana request karengi?
1: Malayalam.
0: Malayalam, all right. And what's the name of your song?
1: Bangalore Days movie ka Tadakam Mangalyam.
0: Tadakam kya aage?
1: Tadakam Mangalyam. Mangalyam.
0: Mandalya. Okay.
1: Mangalyam.
0: Okay. And aapne kaha film ka naam hai Bangalore Days?
1: Yes.
0: Okay. Let's see if I can find that for you. Aur aap kahan se call kari hai humko?
1: Melissa.
0: All right. Thank you so much for your call. All right. Time for a Malayalam song.

0: सब पानी दा बुलबुला सुन रहे थे आप अबरारुल हक की आवाज में ये शोक और चंचल सा पंजाबी गीत. इट्स 52 मिनट्स पास्ट 3. यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 एफएम. दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, ऑफरिंग ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग पेरोल bookkeeping and business advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888 or visit agfintax.com today. Studio ka number hopefully aapke speed dial pe hai, 972-235-5555. Panisha Radio, thank you for holding. Aap on air hai. Aapka naam?
1: My name is Sachin.
0: Aapki awaaz bahut dur se aa rahi hai, clear nahi hai. Kya naam hai aapka?
1: My name is Abdul.
0: अब्दुल, ओके बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना?
1: देश सिंधी सॉन्ग.
0: ओके, आई एम वेरी सॉरी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल सही से समझ में नहीं आ रही है. आई थिंक यू आर ऑन स्पीकर फोन. कैन यू प्लीज होल्ड द फोन इन योर हैंड, बिकॉज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स.
1: ओके, सो माय सॉन्ग नेम इज प्यारा मारू सोया मारू. It's a Sindhi song.
0: Nahin, wo Sindhi song mujhe samajh mein aa gaya, but I still can't catch the words. Can you tell me the first word?
1: Soera maru.
0: Sona maru?
1: Yeah, soera maru, pyara maru.
0: Soya maru.
1: Pyara maru.
0: Pyara maru. Okay, all right. Okay, I'm going to try to find it. Obviously, meri Sindhi itni achhi nahi hai, but we're not going to give it up, so we're gonna do it for you. All right, ladies and gentlemen, let's enjoy this Sindhi track. Enjoy.

0: मानू सुन रहे थे आप असगर खोसो की आवाज में ये सिंधी गाना ऑन बोली प्यार की। लेट्स सी हुज़ आवर नेक्स्ट कॉलर। फनीशा रेडियो आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? फनीशा रेडियो आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? जी
1: हेलो
0: जी जी बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: उड़िया।
0: उड़िया लैंग्वेज, ऑलराइट। बताइए क्या नाम है आपके गाने का?
1: डीजे
0: क्या?
1: DHI
0: DHI
1: DJ JEI
0: JEI
1: DE
0: DE okay alright let me see if I can find that. Alright, here is your Uriya song. आप लोग भी मुश्किल words वाले गाने देकर मुझे test करते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
8: Call 857-891-8942 today.
9: अरे वो केक आया क्या?
10: डीजे कौन हैंडल करेगा?
9: डेकोर वाले को कॉल किया.
10: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया.
9: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया.
10: ऑसम इवेंट्स?
9: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट. अमरीन हसनात एंड अ टीम विल हैंडल एवरीथिंग.
10: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म.
9: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ.
8: कॉल नाउ एट 214-725-7466. दैट्स 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
11: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain, but sometimes even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
12: That garba was totally worth it. We had so much fun.
13: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
12: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
14: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: Ye last Diwali pehna tha. Ye Neha ki shaadi mein. इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है.
19: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
20: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके.
19: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
20: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. Tathastu.
8: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids, all at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire Frisco, your divine destination for festive fashion.
0: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
21: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
21: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
22: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
23: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनेशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त समरीना साथ. आई गेस आई ऑलवेज सेड दैट, बट रिपीटिंग अगेन, इट इज 6 minutes past 4 ऑन दिस 10th of October 2026. उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरियत से हैं. दिस इज बोली प्यार की, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं रीजनल लैंग्वेजेस के गाने ऑल बाय रिक्वेस्ट. सो फार 6 डिफरेंट लैंग्वेज सॉन्ग्स हैव बीन प्लेड, एवरीथिंग फ्रॉम उड़िया, सिंधी, पंजाबी टू मलयालम, मराठी एंड तमिल. व्हाट आई फाइंड एक्साइटिंग इज कि मुझे भी नहीं पता होता कि अगला गाना कौन सी भाषा, कौन सी जुबान में होगा. सो लेट्स फाइंड आउट. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
24: कोमल जैन.
23: जी बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
24: मणिपुरी.
23: मणिपुरी ये लैंग्वेज का नाम है?
24: हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज है.
23: इंटरेस्टिंग. और गाने का नाम?
24: कोई ना रे.
23: कोई ना रे, ओके.
24: कोई ना रे,
23: गॉट इट. Got it. I think I found it. Is it Koinare Maga Iga? Something like that?
24: Yes.
23: Okay, gotcha. Aur ye aapne kya bola? Northeast. Matlab kis taraf?
24: It's close to Assam. It's okay. A 7 state on the east side of India.
23: Nice. Interesting. This is the first time we're playing a Manipuri song. I can tell you. Panipuri ka to mujhe pata tha. Manipuri ka nahi pata tha. Acha, aap kahan se call kar rahi hain humko?
24: मैं आपको अरविंद डालस से कॉल कर रही हूँ.
23: ऑलराइट, थैंक यू सो मच. एंजॉय योर मणिपुरी सॉन्ग.

0: सुन रहे थे हम ये भोजपुरी भजन ऑन बोली प्यार की. इट्स 14 मिनट्स पास्ट 4 एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज. इफ यू हैव ऑलवेज वांटेड टू ओन योर ओन होम बट डिडंट नो वेयर टू स्टार्ट, यू नीड टू कॉल मिस्टर हुसैन पंजवानी ए टू जी तक. ही इज गोना मेक श्योर दैट यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड मेक दिस ए हैसल फ्री प्रोसेस फॉर यू. 972-245 लोन है उनका नंबर और यू कैन ऑलवेज विजिट dreamhomemortgage.com. आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशा रेडियो आप ऑन एयर हैं, थैंक यू फॉर होल्डिंग. आपका नाम? हेलो
1: हेलो
0: आप ऑन एयर हैं, कैन यू प्लीज टेक मी ऑफ स्पीकर फोन. हेलो जी आप बताइए आपका नाम.
1: हेलो
0: जी अपना नाम बताइए.
1: प्रीति.
0: जी प्रीति बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: क्या कश्मीरी गाना चलाएंगी?
0: कश्मीरी सॉन्ग. क्या नाम है गाने का?
1: साहिबो सचिन मिठाने.
0: साहिबो सचिन
1: सचिन मिठाने.
0: ओके लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट विद दिस सच. Sat Chamme, is that what it is?
1: Yes.
0: Okay, chalo, theek hai. Let me find that. Aur aap kahan se call kar rahi hain humko?
1: Main call kar rahi hoon.
0: All right, thank you for your call.

0: बताइए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: राजस्थानी सॉन्ग केसरिया बालम.
0: राजस्थानी सॉन्ग केसरिया बालम. ऑलराइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू. कहाँ से कॉल कर रही हैं आप?
1: सलाइना से.
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. लेट्स एंजॉय दिस राजस्थानी सॉन्ग.

0: सुन रहे थे अपने जमाने का ये सुपर हिट मराठी सॉन्ग आप. दिस हैपेंस टू बी आवर सेकंड मराठी सॉन्ग फॉर टुडेज सेगमेंट. सो रियली क्विकली वांट टू मेंशन कि मराठी और तमिल गानों की हम और रिक्वेस्ट नहीं ले पाएंगे. लेट्स गो अहेड एंड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर फनीशा रेडियो. आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: हाय, मेरा नाम कृति है.
0: जी कृति.

0: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
1: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
2: ये तारा वो तारा हर तारा।
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: फ्लोर्स क्लीन
5: चेक,
4: विंडोज क्लीन
5: चेक,
4: किचन क्लीन
5: चेक,
4: एयर डक्ट्स क्लीन।
5: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
6: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business, Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
12: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
11: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
12: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
13: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस। नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर। डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
3: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
13: Barista House, richness of biryani bliss.
3: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
14: Bindas, bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas, bolo.
11: Jab gaana bole bindas, to shanti hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti, or full-on entertainment. Bindas, powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Vanisha Radio par.
15: खैर, मकदम करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से, जिसमें पेश किया जा रहा है आपके लिए सैटरडे का स्पेशल सेगमेंट बोली प्यार की, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस के गाने ऑल बाय रिक्वेस्ट। नाउ इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम पंजाबी टू सिंधी, पश्तो टू सराइकी, मलयालम टू भोजपुरी, हरियाणवी टू तमिल, कुछ भी हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट में। हाँ, पर ख्याल ये रखना है कि हर लैंग्वेज के हम सिर्फ दो ही गाने प्ले करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी रीजनल लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो जल्दी से रिकैप कर देती हूँ कि सो फार कौन कौन सी भाषाओं के गाने हम प्ले कर चुके हैं। मलयालम, पंजाबी, सिंधी, उड़िया, मणिपुरी, भोजपुरी, कश्मीरी और राजस्थानी। और तमिल और मराठी गानों के चूंकि दो दो गाने ऑलरेडी हो चुके हैं, वी विल नॉट बी टेकिंग एनी मोर रिक्वेस्ट फॉर दोज टू लैंग्वेजेस. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड एंड फाइंड आउट के हमारे नेक्स्ट कॉलर को कौन सी भाषा में सुनना है गाना. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
16: हेलो
15: जी, बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
16: गुजराती.
15: गुजराती सॉन्ग. ऑलराइट, क्या नाम है आपके गाने का?
16: ओ नील गगन ना पंखुड़ी.
15: ओ नील गगन ना पंखुड़ी. ऑलराइट,
16: पंखेरू.
15: ऑलराइट, आई विल. मुकेश साहब ने गाया है पुराना गाना. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. और आप हमें कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
16: फ्रॉम प्लेनो.
15: ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल. ये रहा हमारा पहला गुजराती सॉन्ग.

0: सुनील गगन ना पंख हीरो, ये था गुजराती गाना। मुकेश साहब की आवाज में सुन रहे थे हम, यू आर लिसनिंग टू बोली प्यार की। आवर करंट होल्ड टाइम इज 5 to 10 minutes। अगर आप इस वक्त होल्ड पर हैं, या तो आपको मेरी आवाज आ रही होगी या फिर आप ऑन होल्ड म्यूजिक सुन रहे होंगे। आइदर वे योर कॉल इज कनेक्टेड। व्हाट दैट मीन्स इज के आपकी रिक्वेस्ट 5 बजे से पहले जरूर प्ले की जाएगी। डू नॉट डिस्कनेक्ट, अदरवाइज इट विल पुट यू बैक इन क्यू। लेट्स गो अहेड एंड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर। फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली होल्डिंग। क्या नाम है आपका?
1: हाय, माय नेम इज संदीप।
0: जी संदीप, कहिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: कोंकणी लैंग्वेज, माझे रानी माझे मोगा।
0: माधे रानी
1: माधे मोगा।
0: माधे, ओके, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दैट सॉन्ग। ओके, पुराना गाना है राइट, लता जी का?
1: यस।
0: ओके ठीक है, आई विल प्ले दैट। और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें?
1: प्लेनो।
0: प्लेनो, थैंक यू फॉर योर कॉल। हियर इज योर कोंकणी सॉन्ग।

0: लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये कोंकणी जुबान का गाना। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। इट इज 41 मिनट्स पास्ट 4 ऑन दिस 10th ऑफ अक्टूबर 2026। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस लवली सैटरडे आफ्टरनून। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर, जस्ट रियली क्विकली वांटेड टू टेल यू अबाउट स्मार्ट रीच AI। नाउ दिस इज एन अनाउंसमेंट especially for business owners. Now, you guys understand, it's not just about how many people see or click on your ad. It's about how many become your customers. Meet SmartReach AI, a Phonicia Network product that helps you reach potential local customers, even those visiting your competitors across radio, digital, streaming TV, and online audio. Then measure what truly matters: calls, bookings, offer redemptions, and actual visits to your business. Visit smartreachai.us and turn local attention into customers. बोली प्यार की सेगमेंट्स में हम उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के गाने नहीं प्ले करते, बल्कि प्ले किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस के गाने, वो भी आपकी फरमाइश पर। आइए चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। Our current hold time is 5 to 10 minutes, so I want you guys to be mentally prepared. Phonicia Radio, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: नमस्कार जी।
0: जी बोलिए। नमस्कार, डिड यू जस्ट से नमस्कार? आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया। ओके, नमस्कार। ओके,
1: मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे है।
0: जी कहिए पांडे जी, आज कौन सी भाषा का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: आज अवधी का गाना सुनना चाहेंगे।
0: अवधी लैंग्वेज का नाम है?
1: जी मैडम, ये जो लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद इस एरिया में बोला जाता है।
0: अच्छा,
1: अवधी बोलते हैं। और गाने के बोल हैं, तुहे जियरा से ज्यादा मोहब पगली।
0: तोहा जियरा
1: से ज्यादा
0: मोहब
1: पगली।
0: ओके जी, लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड इट। लेट्स सी कि मेरी अवधि कितनी अच्छी है, मुझे मिलेगा कि नहीं। ओके, आई थिंक आई फाउंड समथिंग। आई थिंक दिस इज द राइट सॉन्ग। ये दिवाकर द्विवेदी ने गाया है
1: जी।
0: ओके, चलो फिर मैंने, मुझे मिल गया, मुझे नाम मिलना चाहिए। नहीं, अच्छा ये बताइए पांडे जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप?
1: जी मैं मेलिसा से कॉल कर रहा हूँ।
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।

0: अवधी जुबान में सुन रहे थे हम ये गाना. पता है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. मुझे तो अपनी तरफ से लगता था कि मुझे सारी लैंग्वेजेस के बारे में पता चल चुका है इतने सालों में सिंस आई हैव बीन होस्टिंग बोली प्यार की. बट प्रीटी मच इट्स सरप्राइजिंग एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट देयर इज ऑलवेज अ न्यू लैंग्वेज दैट आई डू नॉट नो अबाउट इवन आफ्टर होस्टिंग सो मेनी ऑफ दीज सेगमेंट्स यू नो फ्रॉम वीक आफ्टर वीक. सो लेट्स गो अहेड एंड डू अ क्विक रीकैप ऑन ऑल द सॉन्ग्स ऑल द डिफरेंट लैंग्वेज songs that we played in today's segment thus far. Just now, jo gana aapne suna, wo Avadhi zuban mein tha. Usse pehle Konkani, Gujarati, Rajasthani, Kashmiri, Bhojpuri, Manipuri, Uriya, Sindhi, Punjabi, Malayalam aur Marathi aur Tamil bhasha ke to do do gaane hum already play kar chuke hain. Yani ke un languages ki hum aur request nahi lenge. Let's find out ke hamare next caller ko kaun si zuban ka sunna hai gana. Phanisha Radio, aap on air hai, aapka naam? Hello?
1: Hello?
0: Ji, aap on air hai, ji, aapka naam?
1: Ji, mera naam Anuj Verma hai.
0: Ji, Anuj, boliye, kaun si language ka gana request karenge?
1: Haryanvi ka.
0: Haryanvi, aur kya naam hai aapke gaane ka?
1: Song ka naam hai Barsaat by Banjare.
0: बरसात बाय सो बंजारे बैंड या ग्रुप का नाम है.
1: हाँ मतलब ग्रुप का नाम है. सॉन्ग का नाम बरसात है.
0: ओके साउंड्स गुड. हम प्ले करेंगे.
1: हो सके तो पूरा बजाइएगा मैम. छोटा सा ही गाना है.
0: वक्त कम और मुकाबला सख्त है. कोशिश करेंगे. आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें.
1: मैं केलर से कॉल कर रहा हूँ.
0: थैंक यू फॉर योर कॉल. हियर इज योर हरियाणवी सॉन्ग.

0: याद आवेगी। सुन रहे थे हम ये हरियाणवी सॉन्ग, बड़ा अच्छा रिदम था, टेम्पो भी मस्त था। थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग दिस सॉन्ग, बट एज यू नो हमारे इतने कॉलर्स हैं, लाइक इस वक्त मेरी 6 की 6 लाइंस ऑन होल्ड हैं, वक्त मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। आई डोंट नो हु आर गोना बी दोज लकी कॉलर्स। वेल आई डू आंसर द कॉल्स इन द ऑर्डर दे रिसीव, सो ऑब्वियसली इट्स द पीपल हु कॉल्ड फर्स्ट। लेट्स सी इफ दे वर पेशेंट एंड स्टेड ऑन द लाइन, डिड नॉट डिस्कनेक्ट। थैंक यू फॉर होल्डिंग, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो
1: मीनाक्षी
0: जी, बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: नेपाली सॉन्ग।
0: अबाउट टाइम, कितने दिन हो गए किसी ने नेपाली गाने की फरमाइश नहीं की। आई वॉज फीलिंग द पेन, आई वाज लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन विद माय नेपाली फोक्स। बोलिए कौन सा गाना?
1: सो इट्स लाइक दसैँ तिहार चाडबाड़ बाड़।
0: ओके, इतनी अच्छी नहीं है मेरी नेपाली, फिर से ट्राई करते हैं। ओके, व्हाट्स द फर्स्ट वर्ड?
1: डी ए एस एच ए आई एन।
0: ओके दशन, ओके व्हाट्स द सेकंड वर्ड? और आप कहाँ से कॉल करेंगे हमको?
1: मैं अरविंद से।
0: ऑल राइट, नाउ यू नीड टू टेल योर पीपल दे नीड टू कॉल मोर रेगुलरली, बिकॉज आई थिंक इट्स बीन एट लीस्ट
1: Saturday, if I'm not at work, I call you.
0: Thank you. Enjoy your Nepali song. Yeah, I know a lot of Nepalis tune in. Bhool jate hain call karna.

0: सुन रहे थे आप ये नेपाली सॉन्ग 52 मिनट्स पास्ट 4 यानी कि सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं. लेट्स सी हाउ मेनी सॉन्ग्स वी कैन स्क्वीज इन. फनीशा रेडियो आप ऑन एयर है, प्लीज टेक मी ऑफ स्पीकर फोन, प्लीज टेक मी ऑफ ब्लूटूथ. जी आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: ओम.
0: ओके बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे? हिमाचली सॉन्ग. ओके और क्या नाम है आपके गाने का?
1: जॉन सारिये.
0: जॉन सारिये,
1: या इज फ्रॉम
0: ओके
1: गौरव एंड
0: गौरव शर्मा एंड राजेश त्यागी.
1: यस यस, गुड डांस सॉन्ग.
0: ओके ऑलराइट, एंड वेयर आर यू कॉलिंग अस फ्रॉम?
1: बैकिनी.
0: ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल. हियर इज योर हिमाचली सॉन्ग.

स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. और अब जो सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके एंड में हम आपको देंगे राहत फतेह अली खान साहब की कॉन्सर्ट का एक अदद टिकट. वो टिकट कोई भी जीत सकता है, ठीक है? ज्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी जीत सकता है, प्रोवाइडेड कि आप 5:30 बजे तक कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस सेगमेंट को सुने. यस, दैट इज द ओनली रूल, दैट्स द ओनली वे यू कैन गेट टू आंसर द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क. इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे ट्यून्ड टिल 5:30 एंड देन देयर इज नो वन हू कैन स्टॉप यू from winning this ticket to the Rahat Fateh Ali Khan concert. इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताबुन किया है माई टाइम इक्विटी ने. लेड बाय CPA सुधीर पाई, माई टाइम इक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज स्ट्रेटजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग. विजिट mytimeequity.com और कॉल 4697021272. ओके, सो अब शुरू करेंगे हम ये राहत फतेह अली खान कॉकटेल स्पेशल. अच्छा, कॉकटेल क्यों? वो इसलिए क्योंकि हर एक गाने के बाद यू विल गेट टू हियर अ राहत फतेह अली खान साहब का गाना, हिट गाना जो आपको अच्छा लगेगा, और आपने बस उसका ट्रैक रखना है 5:30 बजे तक. शुरुआत करते हैं हम उनकी उनके इस गाने के साथ, taken from the film Aaja Nach Le. This is the first Rahat Fateh Ali Khan song that we're playing for you.

माधुरी डिक्सिट पर पिक्चराइज किया गया ये गाना राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में सुन रहे थे आप, टेकन फ्रॉम द फिल्म आजा नच ले। अगले 20 मिनट हम आपको सुनाएंगे मिले जुले गाने और हर दूसरा गाना राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में होगा। सुनते रहिए, ट्रैक रखिए और फिर जीतिए राहत फतेह अली खान साहब की कॉन्सर्ट का टिकट।

मनवा लागे श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गाना जो दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पर पिक्चराइज किया गया था। इस वक्त आप सुन रहे हैं राहत फतेह अली खान कॉन्सर्ट कॉकटेल स्पेशल, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं उनके गाए हुए गाने। दिस सेगमेंट विल कंटिन्यू टिल 5:30 और इसके एंड पे हम पूछेंगे एक सवाल जो आप जिसका जवाब तभी दे सकते हैं अगर आपने नॉन स्टॉप ध्यान से सुना हो ये सेगमेंट टिल 5:30।

शाहरुख खान और माहिरा खान पर पिक्चराइज किया जाने वाला ये गाना आप हर्षदीप कौर और अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे थे, टेकन फ्रॉम द फिल्म रईस। यू वी आर डूइंग अ स्पेशल सेगमेंट ऑन 104.9 एफएम राइट नाउ, जिसके आखिर में विल बी डूइंग अ गिव अवे फॉर राहत फतेह अली खान कॉन्सर्ट स्केड्यूल्ड फॉर अक्टूबर 16th।

taken from the film Singh is King. ये गाना अक्षय कुमार और कटरीना कैफ पर पिक्चराइज किया गया था. आवाजें श्रेया घोषाल एंड राहत फतेह अली खान. दिस पार्ट ऑफ आवर शो ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, जहां उनकी सर्विस अवेल करने के लिए इंश्योरेंस जरूरी नहीं. और इफ दे आर बाय एनी चांस आउट ऑफ योर नेटवर्क, यू कैन स्टिल यूज पैशन हेल्थ डायरेक्ट, व्हिच इज अ मेंबरशिप प्लान फॉर ओनली $85 अ मंथ, व्हिच गिव्स यू प्राइमरी केयर, प्रिवेंटेटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड मोर. आप उन्हें कॉल करके डिटेल्स हासिल कर सकते हैं 214-666-6259 और विजिट PassionHealthPhysicians.com. Now, this is not a health insurance and there may be some eligibility restrictions. So, do check out their website, PassionHealthPhysicians.com. Aur yaad rakhiye, their Frisco location is open on weekends.

लापता लेडीज का ये गाना सुन रहे थे आप अरिजीत सिंह की आवाज में. आई होप यू गाइज आर रेडी. आई बी आस्किंग माई क्वेश्चन इन जस्ट अ लिटिल बिट. स्टे ट्यून्ड. गिविंग अवे राहत फतेह अली खान कॉन्सर्ट टिकट इन जस्ट अ बिट.

सुन रहे थे राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म झूम बराबर झूम। ये गाना अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंता पर पिक्चराइज किया गया था।

केदारनाथ फिल्म के इस गाने के बाद आइए लेकर चलते हैं हम आपको बादशाह फिल्म के इस गाने की तरफ. द प्रीवियस सॉन्ग वी प्लेड वॉज संग बाय अमित त्रिवेदी और हमारा ये गाना राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में.

Mere Rashke Kamar, taken from the film Badshah. All right, ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready to win the ticket to the concert that's happening on Friday, October 16th at the Comerica Center in Frisco? Raat saade 8 baje Qawwali and Sufi, as well as Bollywood songs sung live by Rahat Fateh Ali Khan and his son Shah Zaman Ali Khan. और इस टिकट को जीतने का तरीका ये है कि आप मुझे बताइए कि पिछले आधे घंटे में मैंने कितने गाने प्ले किए राहत फतेह अली खान साहब के और वो गाने कौन से थे. इफ यू नो द आंसर कॉल एंड विन द टिकट 972-235-5555.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal. Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
4: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
2: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
4: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
5: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
6: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
5: Miss Clicks?
7: 100 logon ne click bhi kiya.
5: Customers kitne aaye?
8: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
7: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
2: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
9: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान.
13: राहत फतेह अली खान.
2: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan ek hi stage par.
7: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmeen Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
2: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
7: Tickets on Ticketmaster and Suleha.com.
14: Jag ghumeya thare jaisa na koi.
15: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. भाई मजा आ गया वो कॉकटेल सेगमेंट करके. एक तो ये कि उसमें गाने सब एक से बढ़कर एक थे, मानते हैं कि नहीं. दूसरी बात ये कि हमने नोट किया कि आप लोग सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे. आई नो ऑल ऑफ यू न्यू कि मैंने 5 गाने प्ले किए थे पिछले आधे घंटे में. इन बिटवीन आई प्लेड अदर सॉन्ग्स टू एंड आई केप्ट इंट्रोड्यूसिंग ईच सॉन्ग सो दैट यू गाइज नो एग्जैक्टली कौन कौन सा गाना प्ले किया गया था. सो इफ योर आंसर वॉज पहला गाना ओरे पिया फ्रॉम द मूवी आजा नच ले, दूसरा गाना तुम जो आए फ्रॉम द फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तेरी ओर फ्रॉम सिंग इज किंग, बोलना हल्के हल्के फ्रॉम झूम बराबर झूम, एंड मेरे रश के कमर फ्रॉम बादशाह। अगर ये था आपका जवाब तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन प्रिया बाजी ले गई, बिकॉज प्रिया वॉज द फर्स्ट वन टू कॉल। सो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिया, आई एम सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी फॉर यू, नोइंग दैट यू आर गोना गो टू दिस कॉन्सर्ट एंड एंजॉय इट टू द फुलेस्ट। थैंक यू everyone who participated, aur jo bade dhyan se man laga kar sun rahe the segment ko, sunte rahiye, we'll have more giveaways to come soon, don't give up this easy. Ab kuch mile jule romantic gaane aapke manoranjan ke liye, wishing you all a very good evening. This is Amreen Hasnat, I'll be with you till 6 p.m.

शादी में जरूर आना, इनवाइट नहीं कर रही हूँ मैं, फिल्म का नाम बता रही हूँ जिसका गाना इस गाने से पहले हमने आपको सुनवाया था, एंड उसके बाद ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म जब हैरी मेट सेजल, शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा पर पिक्चराइज किया गया था, आवाज थी अरिजीत सिंह की। आई होप यू आर एंजॉयिंग योर इवनिंग दस फार, 47 मिनट्स पास्ट 5, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग, दिस is Amreen Hasnat.

कसम से मजा आ रहा है कि नहीं। आई होप यू आर एंजॉयिंग माई म्यूजिक सिलेक्शन। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि एक से बढ़कर एक अच्छा गाना हो ताकि आपकी ये शाम और भी सुनहरी और भी सुरीली हो जाए।

एनिमल से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप अरिजीत सिंह की आवाज में. इट्स 56 मिनट्स फास्ट 5 यानी कि मेरे जाने का वक्त हो गया है. आई नो आप चाहते हैं मैं कुछ और देर रुकूं पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज जाऊंगी तो कल आऊंगी, है कि नहीं. कल होगी आपसे फिर मुलाकात बिटवीन 3 and 6. मीनवाइल रिमाइंडिंग यू गाइज अबाउट ऑसम इवेंट्स. दैट्स राइट, दैट इज माई फुल सर्विस इवेंट कोऑर्डिनेशन कंपनी वेयर आई कैन हेल्प यू विद एनी टाइप ऑफ इवेंट. चाहे 25 लोगों की छोटी सी पार्टी हो या 2500 की पार्टी हो, कॉन्सर्ट हो, वट एवर इट मे बी, इफ यू नीड हेल्प विद इवेंट कोऑर्डिनेशन, वेदर इट्स फुल सर्विस और ऑन द डे ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्ड फॉर योर इवेंट, आई एम एट योर सर्विस. इनफैक्ट अगर सारी कोऑर्डिनेशन आप खुद कर चुके हैं एंड ऑल यू नीड इज अ प्रोफेशनल एमसी, वेल हियर आई एम. गिव मी अ कॉल. आपकी होस्ट, आपकी दोस्त समरीन हस्तान, आई बी हैप्पी to add Char Chand to your event. 214-725-7466 hai mera number jis par aap mujhe call kar sakte hain. Obviously not right now, but as soon as I am done, you're welcome to call to get information about the services that we offer through Awesome Events. Once again, signing off, this is Amreen Hasnat.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
8: Are you sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
9: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sab को थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: फ्लोर्स क्लीन
12: चेक,
11: विंडोज क्लीन
12: चेक,
11: किचन क्लीन
12: चेक,
11: एयर डक्ट्स क्लीन.
12: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
13: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? दैट्स वेयर डक्ट टाइम कम्स इन. प्रोफेशनल डक्ट क्लीनिंग विद नेगेटिव प्रेशर टेक्नोलॉजी, नो रोटो ब्रश, प्लस ड्रायर वेंट और चिमनी क्लीनिंग. घर हो, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ऑफिसेस या फिर एनी बिजनेस, डक्ट टाइम क्लीन्स बियॉन्ड व्हाट यू कैन सी. कॉल जीतू पटेल एट 972-877-2500.
14: Ladies, to mark her 15 years of service to the DFW community, Dr. Madhuri Gudipati, board-certified OBGYN, is moving to a new office location in West Plano, conveniently located on Dallas Parkway in Windhaven. Visit yourobgynspecialist.com or call 972-867-7500 for an appointment today. Dr. Madhuri, helping women lead healthy lives.
15: जहाँ तंदूर की आंच घर जैसी गर्माहट और अपनों का साथ सब एक ही मेज पर मिल जाए, अब वही पंजाब अपने दमदार स्वाद और दिल से की गई मेहमान नवाजी के साथ

0: पंजाब बाय पेज थ्री नाउ इन इरविंग. स्वाद पंजाब का अंदाज पेज थ्री का.
1: 5 to 8 straight from the heart. Girl, Hindi bol.
2: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
3: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
1: Phone uthaye, number dabaye.
2: 347-449-4242.
4: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
5: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी 2 एंट्रीज एंड गेट 1 एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
6: वांट टू एक्सप्लोर प्रॉपर्टीज इन इंडिया? यू डोंट नीड टू फ्लाई टू इंडिया. The Gruh Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 AM to 8 PM. Free entry, free parking. Gruh Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
7: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

अ वेरी गुड इवनिंग डैलस, आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। अब मुझे ना आप एक बात बताइए कि जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप क्या करते हैं? कोई कुकिंग करता है, कोई गार्डनिंग करता है, कोई डांस करता है, कोई शॉपिंग करता है और तो कोई तो बस अपना फेवरेट शो के साथ सोफा पर आराम करता है। लेकिन आजकल ना एक नया ट्रेंड आ गया है, अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो फिर पेंटिंग बेचना शुरू करो यार, फिर अगर आपको कुकिंग पसंद है तो फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपको फैशन पसंद है तो इंस्टाग्राम पेज बनाओ, अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो फिर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बन जाओ, अगर आपको सोना पसंद है तो भी आप स्लीपिंग कोच बन सकते हैं। मतलब आजकल हर हॉबी को मोनेटाइज करना जरूरी हो गया है क्या? पहले हम जब कोई भी चीज करते थे तो अपनी खुशी के लिए करते थे, हॉबी का मतलब ही होता था कि थोड़ा सा ऐसे जॉब से रिलैक्सेशन मिले या फिर जो रोजमर्रा के काम है उनसे थोड़ा सा ना ब्रेक मिले, नई चीजें करने को मिले। लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि अगर आप उससे पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हॉबी को साइड हसल बनाना स्मार्ट डिसीजन है या फिर सिर्फ अपनी खुशी को भी बस एक जॉब बना देना है, आपको मुझे बताना है बाय कॉलिंग मी एट 972-235-5555।

हमने आपसे ये पूछा था कि आजकल ना जो ये सारी चीजें चल रही है, ये ट्रेंड चल गया है, जैसे कि अगर आपकी कोई हॉबी है तो आपको जो है उसे मोनेटाइज करना चाहिए, अब ना वो अब बस एक आपकी हॉबी नहीं बन जाती है, वो दूसरे को रीच आउट करने का जरिया या फिर पैसे कमाने का जरिया बन गया है। और मैं आपसे पूछ रही थी कि आप कितना रिलेट करते हैं इस चीज़ से, और बहुत सारे कॉल्स आए ट्रस्ट मी, और बहुत अच्छी अच्छी बातें कि लोगों ने, मैं भी काफ़ी लोगों से रिलेट करती हूँ। जैसे विनय ने फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि वो एक फोटोग्राफर हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है फोटोज़ खींचना और वो इंजॉय करते हैं, हॉबी तो वही होती है। लेकिन जब जब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है लोगों से कि अरे यार तुम तो बहुत, मतलब लोग तारीफ कर रहे हैं ऐसे कि आप तो बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, व्हाई डोंट यू मोनेटाइज इट, कि आप तो इससे ना पैसा बना सकते हैं, आप अपना ये जो टैलेंट है, ये स्किल है, वो क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में, और ये उन्होंने अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया कि वो उन्होंने भी एक दो बारी जो है उसको मोनेटाइज करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रियलाइज कर लिया कि ये पीसफुल नहीं है, अब ये हॉबी नहीं, अब ये दूसरा जॉब बन गया है, साइड हसल भी एक तरीके का जॉब ही होता है, उसमें भी स्ट्रेस होता है कि आपको डिलीवर करना है, टाइमली सब कुछ करना है, कुछ चीजें मिस नहीं करनी है किसी भी इवेंट की या पर्सन की, सब कुछ बढ़िया बढ़िया बढ़िया होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेसफुल हो गया और फिर वो जो है ही वेंट बैक टू हिज हॉबी एंड हिज अलोन टाइम, जहां पे वो सिर्फ उसको एंजॉय कर रहे हैं एंड ही इज नॉट ट्राइंग टू मोनेटाइज इट एनी मोर। आई टोटली रिलेट, बिल्कुल सही बात है कि स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए कभी भी हॉबी। और हमें एक बहुत क्यूट कॉल भी आया सफी की तरफ से, सफी और उनके अब्बू जो है उन्होंने बताया कि हमारा तो हॉबी ये है कि हम जगह जगह जाते हैं, वहां पे घर बनाते हैं। तो काफी स्वीटली उन्होंने बताया कि उनकी रियल स्टेट की हॉबी है। ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दी हॉबीज। देन वी आल्सो रिसीव्ड अनदर कॉल फ्रॉम श्वेता, और उन्होंने, उनको ये टॉपिक काफी पसंद है, उन्होंने बोला कि वो भी ये काफी एक्सपीरियंस कर रही है कि ना ये स्ट्रेसफुल हो गया है आजकल काफी, कि आप हॉबी को जो है मोनेटाइज करो, आप कहीं भी किसी से मिल भी रहे हो तो एवरी वन इज ट्राइंग टू सेल यू समथिंग। तो और उनका ये भी मानना है कि अगर आप कुछ कर रहे हो अपने लिए, हॉबी हम अपने लिए ही करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि उसको दूसरे को नहीं दिखाना चाहिए तो आप मत दिखाइए, जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ, एंजॉय योर थिंग। और अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है और आपको पीसफुली इंजॉय करना है तो डू इट फॉर योरसेल्फ, डू नॉट ट्राई टू मोनेटाइज इट। बट ऑफकोर्स

आप मत दिखाइए, जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ, एंजॉय योर थिंग. और अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है और आपको पीसफुली इंजॉय करना है तो डू इट फॉर योरसेल्फ, डू नॉट ट्राई टू मोनेटाइज इट. बट ऑफ कोर्स ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आप क्या करना चाहते हैं. मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ. यू कैन लेट मी नो एट 972-235-5555 पे कि वॉट डू यू थिंक, कि हॉबी को जो है सिर्फ हॉबी की तरह, जस्ट ना एक इंजॉयमेंट का जरिया की तरह जो है करना चाहिए, या फिर उससे मोनेटाइज करना चाहिए, उससे पैसे बनाने का सोचना चाहिए.

0: state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
1: I'm James Tallarico, and I approve this message.
0: Paid for by Tallarico for Texas.
2: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppel. Enjoy food, shopping, dance, and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
3: Beta, 95% die?
4: हाँ मम्मी
3: गुड अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए
5: मेरा
3: हाँ प्रॉफिट मार्जिन कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस गोल्स सारे अकाउंट्स अपडेटेड
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
8: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
7: Jahan har flavor करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
8: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
9: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
9: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
12: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
12: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
11: सच में सब संभालेंगे
12: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 Vanessa Events, your celebration partner.
13: Har mohabbat ki awaaz. The one and only living legend, Rahat Fateh Ali Khan.
2: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Ali Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan. Ek hi stage par.
13: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmeen Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 p.m. Comerica Center, Frisco.
2: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
13: Tickets on Ticketmaster and Suleha.com.

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिम्मी और आज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं हॉबीज के बारे में। हॉबी ना एक बहुत ब्यूटीफुल पर्पस है, वो आपको आपकी डेली रूटीन से बाहर निकालती है। अगर आपका पूरा दिन ऑफिस, घर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डेडलाइंस में निकलता है तो कोई तो ऐसी चीज हो जिसके जरिए आप ना आप फील करें कि अच्छा ये चीज़ आपने खुद के लिए की है, पीसफुल फील करें। जैसे कुछ लोगों को गार्डनिंग से सुकून मिलता है, कुछ लोगों को कुकिंग करने में, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को बुक्स पढ़ना, किसी को पिकलबॉल खेलना या दूसरे स्पोर्ट्स खेलना, या फिर किसी को बस गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाना पसंद है। और ज़रूरी नहीं कि हर हॉबी में आप एक्सपर्ट हो। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप एक आर्टिस्ट ही हो, और अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो सिंगर बनना भी ज़रूरी नहीं है, अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आपको रेस्टोरेंट खोलना भी जरूरी नहीं है। हर वो चीज जो आपको खुशी देती है उसे करियर बनाना जरूरी नहीं होता। अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को ऐसा जबरदस्ती पुश करके नहीं करना है। आप जैसे भी पेंटिंग कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है वो कलर्स, वो पेपर्स, और आप और ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं तो आप बेशक कीजिए, आपकी जिंदगी है और आपको उस पर पूरा हक है। कभी कभी किसी चीज का रिवॉर्ड ना पैसा नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि वो कौन सी हॉबी है जो आप बचपन से करना चाहते थे लेकिन कभी टाइम नहीं मिला, या फिर कोई ऐसी हॉबी जिसके बारे में आपके फैमिली मेंबर्स तक को भी नहीं पता। अगर आपको एक दिन पूरा फ्री मिल जाए बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तो आप क्या करना चाहेंगे? डू लेट मी नो बाय कॉलिंग मी एट 972-235-5555।

जैसे ही ये गाना इंगेजिंग है और अमेजिंग है, वैसे ही फन एशिया के भी रील्स और उसके पोस्ट और जो सोशल मीडिया कंटेंट होते हैं ना, वो भी काफी इंगेजिंग होते हैं। उनके ग्राफिक्स अमेजिंग होते हैं, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, एम्पलीफिकेशन, सब कुछ अच्छा होता है। और अगर आपको यही फन एशिया की जो है एक्सपर्टीज चाहिए फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस, तो ये अपना मीडिया एक्सपर्टीज बिल्कुल आपके लिए लेके आए हैं वाया रिलेटिव मीडिया, रील RELL, इंस्टाग्राम रील वाला रील है ये। और ये आपको ऑफर कर रहे हैं एंगेजिंग रील्स, ग्राफिक्स टू कैप्शंस और एम्पलीफिकेशन फन एशिया रेडियो के थ्रू, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और उनके दूसरे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स के भी थ्रू। ये आपके ब्रांड को देगा एक कंप्लीट कंटेंट सॉल्यूशन। अगर आपको इनसे बात करनी है, कंसल्टेशन लेना है या फिर जानना है इसके बारे में और भी कुछ, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 4243188। अगर आपको कंटेंट बुक करना है और डिस्कस करना है कि अच्छा ये मेरा ब्रांड है, इसको मैं ऐसे ग्रो करना चाह रहा हूँ, ये मेरी रीच होनी चाहिए, ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, तो ये सब कुछ मिल जाएगा आपको रिलेटिव मीडिया पे, विच इज पावर्ड बाय फन एशिया नेटवर्क।

मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आज हमने बहुत सारी बातें कर ली हॉबीज के बारे में, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं साइड हसल की। आजकल साइड हसल का ट्रेंड काफी पॉपुलर है। लोग अपने फुल टाइम जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई सोशल मीडिया कंटेंट बना रहा है, कोई अपने स्किल से एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहा है। और मैंने देखा है काफी बार ना, लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हुए भी ऐसा बताते हैं कि देखो ये मेरा फुल टाइम जॉब है और इसके साथ मेरा साइड हसल ये है। लाइक दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन टू। और ऑनेस्टली एक्स्ट्रा इनकम का आइडिया काफी अट्रैक्टिव है। सोचिए अगर आपको अपनी रेगुलर इनकम के अलावा कुछ पैसे मिल जाएं जिससे आप एक्स्ट्रा ट्रैवल कर पाए, सेविंग्स बढ़ा सके या फिर कोई पर्सनल विश पूरी कर सके तो कितना अच्छा हो जाए। लेकिन इसका ना एक दूसरा साइड भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सपोज कीजिए कि आप सुबह से शाम तक जब जॉब करते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं और फिर रात को साइड हसल करने के लिए मतलब फिर से वो दोबारा एनर्जी पूरी रीगेन करते हैं, तो अपने लिए वक्त कब बचेगा? अगर आपकी हॉबी जो थी वो यूजुअली रिलैक्सेशन की तरह सर्व करती थी, लेकिन जब कस्टमर ऑर्डर लेट हो जाए, पेमेंट पेंडिंग हो, क्लाइंट रिविजन्स मांगे या फिर सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट ना आए, तो वही हॉबी, वही साइड हसल जो है स्ट्रेस भी बन सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि साइड हसल स्टार्ट करने से पहले एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ या क्यों करना चाहती हूँ। पैसे कमाने के लिए, अपना टैलेंट एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर सिर्फ इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कर रहे हैं जिससे मिलो, हर कोई एक साइड हसल जरूर कर रहा है अपने लाइफ में। तीनों रीजंस अलग हैं और तीनों के आंसर्स भी अलग होंगे। व्हाट डू यू थिंक?